सुप्रभात। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 13वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 4 अगस्त वर्ष 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को है। आइए अब आरंभ करते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदो से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हर नई सुबह अपने साथ आशा, विश्वास और नई ऊर्जा लेकर आती है। आइए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ उस मातृभूमि को नमन करते हुए करें जिसकी मिट्टी ने हमें संस्कार, साहस और आत्मगौरव का अमूल्य उपहार दिया।

शुभता का प्रथम स्वर सदैव श्री गणेश के स्मरण से गूंजता है। उनकी कृपा से जीवन के मार्ग सरल होते हैं और प्रत्येक आरंभ मंगलमय बन जाता है।

जब मन शिव का स्मरण करता है तब भीतर शांति, धैर्य और आत्मबल का संचार होता है। महादेव की कृपा जीवन को संतुलन और विश्वास से भर देती है।

प्रभु श्री राम का आदर्श जीवन हमें मर्यादा, सत्य और कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। उनके चरणों में समर्पण जीवन को नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करता है।

बांसुरी की मधुर तान, प्रेम का संदेश और कर्मयोग का अमर उपदेश, यही है श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप। उनका स्मरण मन को आनंद और भक्ति से भर देता है।

0: अभी सुना आपने भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन। आलेख है मिताली श्रीवास्तव का और वाचक स्वर है वंदना तिवारी के।
1: विचार जीवन शैली को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। विचार से जीवन की दिशा और दशा तय होती है। मानव के विचार जीवन पर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रभाव डालते हैं। जैसे अगर हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना देंगे, जिससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। विचार दो तरह के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे शब्द हैं वैसे ही इनका काम भी है। सकारात्मक विचार मनुष्य को सही राह पर ले जाते हैं, इससे जीवन में हमेशा नई आशा बनी रहती है। और नकारात्मक विचार किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से खराब कर देता है। परंतु जीवन में दोनों ही विचार आते जाते रहते हैं। हमारा मन हमेशा विचारों में खोया रहता है, कभी सकारात्मक विचार तो कभी नकारात्मक विचार। विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखने के लिए हम अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे कि महान लोगों की आत्मकथाएं। इसी के साथ साथ ध्यान, आत्म मंथन भी हमारे विचारों को शुद्ध करते हैं। हमारी संगत भी हमारे विचारों को बहुत प्रभावित करती है। सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों के साथ रहने से सोच में सुधार होता है, तो हमारे विचार हमारे भाग्य के निर्माता हैं। यदि हम अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मस्तिष्क में केवल पवित्र और कल्याणकारी विचारों को ही स्थान देना चाहिए, क्योंकि मानव जैसा सोचता है उसका आचरण और व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है। मानव के छोटे विचार ने ही इस संसार में कई आविष्कार और क्रांतियों को जन्म दिया है। इसलिए विचारों को मानव जीवन का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। मानव के विचार हमेशा भूतकाल और भविष्यकाल में ही उलझे रहते हैं, जबकि हमारा वर्तमान समय ही असली जीवन होता है। पर मानव के विचारों को हम एक सागर की तरह समझ सकते हैं। जिस तरह सागर में हर पल लहरें आती जाती रहती हैं, इसी तरह मानव मन में विचार भी प्रतिपल आते जाते रहते हैं। अच्छे विचारों का प्रभाव केवल एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव परिवार, समाज और देश पर भी पड़ता है। जैसे महान व्यक्तियों ने अपने श्रेष्ठ विचारों के कारण ही समाज को परिवर्तित किया है। विचार का सीधा अर्थ मन में उत्पन्न होने वाली भावना या कल्पना का एक पक्ष है। दैनिक जीवन में विचारों की बहुत गहरी भूमिका होती है। सुबह उठते ही यदि हम सकारात्मक सोचते हैं, जैसे हमने सोचा कि आज का दिन अच्छा जाएगा, तो वास्तव में हमारा पूरा दिन ऊर्जा से भरा हुआ और सकारात्मक रहता है। वहीं अगर नकारात्मक विचार पर हमने जोर दिया तो ऐसा विचार हमें बिना किसी कारण के ही थका देता है। इसलिए कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। विचार बदलो, दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है, बल्कि दुनिया वैसी है जैसा हम उसे बना। आप एक विचार

0: जो आपको ऊपर उठाए और उसे बार बार दोहराते रहें, क्योंकि वही आपका कल बेहतर बनाएगा। हमारे दिमाग में हर सेकंड 60,000 से 80,000 तक विचार चलायमान रहते हैं। इनमें से 90% विचार रोज ही दोहराए जाते हैं। विचार ही वे माध्यम हैं जिनके द्वारा संस्कृतियों का विकास होता है। सदियों से संतों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के विचार साहित्य ग्रंथों के रूप में सहेजे गए हैं। वेदों, उपनिषदों से लेकर आज के आधुनिक साहित्य तक सभी में विचारों का ही विस्तार मिलता है। जब एक महान विचार समाज में फैला है तो वह एक क्रांति का रूप धारण कर लेता है। यही नहीं, चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि सकारात्मक विचार रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जबकि लगातार नकारात्मक सोचने से शारीरिक कमजोरी और रोगों के उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आज इस आधुनिक युग में विचारों का प्रभाव और प्रसार बहुत तेज हो गया है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से पल भर में कोई भी विचार दुनिया के कोने कोने तक फैल जाता है। इस युग में विचारों का चुनाव करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। फेक न्यूज और भ्रामक जानकारी के दौर में हमारे भीतर सही और गलत का विवेक होना जरूरी है। हमें ऐसे विचारों और सूचनाओं को ग्रहण करना चाहिए जो ज्ञानवर्धक हो और हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाए। विचार जीवन के वो अदृश्य धागे हैं जिनसे हमारे भाग्य की डोर बंधी होती है। विचार ही हमें महान बनाते हैं और विचार ही हमारे पतन का कारण भी बनते हैं। यह पूर्णतः हमारे नियंत्रण में है कि हम अपने मन मस्तिष्क के बगीचे में किस तरह के विचारों के बीज बोते हैं।
1: अभी सुना आपने आज का चिंतन। आलेख था मिताली श्रीवास्तव का और वाचक स्वर थे वंदना तिवारी के, और आप इसे सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र पर। अब लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातें। आज जानिए कृषि में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, इस विषय पर जानकारी। वाचक स्वर है अनुराधा शर्मा के।
2: सभी किसान भाई बहनों का डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों ने आज अपन बात करांज कृषि में ड्रोन न AI यानी डिजिटल तकनीक न को उपयोग इना बारा में। कृषि में ड्रोन न कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI न डिजिटल तकनीक न को उपयोग जी हवा ज़्यादा हुई रोज, क्योंकि अपन देखी रहा है कि भारत देश इना समय परिवर्तन का दौर से निकले रोज न। ऐसी स्थिति में अपनी कृषि में भी परिवर्तन हुई रहा है। पहला कृषि जी छे मुख्य रूप से अपन देखा है कि परंपरागत ज्ञान पर आधारित थी, पर अब असोनी है अब हवा विज्ञान न आधुनिक तकनीक न का साथ हमारा किसान भाई बहन खेती करी रहा है न जी अधिक लाभकारी भी छे, सटीक छे न टिकाऊ भी छे। ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मोबाइल ऐप, सेंसर, उपग्रह चित्र, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सब ऐसी तकनीक न छे जिनना हमारी खेती का स्वरूप पूरा तरीका से हमें बदली न धर दियोज न। अपन देखा कि ये सब आधुनिक तकनीक न जी छे इनको उद्देश्य किसान भाई बहन का स्थान लेनु नहीं है, बल्कि किसान भाई बहन का निर्णय लेना में सटीक न प्रभावी बनाउनु ज। एका साथ जब किसान का सही समय पर सही जानकारी मिली जाए तो उसका उत्पादन बढ़ाना में न लागत का कम करना में भी आसानी हो ज। सबसे पहला बात कृषि ड्रोन की। ड्रोन असो मानव रहित हवाई यंत्र छे जेका कि हमारा किसान भाई बहन बहुत दूर से नियंत्रित करी लेज। कृषि में एका उपयोग सी सर्वेक्षण करना में, अपनी फसल न की स्थिति देखना में, कीटनाशक या सूक्ष्म पोषक तत्व न का छिड़काव करना में भी होज न। एका साथ साथ फसल की निगरानी में भी ड्रोन को उपयोग हुई रोज। ड्रोन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कम समय में बहुत बड़ा क्षेत्र में न एक समान रूप से छिड़काव करी देज। एकासी किसान भाई बहन को श्रम बची जाए, समय बची जाए न पानी की भी बचत होज न। कई बार हमारा किसान भाई बहन सीधा तौर से रसायन न का संपर्क में नहीं आता है तो उनकी सुरक्षा भी बनेल रज। पर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ड्रोन को उपयोग प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा होना चाहिए। नौका जी दिशा निर्देश छे ओकाज अनुसार ओको उपयोग होए तो ज़्यादा उपयोगी होएगा, ज़्यादा लाभकारी होएगा। आमा बात कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। AI ऐसी तकनीक छे जो जितना भी अपना पास आंकड़ा छे खेती का बारा में ओको विश्लेषण सही तरीका से कर देज तो ओका से हमारा किसान भाई

0: का निर्णय लेना में आसानी हो जाए। एक अपन सरल भाषा में समझा तो जैसा कोई खेत में किसी क्षेत्र में मौसम, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की फसल की वृद्धि की ना तरीका सी होज, वहाँ ज़्यादातर कहाँ कहाँ का कीट ना को प्रकोप हुई रोज, उनको नियंत्रण की ना तरीका सी हुई रोज, एक ही जानकारी को विश्लेषण भी AI का माध्यम से लगावना में बहुत आसानी हुई जाए। AI ये भी काम करी देज कि सिंचाई कब करनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, खाद की आवश्यकता कितनी छे, रोग की संभावना कम बढ़ी सकज, तो ये सब बात न को यदि जानकारी किसान को हुई जाए तो पहला जोखा नियंत्रण करने का उपाय करी लेज। एक साथ साथ बहुत सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन, ये भी सब किसान की फसल प्रबंधन, मौसम का पहला से अनुमान लगाना में, रोग न कीट की पहचान करना में, कृषि सलाह न की जानकारी उनका समय पर मिली जाए ओका बारे में, ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा किसान भाई बहन का लेना मददगार छे। कभी कभी तो हमारा किसान भाई बहन अपना खेत से अपना पौधा न की पत्ती न को फोटो लेने न विशेषज्ञ न का भेजी जाए, न उनका समय पर उनकी सलाह भी मिली जाए, न उनका निर्णय लेना में आसानी भी हो जाए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि AIG छे वो एक सहायक तकनीक छे। अंतिम फैसलो या अंतिम निर्णय हमारा किसान भाई बहन का खुद सोची समझी न अपना खेत की स्थिति का देखी न स्थानीय परिस्थिति न का देखी न अपना अनुभव का आधार पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह का मानी न लेनु चाहिए। डिजिटल कृषि को ई मतलब बिल्कुल नहीं है कि मोबाइल फोन चलाऊँ, एको अर्थ छे सूचना न संचार तकनीक न को उपयोग करी न खेती का अधिक वैज्ञानिक न कुशल बनाऊँ। आज हमारो किसान भाई बहन सी एतुज कहनू छे।
1: खेती की बातें अभी सुन रहे थे आप आकाशवाणी इंदौर से, जहां आज आपने जाना कृषि में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के विषय में अनुराधा शर्मा से। आकाशवाणी इंदौर से लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस कान का आज का प्रसंग मिताली बी सिंह के गायन स्वर में।

एक बार माता कौशल्या ने शिशु को स्नान करा पालने में सुला दिया। जब स्वयं स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई में पहुंची तो वहां राम को भोजन करते पाया। चकित हुई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें पालने में पौढ़ाया था। दौड़कर पालने के पास पहुंची तो पुत्र को वहां सोया देखा। उसी क्षण उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण ज्ञान आदि अद्भुत दृश्य देखकर, जिनके बारे में कभी सुना भी न था, माता को आश्चर्यचकित तथा डरी हुई देखकर श्री राम ने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया। माता ने परम ब्रह्म का वो रूप देख उनकी स्तुति करने में भी अपने को असमर्थ पाया।

मिताली बी सिंह के गायन स्वर में अभी सुन रहे थे आप श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। आकाशवाणी इंदौर से लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: श्रोताओं, आज सुबह 7:20 से सुनिए किशोर कुमार पर केंद्रित आज का सुनहरे पल कार्यक्रम। विविध कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:30। आज सुनिए विपर्य की विपरीत यात्रा, प्रस्तुति होगी देविंदर कौर, मधु और संजीव मालवी की। साथ ही सुनिए एक कहानी रुमाल, कहानीकार होंगे नरेंद्र कोहली। लोक संगीत के कार्यक्रम में संजय महाजन और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे आज सुबह 9:00 से। श्रोताओं, सुबह 9:15 से सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आनंद लीजिए अंकित परोलकर और साथियों के गाई कुछ गजलों का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 सुनिएगा पंडित अजय पोहनकर का गायन, राग होगा बिलास खानी तोड़ी। और जिले की चिट्ठी सुनेंगे आप सुबह 10:00 से। श्रोताओं की फरमाइशी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन होगा सुबह 10:05 से। एक और अन्य सजीव फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:00 से, जिसका नाम होगा बात आपकी गीत हमारे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 12:00 से। संग्रहालय से ये कार्यक्रम सुनवाया जाएगा आपको 12:30 से। महिला श्रोताओं के खास कार्यक्रम महिला कार्यक्रम में 1:00 आज सुने गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना के विषय में जानकारी। मेरी उड़ान क्रम में आज जाने पुरानी चीजों को नया आकार देने वाली सोनाली से आराधना की बातचीत। फूड जोन में आज सीखे गुड़ और आटे का चीला बनाना और साथ ही होंगी कुछ काम की बातें। हमारी दोपहर की सभा में लोक संगीत का समय होगा 1:30 और सुगम संगीत का 1:45। श्रोताओं, दोपहर 2:00 उठाइएगा फिल्म संगीत का आनंद और आपकी फरमाइश आपको सुनवाया जाएगा 2:30 से। युवाणी कार्यक्रम का समय होगा 5:00। फिल्म संगीत 5:45 से और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे आप 6:00। अंकित पारोलकर और साथियों की गाई कुछ और गजलें 6:30 आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत में। लोक संगीत में संजय महाजन और साथियों के गाए कुछ अन्य निमाड़ी लोकगीत 6:45 से सुन सकेंगे आप। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का समय होगा 7:30 और फिल्म संगीत 8:30। श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। संस्कृत में समाचार बस कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। लोकसभया सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयकं पारितम्। अनेन विधेयकेन भारतस्य प्रधान न्यायाधीशं विहाय सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33 इत्यतः 37 पर्यन्तं वर्धिष्यते। अस्य वर्षस्य मई मासे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अस्मिन् विषये अध्यादेशं प्रसारितवती आसीत्। केन्द्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः एतत् संशोधन विधेयकं लोकसभायां प्रस्तुतवान्। असौ अवदत् यत् एतत् न्याय व्यवस्थायां प्रवर्तमान परिष्कार प्रक्रिया दिशि महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। विपक्षदलानां विरोध कारणात् लोकसभायाः कार्यम् अशेषे अपि दिने बहुवारं स्थगितं जातम्। कार्यारम्भानन्तरं लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला ग्लास्गो नगरे आयोजितासु त्रयोविंशतितम राष्ट्रमण्डल क्रीडासु उत्कृष्ट प्रदर्शनं कृतवतां क्रीडकानां अभिनन्दनम् अकरोत्। तदनन्तरं प्रश्नकालस्य आरम्भे विपक्षसदस्यैः छात्रान्दोलनेषु कथितस्य आरक्षक बलप्रयोगस्य विषयः उत्थापितः। अस्मिन्नेव समये सांख्यिकी कार्य क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंहः भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयकं प्रस्तुतवान्, तथा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस इत्येतत् विधेयकं प्रस्तुतवती। विधानसभायाः उपनिर्वाचनेषु जनसुराज दलस्य नेता प्रशांत किशोरः बिहार राज्यस्य बांकीपुर आसने विजयं प्राप्तवान्। तत्रैव गुजरात राज्यस्य मंजलपुर आसने भाजपा दलेन स्वस्थानं पुनः प्राप्तम्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च कांग्रेस दलेन विजयम् अवाप्तम्। बिहारे प्रशांत किशोरः भाजपा दलस्य प्रत्याशिनं नीरज कुमारं 24,300,000 मतैः पराजितवान्। असौ 150,164,000 मतानि प्राप्तवान्। गुजराते भाजपा दलस्य प्रत्याशी सतीश पटेलः कांग्रेस दलस्य भीका भाई रबारी इत्येनं 30,000 मतैः पराजितवान्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी घनश्याम सिंहः भाजपा दलस्य आशुतोष तिवारी इत्येनं 6,000 मतैः पराजित्य पुनरपि विजयं प्राप्तवान्। एतेभ्यः त्रयेभ्यः विधानसभासनेभ्यः मतदानं विगतमासस्य 30 दिनांके एव सम्पन्नमासीत्। तेलंगानायाः हैदराबादस्थले अद्य ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयोपवेशनं प्रारप्स्यते। अस्य द्विदिवसीयोपवेशनस्य आयोजनं स्थैर्याय नवोन्मेषाय सहयोग

0: य निरन्तरतायै च निर्माणम् इति विषयमाधारीकृत्य क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे ब्रिक्स सदस्य देशेभ्यः वरिष्ठ नीति निर्मातारः, व्यावहारिक विशेषज्ञाः, सहैव भ्रष्टाचार विरोधी विधि प्रवर्तन अभिकरणानां प्रतिनिधयः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति इति सम्भाव्यते। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः ह्यः नवदिल्ल्यां उज्बेकिस्तान देशस्य विदेशमंत्रिणा बख्तियार सईदोव इत्यनेन सह वार्ताम् अकरोत्। उभाभ्यां मंत्रिभ्यां भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सहभागितायाः विस्तृत समीक्षा कृता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अवदत् यत् भारतीय क्रीडकै ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 26,000-तम वर्षस्य राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतं पदक तालिकायां चतुर्थ स्थाने स्थापयित्वा गौरवपूर्णं इतिहासं विरचितम्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय उप हिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस ली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केन्द्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर भी सहमत हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उज्बेकिस्तान को भारत के विस्तारित पड़ोस का महत्वपूर्ण अंग बताया। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्यसमूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता उसके लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होर्मोज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी सहयोगी कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आग्रह पर ईरान के खिलाफ नए बड़े हमले करने के आदेश को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह

0: बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले तीन से चार दिन तक तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आपको याद दिला दी, आज सुबह 7:20 से आप सुन सकेंगे आज का हमारा सुनहरे पल कार्यक्रम, जो केंद्रित होगा किशोर कुमार पर।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% GST है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
2: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% GST लगेगा। इसके साथ ही रेत, चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रहना।
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में सुनिए प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से।

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है, जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सन्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, सांदीपनी विद्यालयों में बनेंगे खेल परिसर। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलेगा। मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर और बस एसोसिएशन की समस्याओं का किया जाएगा निराकरण, मंत्रिमंडल समूह ने दिया आश्वासन। और प्रदेश में भोपाल सहित कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भोपाल स्थित नाथूखेड़ा बरखेड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अत्याधुनिक खेल सुविधाओं से सुसज्जित है। यहां भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाओं का प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में मलखंब और जिम्नास्टिक अकादमी जल्द शुरू करने और प्रदेश के सभी सांदीपनी विद्यालयों की उपलब्ध भूमि पर खेल परिसर विकसित करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
1: वाकई लग रहा कि हाँ, हमारा भोपाल अपने खेल के उस गौरवशाली गर्वित करने वाले इतिहास में कदम रख रहा जिसकी उसको वर्षों से दरकार थी। और ये वर्ष भर हमारे लिए उल्लेखनीय रहेगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला हॉकी एशिया कप की स्पर्धा हमारे राज्य में होने वाली है। ऐसे में जब हमारे यहाँ के खिलाड़ी राज्य से निकल कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, आज गर्व है इस बात का कि हर क्षेत्र में हमारे अपने मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं और खेल जगत में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
0: मध्य प्रदेश में जन सहभागिता से हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस अभियान में जन सामान्य को विगत वर्षों की तरह उत्साह और देशभक्ति के साथ स्वाधीनता दिवस मनाने और 14 अगस्त को विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस मनाने के लिए सहभागिता सुनिश्चित करने के सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान देशभक्ति से उत्प्रोत शासकीय कार्यक्रम, चर्चाएं जैसे आयोजन किए जाएंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न को हर घर तिरंगा अभियान 2026 के साथ जोड़ा गया है। अभियान में केंद्रित तिरंगा मेला, तिरंगा कॉन्सर्ट, तिरंगा बाइक रैली, मानव श्रृंखला, तिरंगा एंथम जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह विजयी हुए हैं। उन्होंने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6000 से अधिक वोटों से पराजित किया है। पूर्व कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती की अयोग्य घोषित होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मंजालपुर विधानसभा सीट जीत ली है। भाजपा उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। वरिष्ठ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर विजयी हुए हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई प्रवेश प्रक्रिया में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान स्नातक, स्नातकोत्तर और शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में अब तक 5,29,484 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इनमें 3,34,454 छात्राएं और 1,95,030 छात्र हैं। इस प्रकार कुल प्रवेशित विद्यार्थियों में लगभग 2/3 भागीदारी छात्राओं की रही है। प्रवेश आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार प्रदेश का प्रवेश आधारित जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1.71 दर्ज किया गया है, यानी प्रत्येक 100 छात्रों पर 171 छात्राओं ने प्रवेश प्राप्त किया है। यह आंकड़ा उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, सामाजिक विश्वास, शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की प्रगतिशील सोच का सशक्त प्रमाण है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्नातक, स्नातकोत्तर और शिक्षक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर छात्राओं की उल्लेखनीय भागीदारी ये सिद्ध करती है कि प्रदेश की बेटियां उच्च शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र पुलिस मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे कल नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेना दिवस के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यालय असैन्य सैन्य तालमेल को उत्कृष्ट करने में एक महत्वपूर्ण सेतु की तरह कार्य करता है। श्री सिंह ने कहा,
2: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल समूह ने मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्टर और बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों की समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। कल भोपाल में की गई बैठक में बताया गया कि परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है। इससे राज्य शासन की तरफ से 3 अधिकारी, 4 ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी और मुख्यमंत्री से अधिकृत एक प्रतिनिधि होगा। कमेटी जो निर्णय करेगी उस पर सरकार विचार विमर्श करने के बाद आगे बढ़ेगी। बैठक में बस को लेकर भी चर्चा हुई। परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है, जल्द ही उस पर निर्णय हो जाएगा। बैठक में बताया गया कि रजिस्ट्रेशन उड़ीसा और केरल के मॉडल पर होगा। विधिवत बॉडी मेकर से बॉडी बनवाने के बाद भी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। डेडलाइन से पहले क्रय किए गए चेचिस पर भी सहमति बनी है। अंतर्राज्यीय बस परमिट के जो मामले लंबित थे उन पर नियमों के प्रावधानों के तहत उस पर भी निर्णय लिया गया। प्रदेश में 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाएगा। इस दिन भोपाल में नागरिकों और युवाओं के सहयोग से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये तिरंगा यात्रा समाज में अपनी आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रेरणा सहित देशभक्ति की भावना के प्रसार का माध्यम बनेगी। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार का जन्मदिन आज खंडवा में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सुबह उनकी समाधि पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं शाम 7:30 बजे पुरानी कृषि उपज मंडी में किशोर नाइट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ख्याति प्राप्त गायक पी गणेश और प्रीति जोशी किशोर कुमार की लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देंगे। मौसम केंद्र भोपाल ने आज भोपाल और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक औसत 15.9 इंच बारिश दर्ज हुई है। पूर्वी हिस्सा जैसे जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग में 20% कम बारिश हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी में श्रावण मास के अवसर पर नगर निगम प्रशासन द्वारा नगर के मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। झाबुआ जिले में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम और मिजल्स की रोकथाम को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विशेषज्ञों ने 3 दिवसीय निरीक्षण किया। आगरमालवा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। नर्मदापुरम में ई विकास पोर्टल को और अधिक सरल और प्रभावी बनाने के लिए कल कलेक्टर कार्यालय में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। अशोकनगर के जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल जुलाई 2026 के दौरान आयोजित युवा संगम कार्यक्रम के प्रदर्शन में जिले को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। झाबुआ जिले में आगामी

7 अगस्त से 8 जनवरी 2027 तक संचालित होने वाले मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के संचालन के लिए जिला प्रशासन ने जिला और विकासखंड स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। इंदौर में आयोजित एक दिवसीय रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा 531 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक रूप से चयन किया गया। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में कल स्वतंत्रता दिवस के आयोजन की पूर्व तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कल समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आकाशवाणी इंदौर से अब सुनिए किशोर कुमार पर केंद्रित आज का सुनहरे पल कार्यक्रम।

सुस्वागतम दोस्तों, सुनहरे पल कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को तृप्ति लटपटे का प्यार भरा नमस्कार। आज के सुनहरे पल कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं उस शख्सियत की जिसने अपनी कला से, अपने हुनर से भारतीय सिनेमा को दिए अनगिनत सुनहरे पल। आज का ये कार्यक्रम और सुबह समर्पित है उस फनकार को जिनकी आवाज में शरारत भी थी और दर्द भी, रोमांस भी था और जिंदगी का जश्न भी। दोस्तों, आज 4 अगस्त है, वो दिन जब भारतीय संगीत को मिला था एक ऐसा जादूगर जिसका नाम था किशोर कुमार। किशोरदास सिर्फ गायक नहीं थे बल्कि अभिनेता, संगीतकार, निर्माता और सबसे बढ़कर एक इंसान थे जिन्होंने हर एहसास को अपनी आवाज में अमर कर दिया।

किशोर कुमार जितने बेहतरीन गायक थे उतने ही अलग मिजाज के इंसान भी। कहा जाता है कि उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर अपने घर के बाहर बी अवेयर ऑफ किशोर कुमार का बोर्ड लगा देते थे। कई बार इंटरव्यू से बचने के लिए अजीब हरकतें भी करते थे, लेकिन जब बात संगीत की आती थी तब वो मस्ती उनकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती थी। उनकी योडलिंग स्टाइल ने हिंदी संगीत सिनेमा में एक नया ही अंदाज दिखाया।

0: तीन महीने में पैसे डबल।
1: वाह,
2: फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।
0: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ
3: और कल होगा भी नहीं।
0: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
4: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
0: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे।
3: और फास्ट रिटर्न से बच के
0: और फास्ट बॉलिंग से भी।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: श्रोताओं, आज आकाशवाणी इंदौर हो गया है किशोरमय, इसलिए आज हमारा सुनहरे पल कार्यक्रम चल रहा है किशोर दा पर केंद्रित। साथ ही हरफनमौला कलाकार स्वर्गीय किशोर कुमार के जन्म दिवस पर आज उनके जन्म स्थान खंडवा में भी आयोजित किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम, जिनमें आज सुबह 9 बजे से किशोरदा की समाधि पर पुष्पांजलि व स्वरांजलि का आयोजन नगर पालिका निगम व किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच के संयुक्त तत्वाधान में होगा। इसके अलावा आज की शाम 7:30 बजे से पुराने कृषि उपज मंडी प्रांगण में किशोर नाइट कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर ख्याति प्राप्त गायक पी गणेश व प्रीति जोशी द्वारा किशोर कुमार के गीतों की सुमधुर प्रस्तुति होगी। इस कार्यक्रम में मुंबई के जाने माने पार्श्व गायक विनोद राठौड़ भी गायन के क्षेत्र में 1,00,000 रुपये व ताम्रपत्र के साथ किशोर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा उन्हें भी। इसके अलावा किशोर कुमार के जन्म दिवस पर खंडवा का गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 2 से 4 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को यानी कल पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी, जिसमें 6ठी से 12वीं कक्षा के स्कूली विद्यार्थियों ने चित्रकला संबंधी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और संगीत महाविद्यालय द्वारा इसमें निर्णायक भूमिका भी निभाई गई।

मनीष खन्ना हो, अमिताभ बच्चन हो, देवानंद हो या फिर मिथुन चक्रवर्ती, हर स्टार की आवाज़ जैसे उन्हीं की बन जाती थी। रोमांस हो तो दिल पिघल जाए, दर्द हो तो आंखें नम हो, और मस्ती हो तो पैर खुद ब खुद थिरकने लगे। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि किशोर कुमार ने कभी संगीत की औपचारिक शिक्षा ली ही नहीं। वो अपने बड़े भाई अशोक कुमार से प्रेरित होकर फिल्मों में आए थे, लेकिन अपनी मेहनत और अलग अंदाज से अपनी अलग पहचान बनाई। उन्हें 8 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा।

0: दोस्तों, समय बदल गया, संगीत बदल गया, लेकिन किशोर कुमार की आवाज़ आज भी हर पीढ़ी की प्लेलिस्ट में शामिल है। कार का सफर हो, दोस्तों की महफिल हो या अकेलेपन की शाम, किशोरदा के गीत हर मूड के साथी बन जाते हैं। यही तो एक सच्चे कलाकार की पहचान है, जो समय से आगे निकल जाता है। और ऐसे ही हर पीढ़ी के पसंदीदा किशोरदा की नगरी से आइए अब सुनते हैं उनके फैन एक श्रोता की दिलचस्प वार्ता।
1: पार्श्व गायक किशोर कुमार की नगरी खंडवा से आनंद जोशी का नमस्कार। मित्रों, आज पार्श्व गायक एवं अभिनेता किशोर कुमार जी का जन्मदिन है। बचपन में साथ पढ़े सहपाठी मित्रों तो की मित्रता मुंबई की चकाचौंध भरी जीवन शैली पर भारी पड़ी। खंडवा के गांगोली हाउस में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पिता कुंजीलाल गांगोली वकील साहब माता गौरी के यहाँ अपनी चौथी संतान के रूप में विश्व की महान हस्ती हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार ने 4 अगस्त 1929 को जन्म लिया। 1902 में बनी गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल खंडवा में आभास गांगोली किशोर कुमार ने हायर सेकेंडरी तक शिक्षा ग्रहण की। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वे इंदौर प्रस्थान कर गए। उनके बचपन के मित्रों में रमणीक लाल मेहता, आर के तिवारी, तरुण कुमार नागड़ा, बाबू रंगरेज, जी एम जोशी, ये सब उनके बचपन के मित्र थे। जन्म से ही उनको अपने जन्मभूमि से बड़ा प्रेम रहा। प्रेम भी इतना कि बड़े से बड़े कार्यक्रम में भी शुरुआत में अपने नाम के साथ किशोर कुमार खंडवे वाला और लाला की जलेबी को याद करते थे। खंडवा में सन 1902 की स्थापित गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल के वे छात्र रहे हैं। अपने विभिन्न मित्रों में सर्वश्री रमणीक भाई मेहता, बाबू रंगरेज, राधा कृष्ण तिवारी, गजानन जोशी, तरुण कुमार नागड़ा के वे बेहद करीब रहे। उनके कई अनछुए किस्से हैं, जैसे स्कूल टाइम में मेरे काका जी के, वो जी एम जोशी जी के खास मित्र रहे हैं, वे ही बताया करते थे हमें। एक बार चलती क्लास में गुरुजी के स्वर रचित गाना बना डाला, डेस्क बजाकर गाना गाने लगे। गुरुजी ने बेंच पर एक दिन भर के लिए उनके कान पकड़कर खटा करने की सजा दे दी। नकल उतारने में बेहद माहिर थे वे। ये गुण हर किसी में नहीं होता। किशोरदा यदि किसी व्यक्ति के पास 5 मिनट खड़े हो जाए तो उसी की टोन में बोलने लग जाते थे। ऐसे ही एक बार एक टीचर की नकल उतार दी। हंसी तो उस टीचर को भी बहुत आई। उन्होंने उसे गले लगाकर कहा कि बेटा, ये हुनर भी हर किसी के पास नहीं होता। उन्होंने कहा, तू एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। और गुरुजी के ये शब्द आशीर्वाद के रूप में फल गए। बचपन में किशोरदा की आवाज़ ही नहीं निकलती थी। उन्हें जलेबी खाने का बहुत शौक था। अपनी माताजी के पास गए और उस समय चार आने मतलब 25 पैसे मांगने लगे जलेबी के लिए। एक हसिया पास पड़ा था, लोहे का एक औजार होता है, वो उनके पैर में घुस गया। उनकी चीख जम कर निकली। इस हादसे को अपनी आवाज का जादू बताते हैं। मित्रता के इतने कायल कि एक बार मुंबई में रिकॉर्डिंग करते करते गाने में राधे राधे बार बार आया। उन्हें अपने खंडवा के मित्र राधा कृष्ण व्यास की याद आ गई और दूसरे दिन वे खंडवा आए और राधे श्याम व्यास से मिले। राधे जी की आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे कि किशोर कुमार इतना बड़ा कलाकार होने के बावजूद मुझे याद करते हैं। मित्रों, हमारे किशोर कुमार एक ऐसे कलाकार थे जो बहुत कम इस सरजमी पर जन्म लेते हैं। कलाकारी बेहद कूट कूट कर उनमें आई हुई थी।

0: हमारे खंडवा में इस समय 4 अगस्त के दिन उनकी समाधि पर संपूर्ण देश से, दूर दराज से लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं और उनको अपने श्रद्धा सुमन उनके गीतों के माध्यम से देते हैं। खंडवा में हर चौराहे पर उनके नाम के गीत दिन भर गूंजते रहते हैं। मंच बनाए जाते हैं जहां पर तमाम देश से पधारे हुए सुधी श्रोता उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने अपने गीतों के माध्यम से। इस बार का पुरस्कार विनोद राठौर जी को किशोर प्रेरणा मंच द्वारा दिया जा रहा है। हमारे यहाँ जुलाई के इस महीने में 24 तारीख से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित होती है जिसमें संपूर्ण देश के कलाकार भाग लेते हैं। इस बार भी ये प्रतियोगिता किशोर कुमार सभागार में आयोजित की गई। 3 सत्रों में ये प्रतियोगिता हुई, ए, बी और सी वर्ग में। तीनों में से दो दो प्रतियोगी भाग ले रहे हैं, जो 4 तारीख को उनके जन्मदिन पर विनोद राठौर जी मुंबई से पधार रहे हैं और वे ही उन्हें पुरस्कृत करेंगे। आज किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर आप सबको मेरी ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किशोर।
1: अभी आप सुन रहे थे किशोर दा की नगरी से उनके एक फैन श्रोता की वार्ता। श्रोता, क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया कि जब हम राजेश खन्ना का नाम लेते हैं तो कानों में सबसे पहले किशोर कुमार की आवाज़ गूंजती है, और अमिताभ बच्चन के कई यादगार गीत भी उनकी आवाज़ में ही अमर हुए हैं। यही तो एक महान पार्श्व गायक की पहचान होती है, वो सिर्फ गाना नहीं गाता बल्कि अभिनेता की पहचान का हिस्सा बन जाता है। देवानंद से लेकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन तक हर सुपरस्टार के साथ किशोर दा की आवाज़ ने जादू बिखेरा, और शायद यही वजह है कि किशोर दा सिर्फ गायक नहीं बल्कि हर एहसास की आवाज़ बन गए।

सच कहा किशोरदा ने, जो चले जाते हैं वो फिर नहीं आते, लेकिन कहते हैं कलाकार कभी मरते नहीं, वो अपनी कला में हमेशा जिंदा रहते हैं। और किशोर कुमार उन कलाकारों में से हैं जिनकी आवाज़ हर दौर में नई लगती है। उनके जन्मदिवस पर हम उन्हें दिल से नमन करते हुए यही दुआ करते हैं कि उनके गीत यूं ही हमारी जिंदगी को सुरों से सजाते रहे, महकाते रहे और आने वाली पीढ़ियों की यादों में भी ऐसे ही जीवंत रहे।

और इसी गीत के साथ लीजिए हमारा अलविदा आज के किशोरमयी सुनहरे पल कार्यक्रम से, और अब दीजिए सुहाने सफर से तृप्ति लटपटे को इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी इंदौर से अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार पर केंद्रित आज का सुनहरे पल कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में समाचार प्रभात हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका, ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है।
4: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के ये नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
3: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
5: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान यह बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: Deeply appreciate that the government and people of
3: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
4: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस के दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
5: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
6: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
7: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत, बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां

0: बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, दिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वीर शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारून मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजरें अहमदाबाद पर। भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है एक विविधा कार्यक्रम, जिसमें पहले सुनिए विपर्य की विपरीत यात्रा, इस विषय पर ये चर्चा, प्रस्तुति है देविंदर कौर मधु और संजीव मालवी की।

ऊधो मन न भय दस बीस। मन एक ही होता है और दिशाएं अनेक। इन अनेक दिशाओं के बीच जब मन कहीं भटक जाता है तब शुरू होती है एक विपरीत ना खत्म होने वाली यात्रा। कुछ ऐसे ही भटके हुए यात्रियों की इस गंधर्व नगरी को लेकर हमने तैयार किया है ये प्रयोगात्मक कार्यक्रम। तो प्रस्तुत है विपर्यय की विपरीत यात्रा।

0: याद कीजिए वो पौराणिक आख्यान, घनघोर वनांत में वह सरोवर जिसकी रमणीयता में रहस्य तैरता था, असमंजस की उहापोह में डूबते उतराते युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों के जंजाल में उलझे। प्रश्न हुआ कि सृष्टि में काल से भी वेगवान गति किसकी है? विवेकी युधिष्ठिर ने कहा, मन मन। ऐतिहासिक नगरी मांडू में एक महल है। जमीन से ऊपर उसकी 3 मंजिलें हैं, फिर ठहरा हुआ पानी है फर्श की जगह, और सीढ़ियां पानी के भीतर उतरती हैं अंधेरों के साथ। गाइड कहता है,
1: पानी के भीतर ऐसी 4 मंजिलें और भी हैं नीचे।
0: बिल्कुल मन की तरह, चेतना के स्तर की तरह, 7-8 मंजिलों का जाना अनजाना, बूझा अबूझा संसार मन का। मन की वो दुनिया जो तय करती है मनुष्य का स्वभाव, उसकी भाषा, उसकी हरकतें, उसकी मानसिकता, और निर्धारित होती है जिससे आदमी की जीवन शैली। मन के इन्हीं स्तरों में जब कुछ अनचाहा अनजाना घट जाता है तो शुरू होती है विपर्यय की विपरीत यात्रा। अनिर्वचनीय शक्तियां और दूसरे दबाव डालते हैं असर, और सतह पर दिखती हैं अजीब हरकतें, टूटे शब्द, बुदबुदाहटें, कराही।
2: मेरे को तो कुछ नहीं लगे, मैं तो जंगल ही है।
3: बस माए भाई रे,
4: इन्हें बहनकर घेर लिया गया उसको।
5: कोर के बिना मैं पागल हो गया, मैं मर जाऊंगी। मैं
6: कहीं भी होगी तो आ जाएगी, जिंदा होगी तो आ जाएगी, नहीं तो कोई बात ही।
0: भारतीय दर्शन दृष्टि देह के साथ देह के पार भी देखती है और कहती है, कई आकाश हैं, कई अंतरिक्ष, कई निहारिकाएं, अनगिनत सौरमंडल, ग्रह नक्षत्र, और मन दौड़ता चला जाता है अनंत दूरियों में। थकता भी है कभी कभी मन, डरता भी है बिजलियों, आंधियों, तूफानों, घने अंधेरों से ढके नहीं खत्म होने वाले जंगलों से।
7: मनोरोग वो रोग है जिसमें मन में बदलाव आ जाता है या व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है।
8: बच्चा अकेला बैठा है, सोशल पार्टिसिपेशन नहीं है, उसी समय आप अकेलेपन से अलग कर दें तो हो सकता है उसको ये प्रॉब्लम डेवलप ही ना हो।
9: बुखार आता है ठंड देखे तो हम पहचान लेते हैं कि ये सब मलेरिया है, लेकिन मानसिक बीमारियों के संबंध में ये हमारी धारणा है कि हम इनको पहचान नहीं पाते।
10: कुछ ऐसे केमिकल हमारे शरीर में मौजूद होते हैं जिनका कम या बढ़ने से मानसिक रुग्णता उत्पन्न हो सकती है।
9: एक हमारे पास महिला आई, बहुत दुखी थी, तो उसने बताया, डॉक्टर साहब हमको जो है सेक्स के विचार आते हैं, और ये सेक्स के विचार इतने ज्यादा तक आते हैं कि हम

0: जिसको भी पुरुष को देखते हैं तो वो ऐसा लगता है ये हमारे साथ सेक्स कर देगा, जबकि हम जानते हैं कि हमारा सोचना गलत है, हमारा फादर है, हमारा ब्रदर है, वो सेक्स हमारे साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर विचार आते हैं और ये विचार हमारे अब तो साहब इतने हद तक बढ़ गए हमारे 6 महीने का बच्चा उसके साथ भी आने लगे। अब हमारे डॉक्टर साहब पीड़ा समझ सकते हैं कि हम अपने 6 महीने के बच्चे को उसकी देखरेख नहीं कर सकते, उसको दूसरे कमरे में रखते हैं, डॉक्टर साहब हम अब मर ही जाएं तो इससे अच्छा है, और इस विचार को हम बीमारी कहते हैं, ओसीडी नाम की।
1: मन सरोवर के जल की सतह के नीचे जब हलचलें निरंतर बढ़ती जाती हैं, आदमी की हरकतें, उसकी गतिविधियां असामान्य रूप से बदलती बढ़ती जाती हैं और नियंत्रण छूटता जाता है, विवेक का किनारा दूर रह जाता है, फिर वो मनोरोगी इतना स्वच्छंद, इतना उश्रंखल होता जाता है कि कब वो मासूम अपराध की दुनिया में दाखिल हो जाता है पता ही नहीं चलता। कभी हमला, कभी दुर्घटना और कभी कभी हत्याएं भी कर डालता है वो।
2: ये मनोरोगी समाज के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं करते हैं जितना कि ये सामान लोग करते हैं, जिनको हम सामान कैटेगरी कहते हैं।
3: व्यक्ति के अंदर की कुंठा या हीन भावना वो इस रूप में बाहर आती है कि वो व्यक्ति किसी महिला के साथ बलात्कार कर देता है, यौन दुर्व्यवहार कर देता है या फिर उसकी हत्या ही कर देता है।
1: इन असामान्यों के साथ भी कुछ कम नहीं गुजरता है। नजरें घुमाकर देखने की जरूरत होगी, फिर पाइएगा कि तथाकथित सामान्य इनके साथ क्या क्या दुर्व्यवहार नहीं करते।
4: हाँ साहब, ये दरवाजा है ना, इस पर बैठी रहती थी बेचारी, पागल थी पागल, दिमाग नहीं चलता था, छोरे पत्थर मार दे, कुछ भी कर दे, भगाते थे, इधर से भगा उधर जाके बैठी, उधर भगा उधर जाके बैठी, भागती नहीं थी साहब, यहाँ से यहाँ जमी रहती थी, मर गई, ट्रेन से कट के मर गई एक दिन। पर साहब दुनिया बहुत खराब है सारी दुनिया, जब मरी ना तो पेट से थी वो, पेट से, अरे पास साहब वो पागल क्या जाने पेट से होना क्या होता, पर साहब ये दुनिया रहने के लायक नहीं है, नहीं है रहने के लायक।
0: मानसिक विकृति के व्यक्ति आपने देखे होंगे हर जगह घूमते हुए मिल जाते हैं गंदी अवस्था में, ज्यादातर आपने देखा रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म के पास, तो कुछ व्यक्ति अपने समाज में ऐसे भी हैं कि उनको भी नहीं छोड़ते, उनके साथ भी ऐसे गंदे कृत्य करते हैं, फीमेल्स हैं, रेप हो जाता है उनका और वो हम अपने समाज में देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ऐसे जो कृत्य जिन्होंने किया है उनको हम क्या कहें, हमें तो ऐसा लगता है कि जितनी विक्षिप्त वो महिला थी जिसके साथ ऐसा हुआ उससे कहीं विक्षिप्त वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा उनके साथ कृत किया।
1: हम आपसे पूछना चाहते हैं, कौन है असामान्य, आखिर अपराधी कौन है, वो औरत जो नहीं जानती कि गर्भ क्या है, या वो शख्स जिसने उसे गर्भवती बनाकर अनंत अंधेरों में ढकेल दिया है। कई मनोचिकित्सकों का कहना है कि ऐसे रोगी अगर समय रहते उन तक पहुंच जाएं, तो स्वस्थ हो सकते हैं, उजाला फिर लौट सकता है।
2: मनोरोगी जो विक्षिप्तता के शिकार होते हैं उसमें यदि जल्दी ट्रीटमेंट होता है तो 70% क्योर हो जाते हैं।
5: मेरा तो पर्सनल बिलीफ है कि अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो आपको कभी खाली हाथ नहीं आना पड़ता, आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है।
1: कई बार ऊपरी तौर पर हमें लगता है कि वो अकेले ही बातें कर रहा है, अकेले ही उलझ रहा है, झगड़ रहा है, मगर उसके लिए कोई और भी है, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा प्रभावशाली, जो उसे वो सब करने पर विवश करता है, वो प्रतिकार करता है, जूझता है।
6: मानसिक रोगियों के कुछ लक्षण ऐसे भी रहते हैं कि जैसे व्यक्ति को ये महसूस होता है कि हमें किसी ने पकड़ रखा है और वो ही हमसे जैसा चाहता वैसा करवा रहा।
7: ये एक मकड़ी का जाला है और इस जाले की गिरफ्त से तुम बाहर नहीं जा सकते, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम्हें करना है, ये मेरा आदेश है।
8: लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं, मुझे आजाद रखे ताकि मेरे ऊपर पाबंदी ना लगाए, तो मैं किसी को डूबने नहीं दूंगा साबिर, मैं उमरना रहता हूँ ये नागदा के खजरत के बीच में।
6: और उनके जो भी जो वो लोग कहते हैं उनके आदेश को उनको ना चाहते हुए भी उनको पालन करना होता है।
7: मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, छूटने की कोशिश मत करना, सुन रहे हो मुझको, सुनो तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते।
8: डर ये कि कोई

0: वो शख्स जो है वो बहुत बड़ा बनता जा रहा है, जैसे बादशाह मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको इतना बड़ा बनने नहीं देना, उसको मिटाना है। अब एक रोज आया, एक तो बोल रहा गुरु अब तो दर्शन करवा दीजिए। तो मैंने कहा यार आखिर मैं हूँ कौन यार जो मुझे किराया के दर्शन करवा दीजिए।
1: ऐसे लोगों की इलाज के द्वारा विद इन फ्यू वीक्स इनकी आवाजें बंद हो सकती हैं।
2: हम सामान्य जन या विशिष्ट जन क्या कभी अपने आप को देख पाते हैं? अगर देखें खुद को तो चौंक जाएंगे।
3: मानसी जी के साले के चार लेने के पहले मैं चार दिन, जिस दिन मुझे पता चला शासन ने आदेश कर दिया है डॉक्टर राम गुलाम आपको चार लेना है, मैं चार रातें नहीं सो पाया।
4: अपने आप को अगर हम उस कटघरे में रखकर देखें तो ये प्रश्न झंझोर देने वाला होता है। अभी तक तो मैं जरूर ये कहूंगा कि मैं इस स्थिति में हमेशा अपने को महसूस करता हूं कि अगर इस तरह की कोई घटना हमारे साथ हो तो हम जरूर उसको पूरी तरह से स्वीकार्यता देंगे।
5: हमारा जो भारतीय समाज है वो शायद अभी तक ये स्वीकार नहीं कर पाया है कि हमारे अलावा भी इस समाज में लोग रहते हैं जो कि असामान्य है, जिनको पागल बोलता है हमारा भारतीय समाज।
6: मेरे को तो कुछ नहीं लगे, मैं तो जंगली है, मेरे को सपना देखे तो मेरा माँ बाप आवे, नहीं डरू मैं। मेरे तो नाथु मास्टर अच्छे लगते है। हाँ एक पन्नो बा को छोरो मेरे को माने दौड़ो, वो कह तेरे गला दबा दूंगा। किससे दबा गए मेरे गला? मेरे भाई ने तो एक ही लड़की में मैं डांस करती थी डिस्को। चोरी ये लंबे घर को राज बाबू मर से बोल, बोलो ये के नार नर ये के नारी बाबू जी में
7: लड़का हूँ। बहुत तकलीफ होती है, दुख तो होता है, कब से देख रहा हूँ, 3-4 साल हो गए जब से। बस ये पत्थर उठाना, किसी को मारना, ये ऐसी ऐसी हरकतें करती है, बस माए तो माई रही है।
6: चितोड़ के रो सांटो मीटो ये के काटो लागेला।
7: माँ बाप अच्छे हो जाए, हम अच्छे तो से रहे, और इससे ज्यादा क्या माँ बाप के लिए अपनी औलाद क्या नहीं कर सकते।
6: जसरत बाबू रो बोटे खेची लो।
7: मैं इनका भाई हूँ, जब मेरा खुद का मानसिक संतुलन खराब है तो हम दूसरे का क्या रखेंगे। मतलब बहुत गरीबी रेखा के नीचे है, हर तरह की परेशानी है। इस समय तो ये 7-8 महीने से गायब थे, अभी 5-6 रोज हुआ आए, ये अपने आप ही मिली। मैं इनको ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन इनका कोई पता ठिकाना नहीं था, तो फिर मैं परेशान होकर बैठ गया। कहीं भी होगी तो आ जाएगी, जिंदा होगी तो आ जाएगी, नहीं तो कोई बात ही।
2: समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो इन मनोरोगियों को बेहद अलग दीनहीन समझता है, बचा खुचा खाने वाले, बचा खुचा जीने वाले, और इन्हें अपने में शामिल स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं ये सामान्य लोग।
3: हमने कहा ये खाना क्यों खिलाने आते हैं, वो कहने लगे कि हमारे पिताजी का देहांत इसी तारीख को हुआ था, बरसी है, इसलिए हमको खाना खिलाना चाहते हैं ये मरीजों को। फिर को क्यों खिलाना चाहते हैं, पता चला कि गुरुजी के नाम का भंडारा है और खाना हमारे मरीजों को खिलाना चाहते हैं। फिर पता चला कि शादी विवाह है, खाना बच जाएगा, मनोरोगियों को खिला दें। तो मनोरोगियों को ये समझा जाता है ये तिरस्कृत व्यक्ति हैं। मैंने उनको इमीडिएटली आइसक्रिप्ट आ हमें भोजन की आपकी आवश्यकता नहीं है।
5: परिवार के लोग काफी नकारात्मक विचार अपने आप में रखते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो ही परिणाम मिलेगा, अगर हम कोशिश हमें नहीं करना है तो कोई बात नहीं, परिणाम हमको मिलने वाले नहीं है।
8: पेरेंट्स जो है वो अपने आप को छुपाना बहुत चाहते हैं,
4: खासकर महिलाएं जो 15-20 साल से मानसिक आरोग्यशाला में है या अपने घर से बाहर है कहीं भी है, उनको एक्सेप्टेंस फैमिली में बहुत कम मिल पाता है। लोग अपनी पत्नी को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, लोग अपनी बेटियों को बहुओं को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। हाल का ही मामला था जिसमें हम लोग महिला को लेके गए वहां पे और उसके घर वालों ने फिर इनकार कर दिया कि नहीं ये महिला को अब हम लोग नहीं रख सकते हैं।
2: हमारे कानून भी कहीं ये स्पष्ट नहीं कर पाते कि इन लोगों का क्या किया जाए।
4: बहुत सी कानूनी पहलुएं भी आती हैं। भारत सरकार ने जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बच्चों के एडॉप्शन की जो पॉलिसीज बनाई है, तो बच्चों को तो एडॉप्ट किया जा सकता है लेकिन महिलाओं के एडॉप्शन की अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है।
2: जब रोगी ठीक हो जाते हैं तो लोगों के ताने उन्हें दूसरे तरीके से बींधते हैं।
3: मरीजों के रिश्तेदार, पेरेंट्स या डिस्टेंट रिलेटिव, उनका एटीट्यूड मनोरोगियों के प्रति बहुत ही खराब है। वो लोग इनको एक कोशिश करते हैं एक बार भर्ती हो जाए तो इसको वापस न ले जाएं। वो दूसरी बात यह है कि उनको यदि बुलाया जाए तब भी मिलने नहीं आते हैं। कोई मरीज यहाँ भर्ती है रिश्तेदार नहीं मिलने आ रहा है ये, तो हम लोगों डेली यही प्रश्न मरीज करता है। पहला, सर हमें कोई मिलने नहीं आया, सर हमें कोई देखने नहीं आया, सर आपने चिट्ठी भेजा कि नहीं भेजा।
9: कोर्ट जाना चाहता हूँ मैं जल्दी, मेरा मम्मी डैडी का याद आता है, मैं मम्मी के बिना मर जाऊंगी, मैं मम्मी के पास जाना चाहता हूँ, मैं घर के बिना मैं मर जाऊंगी, मैं घर के बिना मैं पागल हो गया, मैं घर के बिना मैं मर जाऊंगी, मैं घर के आदमी घर के भाई बहन के बिना मैं मर जाऊंगी, मैं घर के बिना पागल हो जाऊंगी, मैं घर के पास जाना चाहता हूँ, मैं मम्मी डैडी के बिना मैं मर जाऊंगी सर, मेरा मम्मी डैडी के बिना मैं घर के बिना मैं मर जाऊंगी सर, मुझे मुझे मुझे मेरे घर में पहुंचा देना सर, दिन रात खाली मेरा मम्मी डैडी का ख्याल आता है। मेरा पता टू गायत्री शर्मा, केयर ऑफ आनंद शर्मा, तारापुर भंडारगल्ली, तारापुर आनंदमयी कुटीर, तारापुर पोस्ट ऑफिस, तारापुर थाना, डिस्ट्रिक्ट शिलचर, इराम शिलचर कैसे ना सर।

0: घर ढूंढती इस लड़की या रिश्तेदार ढूंढते लोग प्रेत बाधा में नहीं उलझे हैं, बल्कि उन्हें तलाश है सुकून की, और लोग हैं कि उन्हें तांत्रिक ओझाओं के संसार में ले जाते हैं, और बाधाएं हैं कि उतरती ही नहीं, क्योंकि बाधाएं हैं भी तो नहीं।
1: पालम इंडिया में क्या होती, लोग समझते हैं इसको मानसिक विक्षिप्तता हो गई, अब फिर लोग समझते हैं कि अच्छा इसको भूत हो गया, प्रेत हो गया, इसको झड़ाई, इवन पढ़े लिखे लोग वो भी इसमें चक्कर में जाते हैं।
2: इस तरह 2-3 साल और गुजर जाते हैं तो जो बीमारी है वो अपनी जड़ जमा लेती है।
3: पेशेंट के बारे में बताना चाहेंगे, उसके फैमिली मेंबर्स हमारे पास लाए कि साहब ये महिला सभी परिवारजनों के सामने नेकेड हो जाती। साइट में मुझे लगा कि ये विक्षिप्त मानसिकता है और साइकोटिक डिसऑर्डर है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब ये हमारे विचार एक मन में आता है बहुत ज़्यादा सफाई का, हम जानते हैं ये गलत है, लेकिन फिर भी इतना सफाई का विचार आता है, इतना आता और इतना बढ़ गया है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बाथरूम में ही कपड़े अपने दूसरे पहन लेंगे धुले हुए, तो जो पुराने कपड़े थे अगर उनसे टच हो जाएंगे तो वो भी गंदे हो जाएंगे। इसकी वजह से हम बाथरूम से ऐसे ही बिना कपड़े पहने निकलते हैं और हम अपने बेडरूम में आके उनको चेंज करते हैं, तो ये भी एक तरीके का मानसिक बीमारी है।
0: अपने जीवन के किसी न किसी क्षण बिंदु पर प्रत्येक व्यक्ति मनोरोग की छाया से जरूर गुजरता है, परंतु उसकी तीव्रता सहनशीलता की हद में रहती है।
4: भारत में करीब 3 करोड़ भारतवासियों को किसी न किसी रूप में मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है। हर व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी न कभी किसी न किसी स्तर पर मानसिक रोग से पीड़ित जरूर होता है।
0: मनोरोग की ये प्रेत छाया सभी पर पड़ती है, उसकी जद में वही नहीं बल्कि सभी हैं। तो क्यों ना हम सभी उन्हीं की तरफ बढ़ें, सहानुभूति के हाथ बढ़ाते हुए, सहारा देने के लिए मजबूत कंधों को लिए हुए।
5: मेरा नाम मनीष है, स्कूल ऑफ सोशल वर्क की एक स्टूडेंट हूँ। मेरे परिवार में एक ही मेरा नानी न्यूरोसिस से सफर करती थी, वो एक बात जो बोलती थी वो हमेशा बोलती रहती थी, ये सुन सुन के वो क्या हो गया कि एंग्जायटी या स्ट्रेस होके मेरे मम्मी को डायबिटिक हो गया। इन नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके परिवार में एक पेशेंट है तो बाकी लोग भी बीमार होने की बहुत संभावना है।
6: मेरा नाम प्रिसिला है, सोशल वर्क की स्टूडेंट हूँ। मेरा विश्वास है कि हम सभी परमेश्वर के स्वरूप में है। अगर मैं एक मानसिक रोगी का हाथ पकड़कर उनकी सहायता करूं, तो जो अवसर उनको मिलेंगे उस अवसर में वो अपनी क्षमताओं को यूज़ करके वो वापस सोसाइटी को बहुत कुछ दे सकता है। और मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि काउंसलिंग फैसिलिटीज़ होने चाहिए।
1: जो सेंसिटिव लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि पागल ना कहें, कमेंट ना कहें, उनको सहानुभूति उनके प्रति दें।
2: कभी ऐसा नहीं लगा कि छोड़ के भाग जाएं, उल्टा उनसे और जुड़ाव होता गया जब ऐसी ज्यादा क्राइसिस की सिचुएशन आती है।
3: हम सब समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्तियों को तुरंत समय रहते हुए उनका उपचार करवा लिया जाए, जिससे कि वो प्रोडक्टिव जो पहले था उसी तरीके से हो सके।
0: नश्वर होने के कारण देह और चंचल होने के कारण मन का अक्सर अपमान होता है। ये देह और मन ही है जो हमें लक्ष्य बिंदु तक पहुंचाते हैं, फिर इनकी उपेक्षा क्यों और किस लिए? जीवन को जटिल से जटिलतर क्यों बनाएं? जो कमजोर और बीमार हों उन्हें हे क्यों समझा जाए, उन्हें साथ क्यों ना लिया जाए? परमात्मा ने ये दुनिया बेहद खूबसूरत बनाई है, सबके साथ और सबको साथ लेकर देखेंगे तो इसका सौंदर्य शब्दों की परिधि के बाहर फैलता जाएगा और गूंजेगी महात्मा चंडीदास की।

0: ये अग्नि पंक्ति
1: सबसे ऊपर है मनुष्य सत्य, उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं।

विविधा में अभी आप सुन रहे थे रूपक विपर्य की विपरीत यात्रा, प्रस्तुति थी देविंदर कौर मधु और संजीव मालवी की, और अब प्रस्तुत है एक कहानी रुमाल, कहानीकार है नरेंद्र कोहली।

भैया अपने किसी मित्र के पास एक विशेष प्रकार का रुमाल देख आए थे। वह रुमाल उन्हें बहुत पसंद आया था। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वे वैसे ही रुमालों का प्रयोग करेंगे। हम लोगों का रुमाल देखकर खिल्ली उड़ाते, चले हैं रुमाल रखने। अरे भाई, चीज़ रखनी है तो ढंग की रखो, आदमी का आखिर कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। भैया के शादी के सूटों का कपड़ा आया तो साथ साथ एक विशेष प्रकार का सफ़ेद कपड़ा भी आया। पता चला कि ये भैया के रुमालों के लिए आया है। ये रुमाल विशेष उनकी शादी के लिए बनेंगे। सूट तो बाद में बने, भैया के रुमाल पहले बन गए। जिस दिन रुमाल बने उसी दिन एक हमने उनके हाथों में देखा। मैंने पूछा, भैया ये तो शादी के लिए बने थे ना? भैया बोले, शादी के लिए 6 महीने अलग से रख दिए हैं और 6 अभी डेली यूज के लिए निकाल लिए हैं। अच्छा, और क्या? उसी दिन से भैया को एक आदत पड़ गई थी, जब तक वे नाक पोंछते, चश्मा साफ करते या मुंह का पसीना सुखाते नजर आते, उनके हाथ में वैसा ही रुमाल होता। हम सब भाई बहन उनकी इस आदत पर खूब हंसते। उनके पीठ फेरते ही जेब से अपना अपना रुमाल निकालकर मुंह साफ करने लगते। रुमाल हमारा सांकेतिक शब्द बन गया था। शब्द रुमाल सुनते ही हम सब हंस पड़ते। भैया जेब में हाथ डालते तो हम में से कोई फुसफुसाकर कहता, निकला स्टैंडर्ड का रुमाल। और सचमुच ही भैया अपने हाथ में रुमाल निकाल लेते। भैया की शादी का दिन एकदम समीप आ पहुंचा। भैया दिन रात तैयारियों में लगे थे। हम सब भी काफी व्यस्त थे, किसी को फुर्सत ही नहीं थी कि किसी दूसरे को देखता। फिर तो भैया अपने स्टैंडर्ड रुमालों को साथ लेकर गए और विवाह के पश्चात भाभी को लेकर ही लौटे। 2-3 दिन रीति रिवाज पूरे करने में लग गए। हम न तो भाभी को ठीक से देख पाए और न ही अपने भैया को। 4थे दिन पिताजी घर पर नहीं थे। भैया ने चुपके से भाभी के साथ स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवाने का कार्यक्रम बनाया। यह कार्य इतना सतर्कता से किया गया कि हमारी काउंसिल के किसी भी सदस्य को पता न चले। पता तो चला जब भैया और भाभी सज धज कर अपने कमरे से निकले। नवीन ने मेरी ओर देखा और मैंने जीजी की ओर। हमने भैया से पूछा, भैया कहाँ? अंत में जीजी ने ही पूछ लिया, क्या फोटो खिंचवाने जा रहे हैं? नई भाभी ने तो घबराहट के मारे बता दिया। हम तीनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा पड़े। भैया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आदतन उनका हाथ जेब में गया और जेब से निकला स्टैंडर्ड रुमाल। भाभी की दृष्टि भी रुमाल पर पड़ी। भाभी ने शिकायत की, आपने फिर वही रुमाल ले लिया? ओहो हाँ, भैया घबरा गए। जब भैया ने स्टैंडर्ड रुमाल जेब में डाला और विचित्र सी मुद्रा बनाकर

एक दूसरा रुमाल निकाला। यह निश्चित ही उनके स्टैंडर्ड रुमालों में से नहीं था। हम तीनों ने फिर आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा, पर समझ में न आया। भैया और भाभी जा चुके थे, पर जाते जाते भैया की रुआसी सूरत देखकर हम समझ गए कि कुछ हुआ जरूर है। क्या हुआ है? मैंने सरगोशी की। स्टैंडर्ड, नवीन का उत्तर था। हमने उसी समय से उस स्टैंडर्ड बात की खोज आरंभ कर दी। कुछ पता नहीं चला क्या बात है। अंत में हमने ये भार जीजी पर छोड़ा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे भैया से इस बारे में जरूर बात करेंगी। दूसरे दिन उन्होंने भैया से पूछ ही लिया। भैया ने सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छिपाया। वे बेचारे बड़ी विपत्ति में फंस गए। हुआ क्या? हुआ यह था कि भाभी मायके से ही बनाकर कुछ वस्तुएं उदाहरण स्वरूप उनके लिए लाई थी। दुर्भाग्यवश उन वस्तुओं में कुछ रुमाल भी थे। भाभी चाहती थी कि भैया उनके दिए हुए रुमालों का उपयोग करें, पर वे रुमाल भैया के स्टैंडर्ड पर पूरे न उतरते थे। यही कारण था कि उनका उपयोग करना नहीं चाहते थे। हमने वे रुमाल भी देखे। जहां भैया के रुमाल सफेद और किसी तरह की कढ़ाई से मुक्त थे, वहीं भाभी के रुमाल सफेद होने के साथ सफेद नहीं लग रहे थे। उनमें रंगीन धागों की खूब सजावट थी, कढ़ाई थी। भाभी चाहती थी कि भैया बार बार उन्हीं रुमालों से अपना मुंह पोछे। दो दिनों के बाद हमने फिर वैसी ही घटना देखी। भैया ने अपना स्टैंडर्ड रुमाल निकाला और भाभी रो पड़ी। आपको मेरे रुमाल पसंद ही नहीं है क्या? पसंद क्यों नहीं है? भैया बौखलाए और उन्होंने झट भाभी वाला रुमाल निकालकर खामखा मुंह पर रगड़ना आरंभ कर दिया। उनकी वाणी तो रुमालों को पसंद करने का इकरार कर चुकी थी, पर मुख पर विद्यमान भाव कुछ और कह रहे थे। हमने एक दूसरे को देखा और बरबस मुस्कुरा पड़े। हम समझ रहे थे कि भैया को भाभी वाले रुमाल पसंद नहीं है, पर भाभी की स्टैंडर्ड जिद थी कि दूसरे रुमाल को भैया के हाथ में कभी नहीं देखे। उसी दिन भैया और भाभी के साथ हम लोग एक पार्टी में गए। चलने से पहले उनमें काफी खचखच हो चुकी थी कपड़ों के विषय में। जो कपड़े भैया चाहते थे वे भाभी पहनना नहीं चाहती थी, और जो भाभी ने पहन रखे थे वो भैया को पसंद नहीं थे। पार्टी में दोनों सूजे सूजे लग रहे थे। हम तीनों मुस्कुरा रहे थे और भैया भाभी के इस स्टैंडर्ड झगड़े का आनंद उठा रहे थे। सहसा हमारे कान खड़े हो गए, क्योंकि भैया ने एक स्टैंडर्ड बदतमीजी कर डाली। क्या? उन्होंने पानी का गिलास उठाया और घबराहट के मारे पूरा का पूरा ही पी गए। दोनों हाथों से जेबें टटोली, उनके मुख पर एक निराशा सी झलकी। उन्होंने ढकी छिपी नजर से भाभी को देखा और झट से कमीज की आस्तीन से अपना गीला मुंह पोंछ डाला। तो ये थी एक कहानी।

अभी सुन रहे थे आप कार्यक्रम विविधा। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संजय महाजन और साथियों के गाए कुछ निमाड़ी लोकगीत। शुरुआत करते हैं इन्हीं के स्वर में गाई इस प्रस्तुति के साथ।

0: ये निमाड़ी लोग की तभी आप सुन रहे थे संजय महाजन और साथियों की आवाज़ में हमारे लोकगीत के कार्यक्रम लोक संगीत में।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

संजय महाजन और साथियों की आवाज़ में सुना भी आपने ये निमाड़ी लोकगीत। ये लोकगीत हम आपको आज सुनवा रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में संजय महाजन और साथियों के स्वर में।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। ₹1,000 से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0% GST है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।
3: आकाशवाणी इंदौर से लीजिए अब आपको ले चलते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम की ओर। सुगम संगीत में आज हम आपके लिए लाए हैं अंकित पारोलकर और साथियों की गाई कुछ गजलें।

अल्लामा इकबाल की लिखी ये गज़ल अभी सुन रहे थे आप, अंकित पारोलकर और साथियों के स्वर में। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए बढ़ते हैं आगे और अंकित पारोलकर के स्वर में सुनाते हैं आपको कार्यक्रम की अगली गज़ल।

बशीर बद्र की लिखी ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे अंकित पारुलकर की आवाज़ में। इन्हीं के स्वर में आज आपको सुनवा रहे थे हम सुगम संगीत की ये रचनाएं। और इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत में पंडित अजय पोहनकर का गायन, राग है बिलास खानी तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित अजय पोहनकर का गाया राग बिलास खानी तोड़ी, और लीजिए प्रस्तुत है इन्हीं के स्वर में राग ठुमरी।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित अजय पोहनकर का ठुमरी गायन शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में। और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में भोपाल केंद्र से।
1: भोपाल से प्रस्तुत है सीहोर जिले की चिट्ठी। आलेख प्रदीप सिंह चौहान, वाचन स्वर दीपा सिंह। सीहोर जिले में बोनी का कार्य किसानों द्वारा 100% पूरा कर लिया गया है। इस खरीफ सीजन में जिले में लगभग 4,08,000

0: हजार हेक्टेयर रकबे में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें 3,30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सोयाबीन, लगभग 40,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान और 31,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के की फसल बोई गई है। जिले में इस बार अलनीनो के प्रभाव के चलते बारिश काफी कम हुई है। मानसून सत्र में अब तक औसतन 19.92 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि इसी अवधि के दौरान पिछले साल 25.44 इंच औसत बारिश दर्ज की गई थी। बीते दिनों अमर शहीद कुंवर चैन सिंह की 202वीं पुण्यतिथि पर सीहोर के दशहरा मैदान स्थित उनकी समाधि पर मध्यप्रदेश शासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह, विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, भारत छोड़ो समिति के बलवीर सिंह तोमर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने अमर शहीद कुंवर चैन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कलेक्टर बाला गुरु के ने जिले के ग्राम नापलाखेड़ी, सतपिपलिया, धमंदा के आयुष्मान आरोग्य केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की स्थिति देखी। जिले में एनएचआरसी दिल्ली की टीम द्वारा बमुलिया, मुगाली, पांगरा, बागेर और नौगांव के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को NQAS प्रमाणित किया गया है। जिले के आष्टा स्थित देवांचल धाम देव बड़ला बिलपान में प्रदेश के पुरातत्व विभाग ने रुके हुए विकास कार्य शुरू किए हैं। विभाग की इस पहल से क्षेत्र के धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पिछले दिनों सीहोर जिले में वर्षा ऋतु में पेयजल से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंपों में क्लोरिनेशन शुरू किया। इसके तहत विकासखंड सीहोर के 1,397, इच्छावर के 827, आष्टा के 1,068, बुधने के 69, भैरुंदा के 256 हैंडपंपों में क्लोरिनेशन का काम पूरा किया गया। जिले में स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयासों से चल रहे उमंग हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण के 3 सत्र हुए। प्रशिक्षण का मकसद शिक्षकों को आरोग्य दूत के रूप में तैयार करना रहा। पिछले दिनों सीहोर जिले में जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत भैरुंदा स्थित शासकीय गर्ल्स स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान SDOP रोशन कुमार जैन ने बढ़ते साइबर अपराध से बचाव के लिए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने पर जोर दिया। सीहोर जिले में इन दिनों नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान उत्साह के साथ मनाया गया। इस अभियान के अंतर्गत जिले में रैली, मानव श्रृंखला, नशा मुक्ति शपथ, निबंध, पोस्टर, पेंटिंग और स्लोगन, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साइकिल रैली और युवा संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीते दिनों सीहोर के बुधने स्थित प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर में गुप्त नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रदेश और देश के लाखों श्रद्धालुओं ने माँ विजयासन देवी के दर्शन किए। सीहोर जिले में ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार, बेहतर आय और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा लागू की गई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण भारत BBG रामजी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। इस योजना के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिल रही है। सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा मनाया गया। इस दौरान शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ। बीते दिनों सीहोर में शिक्षा का नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुआ। जिले के 13 सरकारी कॉलेजों सहित 40 निजी कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया पूरी हुई। सभी शासकीय कॉलेजों में BCom, BA, BSc, MA, MCom, MSc की सीट फुल हो गई है। मध्यप्रदेश शासन के निर्देश पर सीहोर जिले में मूंग उपार्जन का कार्य चल रहा है। इस बार जिले में किसानों से 60% मूंग की खरीदी की जाएगी। सीहोर जिले के आष्टा विकासखंड के समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 5 विद्यालयों के नए भवन बनेंगे। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने 2,39,52,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। वहीं जिले में भगवान शिव की आराधना का पवित्र सावन मास आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, साथ ही शिव मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर भी तेज हो गया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे सीहोर जिले की चिट्ठी। आलेख प्रदीप सिंह चौहान का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का।
3: हेलो MH हॉटलाइन।

0: किशोर कुमार जी का जन्मदिवस है और इस मौके पर हम मना रहे हैं जश्न किशोर दा के संगीत में सफर का। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, सुन सकते हैं अपना पसंदीदा गीत। और एक कॉलर हमसे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो
0: हेलो, किससे बात हो रही है?
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम बताइए प्लीज।
1: लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: लोकेंद्र वर्मा जी कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आपके आकाशवाणी से जुड़े हुए रहते हैं।
0: क्या बात,
1: काफी सालों से जुड़े हुए हैं और बहुत ही पुराने लिसनर हैं आपके आकाशवाणी के।
0: जी जी जी। और अभी सावन शुरू हो गया है तो महाकाल की नगरी में काफी भीड़ भी बढ़ गई होगी भक्तजनों की।
1: जी मैडम जी बिल्कुल, कल सवारी निकली थी महाकालेश्वर जी की।
0: जी जी।
1: और उज्जैन का तो बहुत ही पुराना इतिहास है, महाकाल राजा है उज्जैन में।
0: तो पहली सवारी में आप शामिल हुए थे?
1: हाँ मैडम जी शामिल हुए थे ना, अभी हम तो खैर वो मंदिर के पास में से ही सवारी देख लेते हैं।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि 11 महीने तक तो महाकालेश्वर मंदिर में हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। हाँ, मंदिर के प्रांगण में
0: जी।
1: और ये सावन का महीना ऐसा रहता है
0: कि राजा खुद निकलते हैं,
1: खुद निकलते हैं नगर
0: नगर भ्रमण पर। बिल्कुल
1: हाँ, तो आनंद अलग ही रहता है सवारी देखने का, कि भगवान खुद प्रजा का हालचाल जानने के लिए मंदिर से बाहर प्रांगण में निकलते हैं और पालकी में सवार होकर सबका हालचाल जानते हैं।
0: क्या बात है, बड़ा ही खूबसूरत और मनमोहक दृश्य होता होगा। और कितनी अच्छी बात है, कितनी सौभाग्य की बात है कि आप उसी क्षेत्र में रहते हैं और आपके लिए ये सब कुछ आप हमेशा देख पाते हैं। कई सारे लोग जाना चाहते हैं पर वक्त की कमी या दूरी के कारण नहीं जा पाते, पर बहुत अच्छी बात है कि आप ये सब देख पा रहे हैं वहाँ।
1: जी ये तो महाकालेश्वर जी बाबा का सबका बुलावा आता है तो सब दर्शन करने के लिए आते हैं और कांवड़ यात्री भी आते हैं पूरे सावन महीने में उज्जैन में।
0: जी जी,
1: जैसे ओंकारेश्वर से जल लेकर जो आते हैं
0: जी
1: कांवड़ यात्री, वो महाकालेश्वर जल चढ़ाते हैं भगवान को।
0: जी।
1: और जो शिप्रा से कुछ जल लेकर जाते हैं जो ओंकारेश्वर में जल चढ़ाते हैं।
0: जी जी बिल्कुल। तो ये पावन जो है ये तो चला आ रहा है काफी टाइम से, आप इसका हिस्सा बन पाए हैं? आप भी कावड़ लेकर कभी गए हैं?
1: मैं कावड़ लेकर तो नहीं गया मैडम, पर मैं ये जो पंचकोसी यात्रा होती है ना उज्जैन में जो गर्मी के दिनों में 120 किलोमीटर की, वो मैं यात्रा करीब 11 बार होकर आ चुका हूँ पैदल यात्रा की है।
0: वाह क्या बात है,
1: वो भी उसका भी अलग ही
0: आनंद
1: है जब सभी लोग रात के समय में या दिन के समय में पैदल चलते हैं।
0: जी
1: बहुत अच्छा लगता है मैडम।
0: क्या बात है, बड़ी बड़ी खूबसूरत बात आपने साझा की हमसे। बताइए कि आज गीत कौन सा सुनवाया जाए आपको?
1: गाना ये किशोर कुमार जी का जन्म दिवस है आज।
0: जी
1: और किशोर कुमार जी साहब का तो क्या कहना, खंडवा के रहने वाले हैं।
0: जी हमारा ये भी बड़ा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश से ही थे वो और इतना बड़ा उन्होंने नाम किया है तो
1: मध्य प्रदेश का गौरव है वो।
0: बिल्कुल।
1: और इतने अच्छे अच्छे गीतों को उन्होंने गाया है तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मेरा एक गीत है, फिल्म का नाम है राजपूत।
0: जी।
1: और गीत के बोले मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला।
0: चलिए उनकी याद में आपको सुनवा देते हैं किशोर कुमार जी का ये गीत, आपका पसंदीदा गीत। और हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद, हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए और कॉल करते रहिए।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और किशोर कुमार के गानों से स्टार्ट तो हो गया है कार्यक्रम, आगे देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन जुड़ रहे हैं। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है? कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगी लाल चंदेल जी से बात हो रही है बहन जी।
0: चंदेल जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: बस आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ, और मैं इस वर्ष से आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे।
0: बिल्कुल ठीक है हम भी, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहे, हंसते मुस्कुराते रहे।
1: जी
0: बताइए, जीवन में और क्या नया चल रहा है?
1: नया तो बहन जी कुछ नहीं चल रहा, सब जो कुछ चल रहा है वो बढ़िया है, और सब कुछ आनंद है मेरे हिसाब से, तो बढ़िया ही बढ़िया है।
0: देखिए सबसे ज्यादा आनंद तो तब होता है जब हमारे मन में आनंद होता है, तो फिर सब आनंद मन लगता है। सही कहा ना,
1: सब काम में फिर मन लग जाता है, जब मन सही है
0: जी
1: तो सब काम में मन लगता है, पर आनंद ही आनंद है।
0: जी सही कहा, ये देखने का नजरिया है। कई बार होता है कि सब कुछ सही होते भी हमें उस कमियां दिखती है अपने जीवन में,
1: दिखती है,
0: और
1: सही है,
0: कई
1: सही
0: बार कमियां होते हुए भी अगर हम मन सही रहता है तो सब आनंदमय लगता है।
1: जी
0: चलिए बताइए आज कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: तो बहन जी आज किशोर कुमार जी की जन्मदिन है
0: जी,
1: तो इसी उपलक्ष्य में मुझे एक उनका गाया हुआ गाना याद आ रहा है।
0: जी जी बताइए।
1: फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी, और गाने के बोल हैं, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए।
0: जी बिल्कुल, हम दुआ कर रहे हैं कि आपके दिल में ऐसे ही चैन बना रहे, और धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए, आपका पसंद का गीत सुनवाते आए।
1: कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
0: हाँ जी हाँ जी,
1: है नरेश प्रजापति जी है, गजराज लोची जी हैं, और हमारे अध्यक्ष महोदय बलवंत कुमार वर्मा जी हैं आलोट जिला रतलाम से, और शेख हैदर खान साहब जी हैं रतलाम से, और लोकिन वर्मा जी, उनका कॉल पहला ही था अभी उज्जैन से, और भगवान सिंह परमार जी है, केसरी सिंह राजपूत जी है, राम बाबू शर्मा जी है, असीना भी मंसूरी जी है पालदना का इंदौर से, इन सभी को ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा।
0: जी बिल्कुल, आपके सभी दोस्तों को हम कर रहे हैं डेडिकेट ये सॉन्ग, धन्यवाद कॉल।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन, जहां पर हमारे श्रोता एक के बाद एक हमसे कॉल पर जुड़ रहे हैं और सुन रहे हैं उनके पसंदीदा फरमाइशी गीत। अगला कॉल हमसे जुड़ चुका है, देखते हैं किसका फोन है। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है?
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, और आपसे बात करती हूँ तो सच में अच्छी होती है।
0: हमें भी आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। जितने भी श्रोताओं का जी,
1: हाँ जब पता है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कॉल कम ही करती हूँ क्योंकि एक दो कॉलर को प्रॉब्लम थी। मेरा नंदनी का कॉल लगता था तो वो ये बोलते थे पता नहीं इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया कुछ हुए, तो हमने ना कॉल करना कम मतलब बंद ही कर दिया लगभग। आप आती हो ना
0: जी,
1: तो मैं जरूर ट्राई करती हूँ
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कॉल किया कीजिए, हम कोशिश करेंगे हमेशा कि आपका कॉल उठे और आपके पसंद का गाना सुनवाए। बताइए और जिंदगी में क्या नया चल रहा है?
1: बस सब ठीक है, और क्या है मतलब कल तो मैं देखा जाए तो बस मायके जाने की तैयारी मिलने की।
0: अरे वाह, कहाँ है आपका मायका?
1: गुना।
0: अच्छी बात है, चलिए तो
1: ये ज्यादा दूर नहीं है।
0: जी जी जी, और
1: आपके देखो आपको रक्षाबंधन की, सावन सोमवार की, सभी की बहुत
0: सारी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कहने वाली थी कि कल से सावन शुरू हो गया है, सावन का पावन महीना शुरू हो गया है, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं हैं इसकी। और बताइए,
1: आज मुझे एक गाना सुनना है, मूवी का नाम है फिदा और गाने के बोल है, वैसे सॉन्ग का बोल है आई लव यू के नाम से है।
0: जी जी,
1: और डेडिकेशन आपको रहेगा स्पेशल क्योंकि आप पसंदीदा हैं हमारी, इसलिए
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: और नंदनी है मेरी बहन सागर से, वो तो उसका मन ही नहीं करता कॉल करने,
0: वो भी सुनती है, मैं तो वो भी सुनती है,
1: वो मतलब मैं बोल देती हूँ तो सुनती है, बट वो नहीं सुनती मतलब उसको जैसे।
0: चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप अभी नाम ले रही हैं तो उन तक जरूर मैसेज पहुंच जाएगा कि उनको भी डेडिकेट कर रही हैं।
1: नंदनी है और एक हमारे भैया कॉल करते हैं, उनका नाम है जगत चिड़ार, और केसरी सिंह जी के लिए भी रहेगा और योगेश के लिए भी रहेगा।
0: चलिए आपके सभी दोस्तों को, आपकी बहन को, सभी को ये समर्पित करते हैं हम आपके पसंद का ये गाना। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद अनु जी।

0: ये गाना अभी सुन रहे थे आप फरमाइशी फिल्मी गीतों के सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन पे जो चल रहा है आकाशवाणी इंदौर से। और आप भी हमें कॉल करके जुड़ सकते हैं, अपना फरमाइशी गीत सुन सकते हैं। हमारे नंबर है 2710223 और 2710224। नंबर के पहले इंदौर का STD कोड यानी 0731 जरूर लगाइएगा। और एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो MH हॉटलाइन।
1: हेलो नमस्ते।
0: नमस्ते, किससे बात?

0: हो रही है?
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
0: शेख हैदर जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, कैसे हैं आप?
1: बस खैरियत में है मैडम, बस प्रोग्राम सुन रहा हूँ आपका रेडियो पे छत पर बैठ के।
0: अरे वाह, क्या बात है। वैसे क्या करते हैं आप?
1: मैडम यूँ तो मैं खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: जी जी, तो अभी खेती किसानी का आपका क्या हाल है, क्योंकि बारिश तो अभी शायद जितनी होनी चाहिए उतनी तो नहीं हो रही है।
1: मैडम अभी तो फिलहाल तो कोई फसल में नुकसान भी नहीं है, और अभी जो पानी गिरा है पर्याप्त है फिलहाल तो।
0: चलिए अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप किस चीज की, किस चीज की खेती करते हैं आप?
1: अभी तो मैडम सोयाबीन है, मक्का है और मूंग है।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो आप अकेले
1: तो
0: संभाल लेते हैं?
1: मैडम अभी हमारे एरिया में सबसे ज्यादा तो सोयाबीन ही बोते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही।
1: हाँ
0: तो आप अकेले देखभाल कर लेते हैं या फिर परिवार के और लोग भी होते हैं आपके साथ?
1: नहीं, परिवार के भी करते हैं।
0: जी जी
1: हाँ, सभी को करना पड़ता है टाइम टाइम पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पर अभी काफी सारा ऐसा हो जाता है ना कि बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर निकल जाते हैं, तो कई बार घर के लोग जो हैं वो उन्हीं को करना पड़ता है जो लोग पुराने से खेती कर रहे हैं।
1: मैडम अभी तो क्या है कि जैसे अभी कुछ सोयाबीनों में खरपतवार था तो दवाई छिड़ दी, तो कुछ है नहीं।
0: जी जी जी, तो इस समय आपका खाली और आराम से गुजर रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
1: ये, मतलब गाय भैंस के लिए थोड़ा बहुत निराव लेके आ जाते हैं रोज।
0: जी जी
1: हाँ, बस ऐसे चलता रहता है।
0: चलिए बहुत बढ़िया, बताइए गीत कौन सा सुनवा आपको?
1: ये अब्दुल्ला फिल्म का सुना दीजिए, आज किशोर दा का जन्मदिन है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो उन्हीं की याद में ये है, ये खुदा तेरा हर फैसला मुझे मंजूर है, सामने तेरे बंदा बड़ा मजबूर है।
0: चलिए आपकी फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं किशोरदा की आवाज में अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो,
0: नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। किससे बात हो रही है मेरी?
1: मेरी आप में गोविंद जलोदिया खाते गांव से बोल रहा हूँ। मैडम
0: गोविंद जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है।
0: परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
1: हाँ, सब सब बढ़िया है।
0: और खाते गांव में कैसा है सब कुछ?
1: और खाते गांव में भी बस बढ़िया ही है
0: जी, बताइए।
1: पानी भी गिर गया है।
0: अच्छा, अभी मौसम ठंडा बना हुआ है? नहीं,
1: ठंडा ठंडा बना हुआ है।
0: जी जी
1: पंखे बंद हो गए हैं।
0: जी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गर्मी से राहत तो सभी को चाहिए थी।
1: ठीक है,
0: बताइए आप करते क्या हैं?
1: मैं मैडम कुछ भी नहीं करता। अब तो मैं मतलब 72-73 साल की उम्र हो गई मेरी।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: रेडियो रेडियो वगैरह ही सुनना ये वो।
0: जी जी जी तो फिर आकाशवाणी सुबह से शाम तक चलता है घर में?
1: हाँ, मेरा चलता ही रहता है। और ये हेलो भरवाइज वगैरह भी देते रहता हूँ। मुंबई में है, तुम्हारे इंदौर में है, भोपाल में है।
0: अच्छा, सारे आप आकाशवाणी के सभी स्टेशन से एक तरह से जुड़े हुए हैं?
1: जुड़े हुए हैं
0: जी, कितनी अच्छी बात है।
1: तो मैं क्या मनोरंजन भी हो जाता है फुर्सत में भी अपन?
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पूरा जीवन तो आपने जो है वो अभी अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब ये जो है आराम का समय है।
1: तो ये आराम ही है और क्या।
0: जी चलिए बताइए, गीत कौन सा सुनवाए आपको?
1: ये बेजू बावरा है फिल्म सर, ये तू गंगा की मौज में गमना की धारा, रफी और लता की आवाज।
0: जी बिल्कुल, बहुत प्यारा गीत है। आपकी फरमाइश पर चलिए आपको सुनवाते हैं। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: ठीक।

0: श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम में एमएच हॉटलाइन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। मैं हूं तृप्ति आपके साथ और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक और कॉलर, देखते हैं साथ में कौन है। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जी नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कौन बोल रहा है?
1: नमस्ते मैम, मैं शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ मैम, आपका निमिष होता।
0: जी शिपाल जी?
1: नहीं मैम, शिवा लोहट एमपी विदिशा।
0: अच्छा शिवा लोहट, अच्छा अच्छा जी। शिवा जी बताइए कैसे हैं आप और परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
1: मैम मैं एकदम बढ़िया हूँ और आपकी मधुर मधुर आवाज सुनकर और इस कार्यक्रम में फोन लगाया है तो इतना ज्यादा खुशी हो रही है मैम।
0: क्या बहुत ज्यादा, क्या बात है, हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोगों का कॉल लगता है। आप लोग इतना नियमित रूप से प्रयत्न करते हैं कॉल लगाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, हमें दिल से बहुत खुशी होती है। तो बहुत सारी बधाइयां कॉल के लिए। बताइए गाना कौन सा सुनवा दे आपको?
1: मैम मूवी का नाम रहेगा ये दिल और उसमें गाना रहेगा क्यों दिल बिछड़े यार को रोए ऐसा किसी का हाल ना होए।
0: तो क्या बात है, इतना सैड सा गाना क्यों सुन रहे हैं? अभी तो आप खुश हैं आप कह रहे थे और अभी आप मुझे दुख भरा गाना सुनवा रहे हैं।
1: नहीं नहीं मैम, देखिए सैड सॉन्ग में भी क्या है, एक अपना ही मजा होता है।
0: जी बिल्कुल,
1: सुनने में बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है मैम क्या हम लफ्ज़ पे नहीं ला सकते पर गाने सब बाया कर देते।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, गीत और संगीत तो है ही माध्यम हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का। और बड़ा ही खूबसूरत गाना आपने चुना है, तो लीजिए आपकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, कॉल करते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: मेरी यानी तृप्ति लटपटे के साथ आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। और आइए अब जुड़ते हैं अगले हमारे कॉलर से। हेलो एमएच हॉटलाइन। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया है, आप भी अच्छी होंगी।
0: बिल्कुल, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए प्लीज।
1: जी धन्यवाद, मेरा नाम अरविंद अग्रवाल।
0: अग्रवाल जी, कैसे हैं आप और घर में सब लोग कैसे हैं?
1: सब ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, बढ़िया है सभी लोग।
0: जी जी, बताइए कि क्या नया चल रहा है अभी?
1: नया तो वैसे कुछ नहीं है, वही दुकान चलाते हैं, आपको सुनते रहते हैं वैसे।
0: जी जी बिल्कुल, हमें पता है आप हमारे नियमित श्रोता है, बात होती रहती है। आज कौन सा गीत सुनवाए आपको बताइए?
1: जी फिल्म का नाम रहेगा अलग अलग।
0: जी, और इस फिल्म से कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: दिल में आग लगाए सावन का महीना।
0: तो आप भी किशोर कुमार जी के फैन हैं?
1: जी, वो तो संपूर्ण कलाकार हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा, और कौन उनका फैन नहीं होगा।
1: जी उनके तो कोई गुरु भी नहीं थे, उन्हें तो प्राकृतिक कुदरती ही ज्ञान है। जी
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल बिल्कुल, सरस्वती माँ उनकी, वो सरस्वती माँ का आशीर्वाद था जन्म से ही उनके पास, तो बिना किसी शिक्षा के भी उन्होंने इतना खूबसूरत जो है हमें संगीत दिया है। तो आइए आज उनके जन्मदिन के दिन आपकी पसंद का ये गीत आपको सुनवाते हैं। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: आपका दिन शुभ हो मैम।

0: एमएच हॉट लाइन में अब बढ़ते हैं अगले कॉलर और अगले गीत की ओर, देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ रहा है। हेलो एमएच हॉट लाइन, हेलो हेलो,
1: हेलो दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, कैसे हैं आप? नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: नमस्ते, बढ़िया है। केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल से।
0: केसरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: आज आप सुनवा दीजिएगा, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल।
0: जी, सलमा आगा की आवाज़ में ये गाना है। और चलिए, और हमारे पास कार्यक्रम में ज़्यादा समय नहीं बच गया है, तो आपको
1: तो मांगीलाल चंदेल जी सुन रहे हैं, भगवान सिंह परमार जी और रानू जी का लग ही चुका है देवास से।
0: जी, आप सभी के श्रोता और आपके सभी दोस्तों के लिए आइए आपको सुनवाते हैं ये गाना कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। धन्यवाद
1: जी, थैंक यू, आपको भी धन्यवाद।

0: और इसी गीत के साथ संपन्न होता है फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। आपके दोस्त तृप्ति लटपटे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला प्रसारण बस कुछ ही देर में आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है आकांक्षा श्रीवास्तव ने।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद फोन इन प्रोग्राम में। आज है कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे, जिसमें

0: बातें होती हैं दिल से और आवाज पहुंचती है आप सभी तक। तो आज आपकी बात आपकी आवाज को सभी तक पहुंचाने के लिए मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। श्रोताओं, आज हमारे इस फोन इन प्रोग्राम की थीम यानी विषय है कैसे। वो एक शब्द जो हमारी डेली लाइफ का सबसे बड़ा विलेन भी है और सबसे बड़ा हीरो भी। तो आज आप मुझे फोन करके बताइए अपनी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा जहां आपने किसी मुश्किल को, किसी मजेदार सिचुएशन को या किसी डांट को हैंडल किया हो, पर कैसे किया। ये राज आज खोलना है तो हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। आपके कॉल्स, आपकी कहानी, आपके किस्से का हमें है इंतजार। हेलो, नमस्कार। कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे। किन से बात हो रही है हमारी, अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मेरा नाम अंजनी झा है।
0: अंजनी जी,
1: मैं भोपाल से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, अंजनी झा भोपाल से। कैसी हैं आप अंजनी जी?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। क्या करती हैं अंजनी जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: अभी मेरा 1 साल का बेटा है।
0: अच्छा,
1: तो अभी हमें मुझे कुछ करने का समय नहीं मिल पाता, लेकिन मैं वैसे में पेंटिंग करती हूँ।
0: ओह, कलाकार हैं आप।
1: जी
0: जी। अंजनी जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे, जिसमें हम एक विषय देते हैं, उस पे आपसे हमारी बात हो रही है। आज का हमारा विषय है कैसे। हमारे जीवन में बहुत सारे कैसों का सामना हमको करना पड़ता है, रोज ही कई सारे कैसे आते हैं। अब आप एक नई नई माँ बनी हैं अभी, तो आपके जीवन में भी आते हैं, रोज ही आ रहे होंगे कि बच्चा है, आपका पैशन है, साथ में आप कलाकार हैं, तो उसको आप कैसे मैनेज करती हैं? क्या आप अपने शौक को पूरा कर पा रही हैं इस सिचुएशन में अभी?
1: अगर मैं आज से 1 साल पहले की बात करूं, तो आज जो मैं हूँ शायद वो मैं 1 साल पहले नहीं थी। जितना पेशेंस मुझे इस 1 साल में मेरे बच्चे ने सिखा दिया है, उतना शायद मैं कभी नहीं कर पाती। पहले जब 2-3 काम हुआ करते थे, तब हमें समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था कि अरे कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, कैसे करेंगे। और आज बच्चे को देखना है 24 घंटे की काम हो जाते हैं, 24 घंटे आपको देखना पड़ता है बच्चा।
0: बिल्कुल।
1: और मेरे बच्चे ने मुझे बहुत ज्यादा पेशेंट रहना और मल्टीटास्किंग होना सिखा दिया है।
0: क्या बात है।
1: तो उसका पूरा दिनचर्या तय है, उसके खाने का, पीने का, सोने का, उठने का सारा टाइम फिक्स रहता है। इन सारी चीजों के बीच में पेंटिंग मेरे लिए एक मेरा पीस है। मुझे वो करके बहुत ही सुकून मिलता है, एक मेरी अलग ही खुशी मिलती है मुझे उसमें।
0: तो उसके लिए आप कैसे समय निकाल पाती हैं? निकाल पाती हैं?
1: जी, निकालना पड़ता है। जिन चीजों में आपको खुशी मिलती है, उन चीजों के लिए आप समय निकाल ही लेती हैं।
0: ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने।
1: तो जब वो सोता है या फिर जब घर के बाकी लोग मदद कर रहे होते हैं, उसके साथ खेल रहे होते हैं, तब मैं उन सबसे छोटे से पल चुरा के मैं अपने लिए कुछ पल निकालती हूँ, जिनमें मैं वो पेंटिंग करती हूँ, जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। अपने सुकून की तलाश आप पूरी कर ही लेती हैं। अच्छा, एक बात बताइए अंजनी जी, अक्सर हम जैसे एक रिमोट है, टीवी का रिमोट है, कई बार हम उसको चलाने के लिए ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं, पीछे से ठक ठक ठक ठक मार दिया तो पता चला वो ऑन हो गया, जैसे कि बैटरी हमने चार्ज कर दी हो। तो हमें जीवन अपने रोज के दिन में भी कई बार ऐसे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। अब जैसे आपका पैशन है, उसको पूरा करने के लिए, तो उसमें भी कैसे आता है कि वो आप कैसे करती हैं? क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है, आज का, पहले का कोई किस्सा है तो वो आप हमसे बता सकती हैं, कोई कहानी हो वो बता सकती हैं?
1: जुगाड़,
0: राइट? जुगाड़।
1: हमारे किचन से लेके माँ बनने तक के सफर में, लेके पेंटिंग तक के सफर में जुगाड़ हमें बहुत लगाना पड़ता है।
0: जी,
1: जैसे बच्चे खाने नहीं खा रहे तो जुगाड़ लगाना पड़ता है कि कैसे खिलाए खाना है इसको। पेंटिंग का कुछ कलर्स होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, और उस टाइम हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस कलर की। और वो टाइम ऐसा होता है कि आप बाहर जाके ला भी नहीं सकते, और वो आइडिया उस वक्त आ जाएगा अगर आपने नहीं किया
0: नहीं तो। किया
1: तो उस टाइम पे हमें वो कलर के लिए भी जुगाड़ लगाना पड़ता है।

0: ऐसा कौन से कलर से कौन सा कलर मिलाएं जो वो कलर बन जाए।
1: जी
0: डे टू डे लाइफ में तो छोटे छोटे जुगाड़ तो हमेशा लगाने पड़ते हैं।
1: हाँ, तो इन जुगाड़ से आपका कैसे पूरा हो जाता है ना। अब वो कलर हम कैसे बनाएं, कलर खत्म हो गया है तो दो कलर को मिक्स किया और वो कैसे हमारा जुगाड़ से पूरा हो गया।
0: पूरा हो गया जी।
1: जी बहुत बढ़िया अंजनी जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से आज के विषय को समझा और समझाया, और जो

0: बहुत
1: बहुत
0: ज्यादा
1: ज्यादा
0: मुश्किल
1: मुश्किल हो
0: होता
1: जाता
0: है।
1: है
0: जी
1: जैसे उस
0: जी
1: टाइम जो चीज मैं यूज करती हूँ, जो चीज मेरे दिमाग में रहती है, उस टाइम बस ये रहती है कि जो इरादे मजबूत हो तो राह बन ही जाती है, मुस्कुराहट से मुश्किल भी आसान हो ही जाती है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। शायरा भी हैं आप है ना।
1: कोशिश कर रही हूँ।
0: हाँ, यही तो कलाकार है। कलाकार में बहुत सारे किरदार होते हैं, सभी को आप बखूबी निभा रही हैं। अंजनी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे
1: जी मुझे
0: ही
1: भी।
0: बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश। नमस्कार।
1: थैंक यू।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: जी नमस्ते। प्रेम
0: नमस्ते, किनसे हमारी बात हो रही है?
1: से सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।
1: जी
0: प्रेम जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आज का हमारा विषय है कैसे। कैसे मतलब जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से कैसे हमारे सामने आते हैं, उनको आप कैसे फेस करते हैं? मतलब बहुत
1: जी
0: सारी
1: बिल्कुल।
0: समस्याएं, कभी खुशियाँ, कभी दोस्तों के साथ की कुछ बातें होती हैं और उसको हमें मैनेज

0: करना पड़ता है।
1: जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि
0: तो
1: जैसे हम खेत में काम करने ही जा रहे हैं
0: जी
1: और समझ लीजिए कि हमें आज मजदूर नहीं मिल पाए।
0: जी
1: अब मजदूर नहीं मिल पाए तो बड़ी समस्या होती है, क्योंकि मजदूर आएंगे तभी खेत में काम होगा या फिर हमारा काम रुक जाएगा। तो
0: जी
1: हम ऐसे काम से सुलझाएंगे कि जैसे दो मजदूर मिले तो दो मजदूर के साथ में हम तीन लोग घर के हो जाएंगे, उसके साथ में हम भी काम करेंगे और ऐसे करके उस दिन का तो हमारा काम हो जाएगा।
0: बढ़िया। तो ये मैनेजमेंट आपका अपने आप से हो जाता है ना, अपने घर के लोगों को उसमें जोड़ के, और जो है उनसे हमने अपना मतलब काम नहीं रुका और हमने मैनेज कर लिया।
1: जी, और ऐसे ही और बताना चाहेंगे आपको कि
0: जी
1: जैसे कहीं हम बाहर जा रहे हैं या घर पे कोई नहीं है, बच्चे अकेले हैं, तो पहले बच्चों को स्कूल को छोड़कर आते हैं, स्कूल छोड़ने के बाद में फिर घर आएंगे,
0: जी
1: घर से वापस कहीं जाना होता है तो वहाँ जाएंगे, फिर वापस जल्दी आ जाएंगे ताकि बच्चों को स्कूल से पहले घर हम पहुँच सके और बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ जाए।
0: तो ये तो मैनेजमेंट हो गया। अच्छा, इस कैसे के पीछे की कभी की कोई कहानी है कि कभी किसी सिचुएशन में आपको कोई जुगाड़ लगाना पड़ा हो, या मम्मी पापा से बचने के लिए, उनकी डांट से बचने के लिए आपने ऐसा कुछ तालमेल बिठाया हो?
1: जी,
0: कोई
1: बिल्कुल,
0: पुरानी
1: मैं
0: कहानी
1: आपको
0: हो अगर तो
1: बताऊं, वैसे
0: बताएं।
1: तो मैं बहुत ही पुराना श्रोता हूँ आकाशवाणी भोपाल का,
0: जी
1: और इस तरह के जो समस्या आती है कुछ बताना चाहेंगे, जैसे कि इस तरह की जो कभी समय आता है तो उसमें माता पिता से झूठ बोलने का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमने झूठ बोल के कोई शिकायत करके किसी से इसे बताकर हम अपनी बात को निकाला, लेकिन
0: बिल्कुल, बहुत सही बात
1: जो भी
0: कही
1: बात
0: आपने।
1: होती थी ना हम तो स्पष्ट बोलते थे।
0: जी तो उसके लिए उनको मनाना पड़ता होगा ना, अगर आपको अपना
1: हाँ
0: कोई
1: जी
0: काम करवाना है तो मम्मी पापा को मनाना पड़ता है। वो कैसे
1: जी
0: मनाया
1: बिल्कुल,
0: आपने, क्या किया कि वो मान गए, मासूम से बच्चे का चेहरा देख के मान गए या मासूम सी बात को सुन के मान गए, कैसे माने, क्या किया आपने?
1: ऐसे आपको बताऊं जैसे कि अभी मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना अभी स्कूल जा रहे हैं
0: जी
1: उन्हीं के बारे में आपको बताना चाहूंगा मैं, कि
0: बिल्कुल
1: जैसे
0: बताइए।
1: उनको कुछ अभी ही समझ लीजिए कि अब मैं उनको छोड़ के आया हूँ स्कूल पर, और वहाँ से जब कुछ टीचर ने उन्हें होमवर्क दिया या फिर ऐसे कुछ सामान अभी टीचर डे भी गया था, तो ऐसे मतलब बहुत सारी बातें होती है जो बच्चे हमसे बोलते हैं आकर घर पे, तो
0: जी
1: हमें उनको पहले तो बच्चों की बातों को सुने, उसके बाद में जो बच्चा बोल रहा है उसको समझे, और बच्चा खुद मतलब बताएगा कि हमें ये चीज़ की जरूरत होती है तो हम उनको लाके दिलाते हैं।
0: आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
1: जी, थैंक यू सो मच, नमस्ते जी।

0: श्रोताओं, जीवन के हर कैसे सिर्फ फनी नहीं होते, कुछ कैसे प्रेरणादायक भी होते हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब सब खत्म सा लगता है। आपने अपनी जिंदगी के उस मुश्किल दौर का सामना किया, उससे आप बाहर कैसे आए, अगर ये भी आप हमें बताना चाहें तो जरूर बताएं। आपकी कहानी, आपका किस्सा किसी टूटते हुए इंसान का हौसला बन सकती है। हेलो, नमस्ते, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: नमस्ते, मैं रूपा बोल रही हूँ, होशंगाबाद रोड भोपाल से।
0: रूपा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ। बारिश का मौसम सुहाना सुहाना और रेडियो सुनना, ये तो एकदम मस्त वाली बात होगी।
0: बहुत बढ़िया। तो आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: जी।
0: तो रूपा जी, इसमें आज हमारा विषय है कैसे। कैसे मतलब बहुत सारे कैसे हमें रोज ही उन कैसों का सामना करना पड़ता है। क्या आपके जीवन में ऐसे कैसे आते हैं, और अगर आते हैं तो आप उनका सामना कैसे करती हैं, वो हमें जानना है।
1: बहुत ही बढ़िया टॉपिक है कैसे। मतलब हम हर दिन जूझते हैं ये कैसे के पीछे, और कैसे मुझे लगता है ये एक, मतलब मुझे लगता है हर जिज्ञासा की शुरुआत है। और मतलब हर दिन एक मोड़ आता है। अब हम माँ होने के बाद हमारे बच्चों के पास हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न होता है, ये कैसे वो कैसे, और हमें उस उत्तर के पीछे हमेशा
0: भागना होता है, ढूंढना होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे कैसे, मैं कैसे आपको बताऊं, ऐसे एक छोटी सी घटना आपको बताती हूँ।
0: जी जरूर।
1: मेरी एक बहुत प्रिय सहेली हुआ करती थी, जिनको अभी पिछले कुछ महीनों पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, और वो ना अपने जीवन से एकदम निराश हो चुकी थी, पर मुझे उन्हें उस चीज से बाहर निकालना था, और मैं उसका रास्ता खोजने के लिए उस कैसे के पीछे भागी।
0: तो रास्ता आपको मिला?
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आज मैं आपको बड़ी खुशी से ये बोल सकती हूँ कि आज उस चीज से निकाल के, उस डिप्रेशन से निकाल के, आज उस इस जगह पे आ गई है कि वो यार टीचर बन गई है।
0: वाह, क्या बात है।
1: वो कैसे, और मुझे लगता है हम हमेशा किसी कैसे के पीछे ऐसा उत्तर ढूंढते हैं जो कि किसी चीज की सफलता को हासिल

0: कर पाए।
1: तो ये आप कैसे कर लेती हैं, ये मेरा सवाल है आपसे।
0: ख्याल से अब तो हम इस उसमें है कि जहाँ हमें इंटरनेट की सुविधा है, हमें हर चीज की सुविधा है,
1: जी
0: पहले तो हम सिर्फ किताबें पढ़ के ढूंढ लेते थे, या हमारी जो लाइफ की एक्सपीरियंसेस होती हैं उसमें से हम ढूंढते, तो कैसे, इसलिए कि हर चीज का रास्ता तो जरूरी होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ उस चीज के बारे में पढ़ू, उसके बारे में ज्यादा कोशिश करूँ कि वो जैसा इंसान है उसके हिसाब से कैसी चीजें ला सकते हैं,
1: बहुत बढ़िया।
0: ये मेरा।
1: अच्छा एक अलग सा सवाल, ये तो थोड़ा सा मतलब भावनात्मक उससे आपसे जुड़ा हुआ था। कभी आपकी जीवन में ऐसी सिचुएशन आई है कि कोई दोस्त है जो हमेशा प्लान बनाता हो, आप लोग प्लान बनाते हो और वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, उसको आपने कभी हैंडल किया है, कैसे हैंडल किया है ये कैसे बताइए।
0: बहुत बार हो गया। पहली चीज तो ये आपको भी लगता होगा, महिलाओं के साथ हमेशा रहता है, आप कुछ भी प्लान बनाइए कभी घर की बात आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी बच्चे आ जाते हैं, तो वो
1: जी
0: वहां से निकलने बड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसा बड़ा मजेदार किस्सा है,
1: बताइए।
0: हमारी सहेली, उनको घर में बहुत, मतलब घर में थोड़ा बहुत बातचीत ऐसी हो गई थी, इनका मन मुटाव हो गया था, वो बिल्कुल दुखी थी और वो घर से निकलने की सोच रही थी पर निकल नहीं पाई। हमने खूब प्लान बनाया, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हो पाएगा। हमने सिर्फ उनको बोला चप्पल पहनिए और नीचे आ जाइए।
1: ठीक है
0: ये
1: फिर।
0: हमारा कैसे का उपाय था कि हमने उनको बोला आइए सिर्फ हम 2 मिनट बात करेंगे। हमने कुछ नहीं सुना, हमने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया,
1: अच्छा
0: सीधे गाड़ी
1: नानुकुर करती,
0: अपने,
1: इससे पहले आप उन्हें गाड़ी में बिठा के उड़ा के ले गई।
0: बिल्कुल हाँ, और बिल्कुल उनको चाय की टपरी पे ले जाके उनसे थोड़ी देर बातचीत की और फिर निकाला। तो ये कैसे ऐसे हुआ कि वो दुखी थी पर जब घर पहुंची तो खुश थे।
1: खुश थी, यही होता है दोस्तों का साथ रूपा जी, है ना।
0: बिल्कुल
1: हर
0: बिल्कुल
1: परिस्थिति में उनका साथ देने का ये हुआ कि दुखी थी और आप लोगों का साथ पाके वो खुश हो गई। वाह
0: कैसे, जिस दिन हमारे अंदर से कैसे का सोचना बंद हो जाएगा और शायद दुनिया भी बदलना बंद हो जाएगी, क्योंकि
1: बहुत सही, बिल्कुल सही बात कही
0: हम
1: आपने।
0: जीवित हैं क्योंकि वो कैसे है हमारे साथ।
1: और ये कैसे आते ही रहते हैं, रोज ही है, इनका कैसों का सामना हमको करना ही पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता है,
1: जी
0: और जितने अच्छी तरह करेंगे अपने चीजों को, आसपास की चीजों पर ध्यान रखेंगे, तो कैसे का उत्तर वहीं पे मिल जाता
1: वही
0: है
1: मिल
0: फिर।
1: जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात आपने
0: धन्यवाद,
1: कही है रूपा जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ आप जुड़े रहिए, आपने हमसे बात की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

0: नमस्ते, कार्यक्रम बात आपकी गीत
1: हेलो
0: हमारे।
1: हेलो,
0: जी नमस्ते।
1: मैं आपका बहुत पुराना 70 के दशक का श्रोता सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
0: राजेश नेमा जी, कैसे हैं आप? आप
1: बस ठीक
0: हमारे
1: ठाक है, आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं।
0: जी, हम चाहेंगे आप ऐसे ही आनंद लेते रहें
1: जी,
0: और इतने पुराने हमारे नियमित श्रोता हैं, हमसे हमेशा
1: काफी
0: जुड़े
1: पुराना
0: रहें।
1: श्रोता हूँ और आपके फरमाइश कार्यक्रम में आप पत्र शामिल कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद।
0: आप इतने प्रेम से हमें पत्र लिखेंगे, समय निकाल के हमें पत्र लिखेंगे, तो हम लोग
1: जी
0: कैसे
1: जी
0: शामिल नहीं करेंगे राजेश जी?
1: जी
0: राजेश जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे,
1: जी
0: और हमारा आज का विषय है इसमें
1: जी
0: कैसे कैसे। मतलब अब कई बार कई ऐसी सिचुएशन आती हैं जिसमें हम कोई मुश्किल काम में फंस जाते हैं, तो उस मुश्किल काम को आपने कैसे मुमकिन किया? कोई जुगाड़ लगाया? कई बार फनी सिचुएशन भी आती हैं हमारी लाइफ में, अगर इनसे जुड़ी कोई
1: हाँ
0: आपकी कहानी हो तो वो हमें बताइए, हमसे साझा
1: बिल्कुल
0: कीजिए।
1: बिल्कुल। देखिए, जीवन है तो परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सकारात्मक होके चलें तो आसानी से सारी समस्याओं का निराकरण
0: कर
1: थोड़े से
0: सकते
1: समय
0: हैं
1: जरूर लगता है पर हो जाता है।
0: जी, तो इन सिचुएशन से आप कैसे निकलते हैं, हमें ये जानना है।
1: परेशानी तो आती है, सबके जीवन में आती है, पर सकारात्मक एटीट्यूड रखें तो निश्चित रूप से धीरे धीरे वो चीजें हल होती रहती हैं।
0: ये तो हो गई कि अपने आप को हमें पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक सोच
1: जी
0: रखनी है, तो जीवन की
1: बिल्कुल
0: समस्याएं
1: बिल्कुल,
0: अपने आप
1: वो
0: समाधान
1: जीवन
0: हो
1: का
0: जाएगा
1: मूल
0: उनका।
1: उद्देश्य वही है। और संसार है तो संसार

0: की लहर उठती रहती है
1: जी, तो कोई
0: ये
1: सुख वाली लहर की
0: थोड़ा।
1: बात आप बताएं, कभी किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हों, हंसी हो, फनी सिचुएशंस आ जाती हैं, कभी दोस्त के
0: हाँ
1: साथ हैं, तो उससे आप
0: बिल्कुल
1: कैसे निपटेंगे? कई बार देखिए होता है कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं,
0: हाँ
1: दोस्तों के बीच अपनी तरह की बात होती है, लेकिन अगर कोई
0: बिल्कुल
1: बड़ा बुजुर्ग आ जाता है तो हमें सिचुएशन संभालनी पड़ती है उस हिसाब से
0: हाँ
1: तुरंत। तो वो अगर आई है तो आपने कैसे मैनेज किया, क्या किया?
0: हाँ बिल्कुल अनेकों बार एक दो बार ऐसी स्थितियां आई हैं, मगर फिर भी हम अगर सावधान रहे थोड़ा सा। क्या है, जबलपुर ट्रेन से जा रहा था तो जल्दी जल्दी में टिकट लेना ले नहीं पाया और ट्रेन आ गई तो मैं ट्रेन में चढ़ गया। फिर
1: जी,
0: टीटी आया
1: तो आप
0: उसको
1: उनसे
0: मैंने
1: छुपे
0: सिचुएशन
1: या
0: बताई कि
1: सामने
0: भाई
1: आए?
0: ये इस तरह से मैं थोड़ा शीघ्रता में चढ़ गया, ट्रेन आ गई, जो भी आपका चार्ज वगैरह है वो ले लीजिए। निरंतर ऐसी सिचुएशन आती है उससे भी मैं उबरा हूँ और
1: मतलब आप
0: आगे
1: उस
0: भी।
1: सिचुएशन से भागे नहीं, आपने उसका सामना किया।
0: हाँ बिल्कुल
1: कई बार होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में लोग फंस जाते हैं तो वो भाग जाते हैं, वहां से छुपते हैं।
0: हाँ, नहीं छुपने का काम नहीं है
1: जी
0: जी। वो क्या है ना, शासकीय नियमों के अनुसार आप अगर विदाउट जा रहे हो तो ईमानदारी से आप अपना जो भी चार्ज है वो दे दो
1: बहुत बढ़िया
0: और आगे के लिए सतर्क रहिए।
1: जी, लेकिन हो जाता है कई बार, जाना
0: हाँ
1: हमारा जरूरी है और हम
0: हाँ
1: नहीं पहुंच
0: बिल्कुल
1: पाए समय पर, तो उसका
0: हाँ
1: उपाय ये है कि सामना करते हुए, सामना करके निपटे, भागे नहीं।
0: बिल्कुल
1: राजेश जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है। किनसे हमारी बात हो रही है?
1: नमस्कार मैडम,
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम 40 गांव जिला जलगांव महाराष्ट्र से बोल रहे हैं।
0: आपका नाम?
1: पांडुरंग सूर्यवंशी।
0: सूर्यवंशी जी, कैसे हैं आप?
1: हम मजे में है मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। आज कार्यक्रम है बात आपके गीत हमारे, जिसमें हमारा आज का विषय है कैसे। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे कैसे आते हैं। कई सिचुएशन आती हैं ऐसी जिसमें हम कई बार फंसे रहते हैं या हमें तालमेल बिठाना होता है। आपके जीवन में क्या ऐसी सिचुएशन आई है?
1: हाँ ठीक है, एक बार आई थी हम क्या ऐसी
0: तो उनसे
1: हमारे
0: आप
1: साथ
0: कैसे
1: में,
0: निकले बताइए।
1: हम वैक्सीन लेके जा रहे थे खेड़े पर,
0: जी
1: तो हमें ऐसा हादसा होने का मौका था। ट्रक से हमारे व्हीकल की टक्कर हो गई थी मैडम।
0: ओहो, फिर आप
1: तो
0: कैसे
1: हाँ,
0: निकले बाहर उस सिचुएशन
1: वहाँ
0: से?
1: से निकले हम और हमारे ड्यूटी पर ज्वाइंट हो गए, और बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं ना हम
0: जी जी
1: दोस्त, तो काम हमने पूरा किया। वो जिंदगी में पूरी याद रहा ऐसा किस्सा था वो।
0: आपको कोई ठोकर तो नहीं लगी? नुकसान तो नहीं हुआ आपको?
1: नहीं, थोड़ा घसीटा था लेकिन वो आयोडीन लगन से ठीक हो गया था।
0: अच्छा, तो वैक्सीन सही सलामत बच गई?
1: हाँ, वैक्सीन बच गई और हम भी बच गए, भगवान की कृपा थी।
0: जी,
1: अभी आज के प्रोग्राम में हमको एक हिंदी फिल्म का गाना सुनना है।
0: आज हम गीत आपकी पसंद का नहीं सुना पाएंगे सूर्यवंशी जी, क्योंकि आज
1: अच्छा
0: कार्यक्रम में गीत हमारी पसंद का होगा। आपसे बात हम विषय पे करते हैं और गीत हम
1: हाँ
0: अपनी पसंद का सुनाते हैं।
1: हाँ ठीक है, धन्यवाद।
0: जी, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
1: ठीक है मालूम।

0: नमस्ते, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: क्या क्या विषय रखा है मैडम?
0: जी, आज का विषय है कि आपके जीवन में अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है जिसमें आप फंस जाते हैं तो उसे कैसे निकलते हैं आप, कैसे?
1: अरे मैडम, हमारे जीवन में तो परिस्थिति बहुत आती है, तो क्या इसका सामना करना पड़ता है? क्या करें
0: नहीं, सामना
1: समय के
0: तो
1: अनुसार?
0: सुनिए ना, सामना तो करना पड़ता है, पर आज का हमारा विषय ये है कि उन परिस्थितियों से आप कैसे निकलते हैं, उसके लिए क्या करते हैं। अगर इससे जुड़ा कोई किस्सा है तो वो आप हमें बताएं।
1: समय को पास कर रहे हैं मैडम, क्या करें?
0: तो समय को पास नहीं कर रहे हैं आप, तो अपना जीवन जी रहे हैं ना, उसको ऐसे मजबूरी में नहीं कहते हैं। आप पहले अपना परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं आप?
1: हाँ मैडम, मैं जिला सीपी से जसराम जाटव बात कर रहा
0: जाटव जी, आप
1: हूँ।
0: अपना समय कैसे निकालते हैं?
1: अरे
0: बहुत शोर हो रहा है आपके आसपास।
1: वो क्या है मैडम, जो क्या है, तो छोटे बच्चे है ना, तो इसलिए शोर मचा रहे हैं।
0: हाँ, तो यही एक सिचुएशन है, अब आप बताइए इससे कैसे निकलेंगे बाहर। यही तो हमारा आज का विषय है कि रोज में कुछ
1: हाँ
0: ऐसी चीजें होती हैं उनसे हमें बाहर निकलना है। अब आपके पीछे बच्चे शोर कर रहे हैं, बताइए आप उससे कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे आप?
1: अरे उनको, बच्चे को तो क्या समझाना पड़ेगा, समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो भी तो बच्चे हैं, ये मानते नहीं है किसी
0: तो
1: की।
0: समझाना पड़ेगा या डांटना पड़ेगा?
1: हाँ हाँ मैडम, और क्या, डांटना ही पड़ेगा, और क्या है।
0: तो डांट लगाइए, बोलिए कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, बात मत करिए।
1: हाँ हाँ मैडम, वो मैंने उनको बोल दिया तो मान गए, बात भी मान गए थे। हाँ
0: देखिए, हो गया ना, यहीं पे आप मेरे पूछे गए सवाल का जवाब मिल गया कि आपके आसपास शोर हो रहा था, आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, उनको बोल दिया, बच्चे मान गए आपकी बात,
1: हाँ मैडम,
0: है ना? ऐसे ही बहुत सारे कैसे आते रहते हैं। अब देखिए, आप हैं, आपका दिन जो बीत रहा है उसमें आप बहुत कुछ करते हैं, कई बार आपके मन का होता है, कई बार मन का नहीं होता है, तो जब
1: हाँ
0: नहीं होता
1: मैडम,
0: है तो उस परिस्थिति को आप कैसे, उससे कैसे बाहर निकलते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, यही तो है।
1: मैडम क्या है, हमारी स्थिति है तो क्या है, वो तो निकालनी पड़ेगी, क्या करें, आंखों से क्या है, हमको दिखता नहीं है तो क्या करें मैडम, स्थिति में बहुत मजबूर है हम, तो क्या करें।
0: मजबूर नहीं कहेंगे, देखिए, जब बहुत
1: हाँ
0: कुछ करने का आप ठान लेंगे ना, तो आपकी ये कमी भी आपको कमी नहीं लगेगी, वो अपने आप पूरी हो जाएगी। इसलिए ऐसे निराश होके ना रहे, कि जीवन मिला है तो उसको जीना तो है। आपने अभी जो हमारा विषय था उस पे बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छे से तुरंत ही उस चीज को हैंडल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो, नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार।
0: जी।
1: आप
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किन से बात हो रही है हमारी, अपना परिचय दीजिए।
1: अच्छा, मैं बबीता खरे दमोह
0: बबीत
1: से बोल रही हूँ। हाँ, बबीता
0: अच्छा,
1: खरे
0: बबीता खरे, दमोह से।
1: जी। हम
0: बबीता जी, क्या करती हैं आप?
1: तो पहले थे, करते थे काम, अब तो रिटायर हो चुके हैं।
0: क्या काम
1: स्कूल में,
0: करती
1: हाँ,
0: थी?
1: स्कूल स्कूल हेड थे।
0: अच्छा, प्रिंसिपल थी आप
1: हाँ
0: स्कूल की।
1: जी, हाँ जी, हाँ, प्रिंसिपल थे वहाँ पर।
0: अच्छा
1: ना, सब देखने सुनना रहता था हमारा स्कूल में।
0: अच्छा बबीता जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, जिसमें
1: अच्छा,
0: हमारा विषय ये है कि आप अपने जीवन में जो कैसे आते हैं उनको कैसे सुलझाते हैं। अब जैसे आप स्कूल में हेड थी,
1: जी, हाँ
0: है ना, प्रिंसिपल थी, तो आपने कैसे अपना मैनेज किया स्कूल और घर? बहुत सी चीज़ें मैनेज करना होती हैं। स्कूल
1: हाँ
0: है, स्कूल में सारी टीचर्स को देखना, चूंकि आप हेड हैं वहाँ की, तो
1: हाँ
0: वो आप कैसे मैनेज करती थी? और कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आई है क्या जिसमें
1: हाँ
0: आप फंस गई हो और उससे आपको निकलना, वो आपने कैसे किया? ये है हमारा सवाल, विषय।
1: अच्छा,
0: बबीता जी, जब आप स्कूल में थी, स्कूल जाना होता था,
1: हाँ
0: तो संडे पड़ता है, संडे तो
1: हाँ
0: छुट्टी का दिन, पूरा दिन आपका घर पे बीता, सुकून से बीता। दूसरे दिन अब ऑफिस जाने की, स्कूल जाने की आपको चिंता, तो उस चिंता से आपने खुद को कैसे निकाला? लगता तो होगा ना कि
1: हाँ
0: अब सुबह से, रात से ही टेंशन हो गई होगी कि कल स्कूल
1: हाँ
0: है, कल की तैयारी करना है।

0: हाँ
1: तो
0: मतलब
1: उस
0: ये, हाँ ये रहता था कि भाई सुबह से जल्दी उठना ना,
1: तो
0: सफाई था
1: उसे कैसे निकाला आपने अपने आप को, क्योंकि वो
0: थोड़ा।
1: टेंशन से तो दूर हटना है ना, खुशी हमको
0: हाँ
1: चाहिए, तो फिर क्या करती थी आप?
0: अब ये तो सुबह समय से उठना पहले है ना, ये परिवार का भी सहयोग रहता था, सिस्टर का भी सहयोग रहता था।
1: तो मन को परिवर्तित करने के लिए कुछ करती थी आप?
0: हाँ थोड़ा ऐसा मन को परिवर्तन करने के लिए हमारा ये रहता था कि थोड़ा कभी म्यूजिक सुन लिया। वैसे रेडियो सुनना हमारा बचपन से ही शौक है। हाँ
1: अच्छा
0: आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनते ही रहते
1: अच्छा तो मतलब उस टेंशन को
0: थे।
1: दूर भगाने का आपने तरीका निकाला संगीत, थोड़ा सा ध्यान वहां भटकाया तो आपकी टेंशन खत्म।
0: हाँ, ये हो
1: जी
0: जाता।
1: बहुत बढ़िया। तो बबीता जी आप ऐसे ही संगीत का आनंद लेती रहिए, रेडियो से जुड़ी रहिए, आपने हमसे बात की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका
1: नमस्ते।
0: भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे, प्रस्तुति आकांक्षा श्रीवास्तव की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज मुंबई में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दूर संचार विनिर्माण क्षेत्र के निवेशकों की पहली रोड शो और निवेशक बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे और निवेश अनुकूल वातावरण की जानकारी देंगे। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 का कैलेंडर और कार्य योजना पेश करते हुए सितंबर के पहले 10 दिनों में चुनाव कराने का लिखित आश्वासन दिया है। अरुणाचल प्रदेश की ग्लो झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। प्रदेश के ऊपर इस समय 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और 1 मानसून टर्फ सक्रिय है, लेकिन इसका प्रभाव कमजोर बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 6 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर देशवासियों को गौरवान्वित किया है। खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण के साथ कुल 39 पदक जीते हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इसमें हम श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद शामिल कर रहे हैं। पहला पत्र शामिल कर रहे हैं पिपरिया रोड, न्यूटन चिखली, वार्ड नंबर 1, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। हरिराम साहू, श्रीमती गोल्डी साहू, गगन साहू, रोशनी साहू, चंद्र प्रकाश साहू, मास्टर प्रियांशु साहू, सलीम अंसारी, भवानी साहू और पप्पू साहू की। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और राबुन की। महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। कुंवारा बाप फिल्म का यह गीत है, किशोर कुमार महमूद और साथियों ने गाया है। मजरू के बोल हैं राजेश रोशन की तर्ज।

है, सुनना पसंद किया है रेलवे कॉलोनी भटिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुस्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और नदीम अली और जुनैद अब्बासी की पसंद है, और कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति और शिवानी श्रीमाली की।

कार्यक्रम में अगला गीत अमर प्रेम फिल्म का किशोर कुमार का गाया, आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, धुन बनाई है आरडी बर्मन ने, सुनना पसंद किया है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने, महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे ने, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य, नीतू वैद्य, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय और हैप्पी राय की, दुबिहा नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने।

श्रोताओं, नए श्रोता यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए हम पता बता दें, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भोपाल, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश, पिन कोड है 462002। पता एक बार फिर दोहरा देते हैं जो हमारे नए श्रोता जुड़ना चाहते हैं उनके लिए पता बता रहे हैं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भोपाल, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड है 462002। और अब कार्यक्रम में अगला गीत आपकी कसम फिल्म का है, किशोर कुमार का गाया, आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और संगीत निर्देशन राहुल देव बर्मन का। सुनना पसंद किया है पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने। जय बजरंग रेडियो।

श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंडा बेलई से लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनुरथ रैकवार, हल्ले लल्लू और ऋषि रैकवार, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर और सुमन ठाकुर की, महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल की पसंद है, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की पसंद है।

किशोर कुमार के गाए फिल्म आपकी कसम के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक अंतराल का।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
0: क्या
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं। और झूलते झूलते सुनते हैं
0: मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी धीरे धीरे।
2: युवाओं के जोश उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5

0: बजे
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें,
0: तो सुनते रहिए मालवा किसान
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: इस समय आप है हमारे साथ।
5: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 20वीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 20वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि को चारुमित्रा उज्जैनी वापस लेकर आती हैं। महामात्य ने उनकी बहन मैनावती को उज्जैनी बुलवाया है। मैनावती बंग देश की राजमाता हैं। महामात्य राजा भर्तृहरि की चिंता को मैनावती द्वारा सुलझाना चाहते हैं। अब आगे

0: राजा भर्तहरि की बहन मैनावती तब से ही आकुल थी जब से उन्हें महामात्य का कूट संदेश मिला था कि महाराज अनुपस्थित हैं, कुमार विक्रम की अनुशासन विहीन गतिविधियां हो रही हैं, सामंत और राजकर्मी उच्छृंखल हो रहे हैं, प्रजा के व्यामोह और अराजक अव्यवस्था ने मैनावती को विचलित कर दिया। वर्षों बाद वो अपने मातृगृह लौट रही हैं। इन्हीं दिनों अवंती का प्रख्यात बसंत उत्सव का आयोजन भी होता है। इतने वर्षों के बाद कनकश्रृंगा लौटी मैनावती के मन में इस उत्सव के लिए स्वाभाविक उत्सुकता है।
1: उज्जैनी पहुंचे मुझे एक अठवारा बीतने को है, किंतु इस बीच भाई से मेरी भेंट

0: केवल दो बार हुई है, एक बार आगमन के अवसर पर हुई शिष्टाचार भेंट, और दूसरी बार तब जब वह मेरी व्यवस्था देखने स्वयं पधारे थे। महामात्य अवश्य समय निकालकर मेरे पास आ बैठते हैं, उन्हीं ने मुझे बताया था।
1: महाराज और महारानी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, उनके संबंध सामान्य नहीं है। राजा राजकार्य में रुचि नहीं लेते, महाकाल की कृपा से ही व्यवस्था अभी बनी हुई है और चल रही है।
2: ये सब क्यों हो रहा है ये जानने के लिए रानी मैनावती ने महाराज तथा महारानी से बारी बारी भेंट करके इन स्थितियों का रहस्य सूत्र पकड़ने का निश्चय किया। वो राजभवन के अंतःपुरिक भाग की ओर निकल पड़ी।
3: आपके आगमन से राजनिलय पवित्र हुआ भगवती। महाराज और महारानी अपने अपने कक्ष में हैं। कहाँ सूचना दूं?
0: तुम वैसी का हो ना?
3: जी।
0: बहुत कुछ सुना है तुम्हारे विषय में। सबसे पहले मैं अपने भ्रातृय से भेंट करूंगी, जो निश्चय ही अपनी माता के कक्ष में होगा।
3: राजकुमार तो इस समय उपमाता चंपा देवी के कक्ष में होंगे, महादेवी स्नान गृह में हैं। यदि आपके आगमन की पूर्व सूचना होती तो वो यहाँ स्वागत के लिए प्रस्तुत रहती। आप महादेवी की ओर ही पधारें, वहीं राजकुमार भी भगवती का वात्सल्य पाने आ जाएंगे।
0: महादेवी अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या उन्हें मदनोत्सव में नहीं जाना? क्या बात है?
3: कुछ समय से महादेवी अस्वस्थ अनुभव कर रही हैं। देवी सांध्यकाल वे शंखवात से पीड़ित रहीं। शिरशूल की औषध लेप करते हुए मैंने अनुभव किया कि उनका मस्तक बहुत तप रहा था।
0: वैसी के तुम चतुर हो, तुम ये भूल जाती हो कि मैं भी अपने राज्य की महारानी रही हूँ, अब राजमाता हूँ। अंतःपुर के रोगों से मेरी पहचान पुरानी है। यो महारानी के स्वास्थ्य के प्रति असावधान नहीं रहना चाहिए। तुरंत राज्य वैद्य को बुलाओ। महाराज को उसकी सूचना है?
3: क्षमा करें भगवती, इसके लिए मैं ही दोषी हूँ, मुझसे भूल हुई, महादेवी ने भी कोई आज्ञा नहीं दी थी।
0: मैं बाह्य कक्ष में हूँ, मुझे एकाएक महादेवी के सामने नहीं पहुँचना चाहिए। क्यों, ठीक है ना? उन्हें सूचना दो और राजकुमार को यहीं ले आओ।
2: चंपा राजकुमार को लेकर प्रवेश करती है।
4: भगवती को दासी चंपा प्रणाम करती है।
0: यश मिले, प्रसन्नता मिली।
4: जी।
0: लाओ राजकुमार को मुझे दे दो। देखो तो कितना सुंदर है मेरा भ्रातृ। अले ले ले। मुख छवि पूर्णतः पिता की है। भैया भी बचपन में ऐसे ही दिखते थे। चंपा तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ।
4: जी।
0: कागज भैया प्यारा। चंपा
4: जी,
0: सुना है तुम्हारी स्वामिनी अस्वस्थ है?
4: हाँ भगवती।
0: कब से?
4: कदाचित 2 या 3 दिवस हुए।
0: 2-3 दिवस? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कई बरस बीत गए हों।
4: भगवती,
0: तुम्हारी स्वामिनी की अस्वस्थता का कारण क्या है? नहीं वैसिका, तुम भी यहीं रहो, मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा।
4: जी।
0: तुम दोनों ही इस अंतःपुर की शुभचेता और संरक्षक हो। अंतःपुर के रोग प्रायः राज्य के लिए गंभीर हो जाते हैं। तुम महारानी के रोग के विषय में निश्चय ही जानती हो, और स्यात उसका कारण भी।
4: नहीं भगवती।
0: महाराज रात्रि कहाँ बिताते हैं?
4: निज कक्ष में।
0: केवल महाराज, अकेले?
4: प्राय मुझे स्मरण कर लेते हैं।
0: अन्य कोई, गुणवती अथा गणिका?
4: नहीं भगवती,
5: लौटे हैं जब से तब से कदापि नहीं। हाँ, निंद्रा में स्वप्न के बीच अस्फुट स्वर में तीन नाम सुनाई दिए हैं, शची, चारुमित्रा और महादेवी पिंगला।
0: चारुमित्रा तो वही जनपद कल्याणी होगी, किंतु ये शची कौन है? ज्ञात है तुम्हें?
3: चंपा देवी नहीं जानती, किंतु मैं जानती हूँ देवी। गत प्रवास के प्रारंभ में महाराज कुछ समय सीमावर्ती ग्राम पैठार में रहे थे। शची वहीं के ग्रामीण की युवा पुत्री है।
0: उत्सव का आमंत्रण उसे भेजा गया है? सुना है चारुमित्रा को तो भेजा गया है,
3: किंतु चारुमित्रा से आप सम्मिलित नहीं हो रही। मैंने भी सुना है कि चारुमित्रा इन दिनों श्रेष्ठी नागदत्त के सेवाश्रम में हैं और किसी अभ्यास में संलग्न हैं। उनके न आने का यही कारण बताया गया है। शची को बुलाने के लिए महामाते ने राजकीय शिविका पैठार भेजी थी, वो वापस आ गई।
0: क्यों?
3: वहां कहा गया कि हमारे यहाँ बेटी की विदा पाहुने के साथ होती है, सैनिकों शिविका के साथ नहीं।
2: तभी देवी मैनावती को अवंती आते हुए पैठार पर रुकने के दृश्य स्मृति पटल पर चित्रित होने लगते हैं।
0: ओह, समझ में आया। मैंने उस ग्राम बाला को देखा है वैसिका। यहां आते हुए हमारा पड़ाव प्रेतपुर के निकटवर्ती पैठार ग्राम में हुआ था। अहर्निश ये ग्राम युवती मेरी सेवा में रही थी, ग्रामीणी की पुत्री, किंतु उसने या उसके पिता ने किंचित भी संकेत ये नहीं दिया कि भैया से उनका कोई संबंध है। वैसिका
3: जी,
0: इस जानकारी से मैं आश्वस्त हुई।
3: भगवती की आश्वस्ति हमारी प्रसन्नता का विषय है।
0: मैं राजोचित कूट औपचारिकता से ये नहीं कह रही। ये मेरा विश्वास है कि पैठार जैसे निष्पक्ष स्वाभिमानी ही किसी राज्य का संबल बनता है।
2: तभी दूर से दासी सूचना देती है कि राज महिषी पधार रही है।
6: क्षमा चाहते हैं नंदाश्री, हमें आने में विलंब हुआ, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रणाम स्वीकार करें।
0: सौभाग्य, संतति और समृद्धि से झोली भरी रहे। बैठो।
6: जी।
0: चंपा, तुम कुछ देर कुमार को संभालो। और वैसिका, तुमने तो प्राशन पान के लिए भी नहीं पूछा।
3: क्षमा भगवती, अभी प्रस्तुत करती हूँ।
0: मुझसे कुछ छुपाना नहीं पिंगला।
6: जी।
0: मैं तुम्हें असमंजस में नहीं डालना चाहती। महामात्य ने इसी कार्य के लिए मुझे संदेशा देकर बुलवाया है। वैसे भार्या और भ्रता के बीच अनेक बातें और प्रसंग गोपनीय होती हैं, और जिसका पति नरेश हो तो उसकी पीड़ाएं और अधिक गोपनीय होती हैं। किंतु यदि कोई व्रण विगलन उत्पन्न करने लगे तो उसे खोलना ही पड़ता है। भैया तुम्हारी सेज पर कितने समय से नहीं आए।
2: इस प्रश्न पर रानी पिंगला फूट फूट कर रोने लगती है।
6: नंदाश्री,
0: मेरे लिए यह जानना आवश्यक है पिंगला, तुम्हारे लिए, अपने भाई के लिए, इस कुल और राज्य के भविष्य के लिए, इसे छुपाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राज परिवारों को कदाचित मैं तुमसे कहीं अधिक जानती हूं।
6: नंदाश्री, 2 वर्ष से अधिक का समय हुआ।
0: फिर ये कुमार
6: हमारा पुत्र है।
0: निश्चय ही तुम्हारा पुत्र है, राजा के अंश से उत्पन्न है। उसकी शिराओं में मेरे पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। तुम उसकी मां हो। यद्यपि उसे जन्म देने वाली कोख इस रहस्य को और कौन कौन जानता है?
6: हम, चंपा, महामात्य और वैसिका।
0: अब मैनावती भी जान गई। पुत्र पर भैया का स्नेह तो है?
6: राजभवन में संभवतः एक यही उनका स्नेह भाजन है।
0: तो राजा का पिंगला के प्रति संदेह का कारण क्या है?
6: नंदाश्री, संतान की कामना में हमने गढ़ कालिका का अनुष्ठान प्रारंभ किया था। प्रतिदिन काली के मंदिर में अनुष्ठान के लिए हमें जाना पड़ता था। तभी सुरक्षा टुकड़ी का एक नायक हमारा बहुत ध्यान रखता था। वो युवा सुदर्शन, बलिष्ठ और प्रसन्न वदन था। स्यात, मन ही मन उसकी सहानुभूति भी हमारे साथ थी और यदा कदा हम भी उसके प्रति आत्मीयता व्यक्त करते रहते थे। उन दिनों नरेश की यौन लालसा अमर्यादित थी और हमें लगता कि उनके द्वारा मदिरा और मदनिका के अत्यधिक सेवन से हमारी कोख हरी नहीं हो पा रही है। नरेश की अवहेलना ने हमें व्यथित कर दिया था नंदाश्री। राजा ने हमें एक उपहार दिया और हमने वो उपहार न जाने किस रोष या कोप के वश होकर उस नायक को दे दिया। नायक ने बड़े ही सम्मान और गर्व के साथ उसे ग्रहण किया। 2 दिन बाद हमारा अनुष्ठान समाप्त हो गया। उस नायक को उसके पश्चात अवंती में फिर कभी नहीं देखा गया। संभव है कि उसे राज्य से निर्वासित कर दिया गया हो। संभव है कि
0: उसका जीवन ही समाप्त कर दिया गया हो। हाँ पिंगला, यही सर्वाधिक सुरक्षित और विश्वसनीय माना जाता है। किंतु पिंगला, तुमने उस नायक के प्रति अनुराग प्रकट क्यों किया?
6: नंदाश्री, हम अपने अस्तित्व के अपमान से आहत थे। हमारे मन में एक प्रतिशोध का आक्रोश था। हम स्यात ही प्रदर्शित करना चाहते थे कि यदि ऐश्वर्य के भोग से साधन जुटाए जा सकते हैं तो सौंदर्य के लिए भी साधन जुटाना कठिन नहीं होता।
0: मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी पिंगला। क्षमा करने की उदारता भी आवश्यक नहीं है। तुम्हारी प्रक्रिया स्वाभाविक थी, किंतु स्त्री के दायित्व उसे इतना अधिकार भी नहीं देते। यही उसका बंधन भी है। पिंगला, मैं तो मानती हूं कि स्त्री के बंधन के मूल में ना तो पुरुष है और न काल। इस श्रृंखला से वो एक ही संकल्प के साथ मुक्त हो सकती है।
6: अर्थात
0: स्त्री के बंधन का मूल है उसकी कोख। माना कि रति सुख नर और नारी दोनों के लिए काम्य है, किंतु पुरुष अपना भाग पाकर संतुष्ट और मुक्त हो जाता है और दायित्व नारी को सहेजना पड़ता है। स्त्री इस दायित्व से जीवन भर बंधी रहती है।

0: मेरे पति बंग नरेश ने भी अपने स्खलन का दोष मुझ पर ही मढ़ दिया था। 6 पत्नियां होते हुए भी 160 और भी न जाने कितनी। जब व्यथा से बचने के लिए मैंने विरक्त होकर साधना के मार्ग में मुक्ति खोजना चाही, तो उन्होंने मेरे गुरु के साथ मेरा नाम जोड़कर मेरे चरित्र पर ही संदेह किया। ये सब भूलकर अपनी कोख से उत्पन्न गोपी चंद को मैंने पाला है। कोख का बंधन है ये।
1: भगवती, उपहार प्रस्तुत है।
0: सभा का समय भी हो रहा है, नरेश पहुंचेंगे वहां, हमें भी वहां चलना चाहिए।

अवंतिपति भगवान महाकाल आप सभी का कल्याण करें। राजा तो वही हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। मदनोत्सव के इस अवसर पर मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि काम और वासना यूं तो एक ही प्रतीत होते हैं, किंतु उनके बीच मर्यादा की एक सूक्ष्म रेखा भी है जिसे भुलाना नहीं चाहिए। कामदेव का संयोग केवल रति से होता है, भले ही स्वर्ग में अनेक अप्सराएं हों। नदी उमग कर अम्बुद की ओर भागती है, लता विटप का आश्रय लेती है, पशु और पक्षी अपनी अपनी प्रजातियों में युग्म बनाते हैं। सर्वत्र मर्यादाएं हैं, किंतु मनुष्य प्रकृति का अतिक्रमण करके अपने ही नियम बनाता है और उन्हें तोड़ भी देता है। आज का ये उत्सव प्रारंभ हो।

0: पिंगला, तुमने राजा के मुंह से मर्यादा का आख्यान सुना?
1: सुना नंदाश्री। कहते कहते हमारी ओर ही देख रहे थे।
0: उत्सव की उद्दाम इंद्रिकता को देखो। मनोरंजन के लिए आयोजित नर नारियों का ये मेला नागरिकों में रोग बनकर बैठ गया है। दमित वासनाओं को उजागर करने का एक माध्यम। हे गुरु जालंधरनाथ, परम शिव महानाथ के नगर में काम का कैसा प्रसार है ये। जिसे देखो वही डूबा हुआ है। सब अधीर, सब चंचल। सुन रही हो पिंगला?
1: जी नंदाश्री, हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं।
0: पिंगला, मैंने अपने पति को नरक के रास्ते पर जाते हुए देखा है। पुत्र को उसी मार्ग पर चलते हुए नहीं देखना चाहती। काम कांतार में भटकने से बचाने के लिए ही मैंने उसे विवाह की मर्यादा में बांध दिया है। इस समय मैं उसके पास नहीं, अभी कुछ और समय बीतना है। प्रभु, गोपी को अपनी शरण, अपना संरक्षण प्रदान किए रहे।
2: भद्रजनों, अब आपके रंजन के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं।

0: यह प्रहसन।
1: अब हमें क्या करना होगा आर्य?
2: वही जिसे करने के लिए हमने जन्म लिया है। आर्य, इस महोत्सव में तुम किसे अनुग्रहित करोगी?
1: मूर्खा सरित्र, जानती ही हो तुम कि मूर्खता के लिए तुम मेरी प्रिय हो। नीतिकार कह गए हैं कि राजाओं और रानियों के निकटवर्ती मुंह लगे चाटुकार सेवक ही मूर्ख होना चाहिए।
2: आर्य, आपके इस कथन पर सभा मौन है, ना समर्थन और ना विरोध।
1: सब सद ब्रह्मज्ञानी है मूर्खे, वे जानते हैं कि वे चुप नहीं हैं। और कोई है जो चुप है, वो नहीं करते, कोई और करता है और लेता है, अर्थात मौन के माध्यम से ही वह मुझसे सहमत हैं।
2: तो फिर अनुग्रह कर डालिए, सभा में इतने सारे पुरुष तो हैं आर्य।
1: हाय, किंतु मुझे अपने योग्य इनमें से कोई नहीं दिखता।
2: कैसा पुरुष चाहती हैं आप? कवि चलेगा?
1: हाय हाय, चलती चिता में कूद जाऊंगी, पर कवि की भार्या नहीं बनूंगी।
2: क्यों?
1: सुहागरात श्रृंगार रस के छंद गाते गाते बिता देता है।
2: तो फिर राजा अथवा राजकुमार की खोज की जाए।
1: नहीं, राजा राज्यकार में ही जुटा रहता है और राजकुमार को आखिर से ही अवकाश नहीं मिलता। ऊपर से राजा संदेही होता है। कहो मधुवन में भ्रमर को मंडराते देख ले और चरित्र पर संदेह कर बैठे।
2: फिर तो केवल दास ही बचता है।
1: दास क्रय करने के लिए धन कहाँ है मेरे पास? तेरी उधर पूर्ति ही मुझे चिंता में डालती है।
2: तो फिर तुम्हारी कामना क्या है?
1: सत्य कहूँ?
2: आपके सच और झूठ में कोई अंतर है क्या?
1: मैं तो किसी श्रेष्ठी को अनुग्रहित करूंगी।
2: श्रेष्ठी? कोई कारण?
1: इसलिए कि वो धन के लिए जीता है और धन के लिए ही मरता है।
2: धन से दाम्पत्य सुख मिलेगा क्या?
1: मूर्खा, सुख तो कैसे भी क्रय किया जा सकता है, धन से रूप बल सभी मिल जाता है। धन अर्जित करने श्रेष्ठी अपना सार्थवा लेकर परदेश चला जाता है महीनों महीनों के लिए, तब स्त्री स्वतंत्र और स्वच्छंद हो जाती है।
2: तो दूर की सोच रही हो आर्य? कनक श्रृंगा में कोई इस योग्य है?
1: यही तो दुविधा है सखी, इस नगरी में ऐसा एक नहीं अनेक हैं।
2: तो चुन लो ना किसी एक को।
1: हाय, हम स्त्रियों को कैसे कुदिन आ गए हैं, मुझ जैसी रूपवती का अनुग्रह भी किसी को स्वीकार नहीं है।
2: कितना दुखद है ये, अब क्या करोगी, अब क्या करोगी?
1: हार नहीं मानूंगी, हार नहीं मानूंगी, हार नहीं मानूंगी।
3: दूसरी सुंदरी बनागण कुछ क्षण उसे विस्मित टुकुर टुकुर सा देखता रहा, फिर वह भी दोनों हाथ से अपना घांगरा पिंडलियों तक उठाए भागता हुआ पहले के साथ हो लिया।
0: महानुभावगण, एक आवश्यक सूचना सुने। किसी आवश्यक कार्य के कारण महाराज अधिक समय तक कुल सभा की शोभा नहीं बढ़ा पाएंगे, अतः अब केवल एक और प्रदर्शन होगा, यह है इंद्रजाल। महानुभाव, ये कलाकार महीनों की यात्रा करके महाकाल की पुण्य सलीला इस नगरी उज्जैनी में पहुंचा है। रसज्ञ दर्शकों के सम्मुख अपनी कला की प्रस्तुति के लिए देखें और आनंद लें।

0: वहां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार अरुण गीते, मैनावती दिव्या पवार, महामात्य अर्शद इकबाल, वैसिका प्रमिला दिवाकर, चंपा अनुराधा, पिंगला कंचन राजानी, उद्घोषक राकेश जैमिनी, स्त्रीवेशी पुरुष अमित त्रिछारिया और पुरुष अजय सिंह पाल।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना धारावाहिक कामिनी कायकांतारे का 20वां भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन कवरेज के लिए मासिक बेसिक वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मुंबई में दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के निवेशकों की पहली रोड शो एवं निवेशक बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे और निवेश अनुकूल वातावरण की जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में जन सहभागिता से हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलाया जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न को हर घर तिरंगा अभियान 2026 के साथ जोड़ा गया है। इस दौरान देशभक्ति के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वे विदेशी मुद्रा विनिमय और वित्तीय बाजार नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आपातकालीन चिकित्सा देखभाल में दोपहिया सड़क एम्बुलेंस शुरू करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। प्रदेश में 9 अगस्त रविवार को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाएगा। इस दिन भोपाल में नागरिकों और युवाओं के सहयोग से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। प्रदेश में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और 1 मानसून ट्रफ सक्रिय है, लेकिन इसका प्रभाव कमजोर बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 6 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। और ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर देशवासियों को गौरवान्वित किया है। खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण सहित कुल 39 पदक जीतकर भारत का परचम लहराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

सखियों, प्यार, विश्वास और रिश्तों की खूबसूरत डोर से बंधा महिला सभा का आज का अंक, और इस अंक के साथ हाजिर हूं मैं, यानी आपकी अपनी रेडियो सखी आराधना। आप सभी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि तुमसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तुमसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तुमसे फूलों का नहीं खुशबू का रिश्ता है मेरा। वाकई सखियों, रिश्ता एक खूबसूरत शब्द, एक खूबसूरत एहसास जो हर माँ का अपने बच्चे से होता है, और ये रिश्ता माँ का बच्चे से तब और अधिक बढ़ जाता है जब माँ उसे अपना दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है। सखियों, माँ का पहला दूध जो कि देखने में हल्के पीले रंग का और गाढ़ा होता है, वास्तव में शिशु के लिए अमृत के समान होता है। इसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसे व्यर्थ बिल्कुल भी न जाने दे सकियो, क्योंकि यह कुदरत की तरफ से बच्चे को पहला टीका होता है जो कि उसे कई अनचाही बीमारियों से बचाता है। इसी तरह सखियों, पहले 6 माह तक बच्चे को पानी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना यानी बच्चे के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना है। इसलिए जन्म के समय बच्चे को माँ का दूध ही सर्वश्रेष्ठ आहार है और वही देना चाहिए। सखियो, स्तनपान से संबंधित ये सभी बातें हम कार्यक्रम के शुरुआत में आप सभी से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। सखियो, दुनिया भर में इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य

सिर्फ और सिर्फ यही है कि शिशु के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अनचाही बीमारियों से माँ और बच्चे की रक्षा करना। तो सखियो, हमें उम्मीद है कि स्तनपान कराने के लिए आप सभी समाज में माताओं को जागरूक अवश्य करेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ बच्चा ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है ना सखियो। और आज की अपनी इस बात के साथ सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

और इस प्यारे से गीत के बाद अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं सरकारी योजना की। सखियों, केंद्र सरकार ने देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए हैं, योजनाएं बनाई हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए हर सक्षम और सशक्त प्रयास किए हैं ताकि देश के हर क्षेत्र का न सिर्फ विकास हो सके बल्कि हर छोटे से छोटे व्यक्ति को भी उन योजनाओं का लाभ मिल सके। सखियों, ऐसी ही योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की गाँव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना, जो कि राज्य की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। सखियों, इन योजनाओं के तहत पात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की वित्तीय मदद दी जाती है और इन योजनाओं के पात्रता की यदि बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को 12वीं में कम से कम 60% अंक से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में बीपीएल धारी परिवार की मेधावी छात्राओं को जिन्होंने 12वीं में अच्छे अंक हासिल किए हों वही इन योजनाओं की हितग्राही छात्राएं होंगी। और अब बात करते हैं आवेदन की। सखियों, गांव की बेटी योजना के लिए एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से और प्रतिभा किरण योजना के लिए एमपी हायर एजुकेशन पोर्टल पर समग्र आईडी और बीपीएल प्रमाण पत्र के साथ आप इन योजनाओं में आवेदन कर सकती हैं और अपना पंजीकरण करवा सकती हैं। तो सखियों, जुड़िए और जुड़िए लाभार्थियों को सरकार की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं से। और सखियों, सरकारी योजना से परिचय कराने के बाद अब मिलते हैं ऊंची उड़ान भरने वाली आपकी ही अपने बीच की सखी से। क्रम मेरी उड़ान में आज की हमारी सखी है

0: उड़ान खुशियों की,
1: उड़ान सपनों की,
0: उड़ान हौसलों की,
1: मेरी उड़ान।
2: सखियों, आज हम अपने इस कार्यक्रम में उस कलाकार से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जिनके न केवल घर के अंदर का हर कोना बहुत ही खूबसूरती से रंग बिरंगे रंगों से सजा है, बल्कि घर के बाहर की भी खूबसूरती कला के माध्यम से सजी संवरी है। सखियों, जी हाँ सखियों, हम बात कर रहे हैं

0: ये लोग घर में कभी भी फ्री नहीं बैठती थी, कुछ ना कुछ दोपहर के वक्त करती रहती थी। तो साथ
1: जी
0: में चूंकि हम बेटियां थी तो हमें भी अपने साथ रखती थी, तो उनके साथ रह रह कर ही ये सब कला जागृत हो गई और उससे हमने धीरे धीरे बनाना सीखा। वो तो मोटिवेशन मिलता गया घर से ही,
1: बिल्कुल।
0: तो वो अपने आप इमेजिन पावर बढ़ता गया, तो वो ये सब अपने आप सीख लिया देख देख कर।
1: क्या बात है। तो सोनाली जी ये बताइए कि कोई भी काम आप चीज़ें देखती हैं, मान लीजिए वो वेस्ट मटेरियल है, तो उससे आप क्या आपके दिमाग में आता है?
0: जैसे मैंने बचपन से देखती गई तो मुझे कहीं ना कहीं कोई भी वेस्ट चीज़ दिखती है तो मुझे अपने आप उसमें कुछ न कुछ आकृति या कुछ न कुछ दिखने लग जाता है कि इसको मैं कैसे उसको अच्छा बनाऊँ,
1: नया
0: उसको
1: अवतार
0: नया
1: दूँ।
0: बनाऊँ, कुछ नया रूप दूँ ताकि वो सुंदर दिखे, जिसको आप ऐसे ही फेंक देते हैं। फिर इस तरीके से मैं उसको अपनी कला से, अपने इमेजिनेशन पावर से उसको एक नई आकृति गढ़ने की कोशिश कर।
1: जैसे कि आपने बताया कि आप लिप्पन आर्ट वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह भी करते हैं, तो जो एक पेंटिंग आप बनाते हैं उसमें कितना समय लगता है?
0: ये आप उस पेंटिंग की मतलब बड़ी साइज या उस पर निर्भर रहता है या आप कितना टाइम देते हैं। वैसे तो 1 या 2 दिन में बन जाती है, कोई कोई जी को 8 से 10 दिन भी लग जाते हैं। वो आपकी उस बारीकी, उसकी कार्विंग
1: काम
0: और उस
1: करने
0: पर
1: की
0: काम करने
1: क्षमता
0: की
1: पर ना।
0: क्षमता उस
1: जी
0: पर निर्भर है कि आप उस
1: बिल्कुल।
0: पर कितना टाइम दे रहे हैं। तो वो उस हिसाब से वो मतलब कम से कम 1-2 दिन तो लगते ही हैं। इस प्रकार
1: बिल्कुल।
0: से बनाती हूँ मैं।
1: तो ये सभी सामान जो आप मान लीजिए इसमें यूज़ करती हैं, जो भी कलर वगैरह या बोर्ड वगैरह, वो सारे सामान आपको यहीं मिल जाते हैं, अवेलेबल
0: हाँ
1: जाते
0: बिल्कुल
1: हैं?
0: आसानी से मिल जाता है। फिर आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत हो गए हैं तो उसको ऑनलाइन भी हम मंगवा लेते हैं। और फिर बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं इंदौर में तो, जहाँ पर ये सब आसानी से मिल
1: मिल
0: जाता है
1: जाता
0: सामान
1: है।
0: और हो जाता है मैनेज।
1: अच्छा, जब आप कोई नई चीज़ बनाती हैं तो आपको तारीफ भी मिलती होगी,
0: हाँ जी
1: है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उस टाइम आपको कैसा लगता है?
0: बहुत अच्छा लगता है। तारीफ तो ऐसा है कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती
1: बिल्कुल।
0: है ना,
1: अब
0: इसलिए तारीफ तो मिलना मिलती है तो और
1: वो
0: मोटिवेशन
1: ज़रूरी भी
0: मिलता है,
1: है,
0: बहुत ज़रूरी है। तो
1: बिल्कुल।
0: उससे आपको लगता है कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छा होने के लिए प्रेरित होते हैं, तो उससे फिर और मतलब प्रेरणा मिलती है तो और आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए लगता है कि हाँ ये जो अपन कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं।
1: मैंने कुछ
0: हाँ
1: किया
0: किया है,
1: है
0: मतलब
1: ना?
0: अपने आप से एक सेटिस्फेक्शन भी बहुत बड़ा होता है जो,
1: बिल्कुल
0: और सेटिस्फेक्शन है तो सब कुछ है।
1: बिल्कुल। अच्छा, आप जो ये एक बना रही हैं, कर रही हैं, तो उसमें क्या आप दूसरों को भी सिखा रही हैं?
0: हाँ जी बिल्कुल, अभी मैंने स्टार्ट किया है दूसरों को भी सिखाना। जैसे मेरे आसपास के जो हैं, सब मेरी फ्रेंड्स हैं आसपास जो रहते हैं रहवासी हैं, फिर मेरी मेट के बच्चे, उनको तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ।
1: क्या
0: और
1: बात है।
0: बाकी जो आसपास सहेलियाँ हैं, जो फ्रेंड सर्कल और दूसरे जो भी आता है, मैं सबको ही सिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो सभी ये सीखें, कला को आगे बढ़ाएं।
1: आगे बढ़ाएं, बिल्कुल। अब सबसे ज़रूरी बात सोनाली जी की, इन पेंटिंग्स और कलाकृतियाँ बना रही हैं, उससे कुछ आपको आर्थिक रूप से भी फ़ायदा होता है, मदद मिलती है आर्थिक रूप से?
0: हाँ जब मैंने ये सीखा था, बनाना शुरू किया था, तब इस बारे में बिल्कुल मैं अपनी सिर्फ कला को आगे बढ़ाना चाहती थी और अपने शौक को डेवलप करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने आर्थिक रूप से सोचा नहीं था। पर वो धीरे धीरे इतना फैल गया कि वो आर्थिक रूप से भी मुझे मदद होने लगी और इस तरह से मुझे और घर में भी मेरा सहयोग रहने लगा इकोनॉमिक रूप से। तो मुझे दोनों ही कार्य, मेरा शौक भी पूरा हो गया और सहयोग भी हो रहा है।
1: सहयोग भी हो रहा, बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सोनाली जी, जब आप कोई भी काम करती हैं, तो आप जैसे पेंटिंग्स बना रही हैं, कई बार आपको बाहर भी जाना पड़ता है इस सिलसिले में, है ना?
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: ये जो
0: बिल्कुल,
1: आप काम करती हैं, तो आपके परिवार का सपोर्ट कैसा रहता है?
0: हाँ फुल सपोर्ट रहता है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता है। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत आई लेकिन जब धीरे धीरे उन्हें लगा कि इसे बहुत शौक है और ये बहुत अच्छा कर रही है, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। और मेरे दोनों बेटे बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे इसमें आगे बढ़ने में मतलब सहायता भी करते हैं और आइडियाज़ भी देते हैं कि आप
1: बिल्कुल।
0: मम्मी इस तरह से करिए, इस तरह, तो पूरा सपोर्ट रहता है मुझे घर का, हर तरीके से सपोर्ट
1: क्या
0: करते वो
1: बात है,
0: लोग। हाँ
1: जब
0: जी
1: पीछे से सपोर्ट है तभी हम आगे बढ़
0: हाँ
1: सकते
0: जी
1: हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है
0: लेडीज़
1: ना?
0: के लिए तो ये बहुत लागू होता है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ
1: अच्छा सोनाली जी, एक बात और, कि यदि हमारी कोई सखी इस क्षेत्र में आगे आना चाहती है,
0: जी
1: पेंटिंग्स वगैरह करना चाहती है, कुछ आगे बढ़ना चाहती है, तो उसे क्या करना होगा?
0: बिल्कुल, मैंने मेरा ये उद्देश्य भी है कि मैं जो आर्थिक रूप से अक्षम है, जो नहीं करते सीखना, मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊं ताकि वो अपना कमा भी सके और इस कला को जान भी सके और आगे फैलाएं। तो मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि उनको मैं सिखाऊं और
1: क्या
0: ये
1: बात
0: और
1: है,
0: सिखाती भी हूँ।
1: क्या बात है। तो इसमें कुछ जमा पूंजी की भी जरूरत होती है क्या?
0: बहुत कम, शुरू शुरू में तो आप ऐसा है कि वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, तो आप घर की चीज़ों से ही आप बना सकते हैं और बहुत कम खर्चे में ये सब काम हो जाते हैं। और धीरे धीरे आइडियाज आते हैं, तो इसे ज़्यादा पूंजी नहीं लगती है
1: बिल्कुल, यानी
0: बिल्कुल। अब
1: आपको सीखने की कला
0: हाँ
1: आनी
0: कला
1: चाहिए,
0: चाहिए बस,
1: आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आने
0: बिल्कुल
1: चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: ये

0: से कैसे मैनेज करते हैं, तो वो धीरे धीरे सीखते सीखते आ जाता है। तो ये एक ऐसी कला है कि जिसमें खर्च बहुत कम होता है।
1: क्या बात है सोनाली जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अंत में आप हमारी सखियों से क्या कहना चाहेंगी?
0: अंत में उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि हम होम मेकर हैं तो कोई भी कार्य करने से रुके नहीं। जैसे आप घर में खाना बनाती हैं तो आप कुछ भी नई नई डिश ट्राई करती हैं, तो ये डालती ही हैं कि अगर आप जॉब नहीं कर सकती हैं तो ये कला को ज़रूर अपनाएं। आप ये घर बैठे समय निकाल के बिल्कुल कर सकती हैं और अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं। मैं अंत में अपनी सभी सखियों से यही कहना चाहूँगी, हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दें, बल्कि हौसला वो रखें जो हालातों को बदल दें।
1: क्या बात है सोनाली जी, यानी आपके कहने का मतलब है कि कोई भी सखी जो आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो बिल्कुल वो बेशक ये काम कर सकती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मन में अपने दृढ़ निश्चय हो तो हर काम हो जाएगा।
1: बहुत खूब सोनाली जी। तो सखियों, यदि आप में भी हुनर है, कुछ घर बैठे करना चाहती हैं, तो बेशक कीजिए, क्योंकि किसी भी कला में कलाकार खुद को उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। तो सोनाली जी, आपका हमारी सखियों से जुड़ने और उन्हें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आराधना।

और सखियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं सजने सवरने की। सखियों, गर्मियों में तो हम सभी अपना मेकअप जैसे तैसे बचा लेते हैं, लेकिन मानसून की बूंदाबांदी में मेकअप को बचाना जरा मुश्किल हो जाता है ना? तो फिर सखियों, नोट कीजिए कुछ जरूरी टिप्स रूप लावण्य में और रहिए इस मौसम में भी बेखबर। जैसे कि सखियों, इस मौसम में आप हमेशा अपना मेकअप जो करें वो हल्का ही करें, साथ ही आपका

मेकअप ऐसा हो जो वाटर प्रूफ हो ताकि वो पानी लगने पर धुले नहीं। इसके साथ ही सखियों, फाउंडेशन के बजाय टेलकम पाउडर को ही आप अपना मेकअप का बेस बना सकती हैं। साथ ही लिपस्टिक भी आप हल्के रंग की ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ यदि हेयर स्टाइल की बात करें तो हेयर स्टाइल आप सादा ही रखें ताकि बालों को सूखने में आसानी हो। और हाँ, भारी भरकम ज्वेलरी के बजाय हल्की ज्वेलरी ही पहनें। वहीं कपड़ों में सफेद व हल्के रंग के कपड़ों का इस्तेमाल हो सके कम ही करें। और हाँ, अंत में एक खास बात सखियों कि प्लास्टिक या रबर की ही चप्पलें, जूते या जूतियां ही पहनें ताकि आपके पैरों की भी सुरक्षा और सुंदरता बनी रहे। तो सखियों, इस मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच इन जरूरी बातों को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। और हाँ, हमारे साथ गुनगुनाते रहें बारिश में ये सदाबहार गीत।

और इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और चलते हैं अपनी रसोई में। सखियों, मौसम बरसात का है और बरसात के मौसम में पानी गिरने पर कुछ ना कुछ नया टेस्टी और हेल्दी खाने का मन हम सभी का करता है। तो चलिए आज रसोई में स्वाद के साथ लाते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट और बनाते हैं कुछ नया, अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन, और वो व्यंजन है गुड़ और आटे का चीला। तो सखियों, सबसे पहले नोट कीजिए इसमें लगने वाली सामग्री, जैसे कि गेहूं का आटा 1 कप, गुड़ बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ 1/2 कप, पानी 1 से 1.5 कप आपकी घोल के अनुसार, सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, चिरौंजी 2 छोटे चम्मच, नारियल किसा हुआ 1/2 कप, थोड़ा सा नमक और सेंकने के लिए घी या तेल। और सखियों, अब नोट कीजिए इसे बनाने की विधि। सबसे पहले गुड़ को गुनगुने पानी में सखियों घोल कर इसके पानी को आप छान लें। अब एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें और थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डालते हुए चम्मच से मिलाएं ताकि गुठली या लम्स बिल्कुल भी ना रहें। अब इसमें नारियल का बुरादा, सौंफ, चिरौंजी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और उसकी कंसिस्टेंसी डोसे के घोल की तरह तैयार कर लें। अब गैस पर नॉनस्टिक तवे को गर्म करके घी या तेल लगाएं और घोल को बड़ी चम्मच से डालते हुए एक सार फैलाएं। मध्यम आंच पर नीचे की तरफ से सुनहरा

भूरा होने तक पकने दें और फिर उसके बाद में पलट लें और दूसरी तरफ भी अच्छे से सेंक लें। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म गुड़ और आटे का मीठा चीला। इसे आप इमली की चटनी के साथ सर्व करें। दर्शकों, बनाइए, खाइए और खिलाइए ये स्वादिष्ट मीठा चीला इस भीगी सी बरसात में, और साथ ही आनंद लीजिए इन गीतों का।

सखियों, बदलते मौसम में, विशेष रूप से मानसून में, सब्जियों में मिट्टी, कीटनाशक और बैक्टीरिया का खतरा जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए सही तरीके से धोने से संक्रमण और बीमारियों से बचा जा सकता है। तो चलिए काम की बातों में बात करते हैं कि सब्जियों को सही तरीके से किस तरह साफ किया जाए। सखियों, इन बातों का हमेशा ध्यान रखें सब्जियों को धोते समय। सखियों, इस मौसम में सब्जियों को हमेशा बहते पानी से ही धोएं, ना कि एक बर्तन में पानी लेकर। सखियों, कुछ लोग सब्जियों को धोने के लिए साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। इसके बजाय आप एक बर्तन में पानी लेकर उसमें एक चम्मच नमक या फिर सेव के सिरके का घोल भी बना सकती हैं और उनसे सब्जियों को धो सकती हैं। सब्जियों को हमेशा काटने से पहले ही अच्छी तरह से धोएं, ना कि काटने के बाद, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सब्जियां काट लेते हैं फिर धोते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। तो सखियों, ये तो थी कुछ बातें सही तरीके से सब्जियों को धोने की। सखियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते हम आपको बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। फिर मिलने के वादे के साथ अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी आराधना को। नमस्कार।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
2: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
1: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
2: अरे काहे का मजा,
1: क्यों, क्या हुआ?
2: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध कार्यक्रम,
3: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
2: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
1: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
2: अरे काहे का मजा।
1: क्यों, क्या हुआ?
2: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
1: अरे
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।
4: आजी गुरु।

लोक संगीत का कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं और ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

लोक संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इसमें आज के कलाकार थे कालू सिंह चोपड़ा और साथी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में कलाकार हैं श्रुति काले और ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में कलाकार थीं श्रुति कालवे और ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे

0: मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
1: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
0: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
1: ये हुई ना बात।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, और झूलते झूलते सुनते हैं
0: मालवा की शान आकाशवाणी
2: इंदौर।
0: अरे दीदी धीरे धीरे।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

जमाना दीवाना फिल्म का नगमा आपको सुनवा रहे हैं। आवाज है विनोद राठौर की, गीत समीर का और तर्ज बनाई नदीम श्रवण ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं आप आए बाहर आए फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के हैं, तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। संसद के मानसून सत्र के बीच आज एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। एनसीपीआई सांसद सुदीप बंदोपाध्याय पहली बार इस बैठक में पहुंचे और उन्होंने पार्टी की एकजुटता का दावा किया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने सांसदों को सरकार की प्रमुख योजनाओं और हालिया मुक्त व्यापार समझौतों की जानकारी भी दी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ज्ञान और निरंतर प्रयास का संदेश देते हुए एक संस्कृत श्लोक साझा किया। उन्होंने लिखा कि लगातार मेहनत और साधना से प्रतिभा निखरती है और आज देश के युवा इन्हीं गुणों के दम पर दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गीता का श्लोक साझा करते हुए ज्ञान को सबसे पवित्र बताया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज निवेश मिशन के तहत मुंबई दौरे पर रहेंगे। वे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दूरसंचार क्षेत्र के निवेशकों के रोड शो और बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान ग्वालियर में प्रस्तावित देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए निवेश आकर्षित करने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव निवेशकों को प्रदेश की औद्योगिक नीतियों और निवेश के अनुकूल माहौल की जानकारी भी देंगे। प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को आधुनिक और रोजगार से जोड़ने की दिशा में आज भोपाल में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्घाटन राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ, जबकि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर राज्यपाल डॉ मंगूभाई पटेल ने कहा,
1: आज की यह कार्यशाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रभावी क्रियान्वयन तथा विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय संकल्प को गति देने का महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें उपस्थित सभी कुलगुरु, प्राचार्य, शिक्षाविद, विशेषज्ञ, अधिकारी तथा प्रतिभागियों का सहभागिता ज्ञान आधारित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है।
0: इस कार्यशाला में देशभर के शिक्षाविद, वैज्ञानिक, उद्योग विशेषज्ञ और विश्वविद्यालयों के कुलगुरु शामिल हो रहे हैं। कार्यशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कंप्यूटिंग, हरित ऊर्जा और कौशल विकास जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। प्रदेश में करीब 9 साल बाद छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सितंबर में छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। सरकार के इस आश्वासन के बाद अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। चुनाव होने से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लाखों विद्यार्थियों को अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने सभी जिलों में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के दौरान तिरंगा यात्रा, बाइक रैली, रंगोली प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति से जुड़े कई आयोजन होंगे।

लोगों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी जिले में जुलाई से शुरू हुई खरीदी प्रक्रिया के तहत अब तक 7 निर्धारित उपार्जन केंद्रों के जरिए 2118 किसानों से कुल 7022 क्विंटल से ज्यादा मूंग की खरीदी की जा चुकी है। नर्मदापुरम समेत प्रदेश भर के जिलों में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम जीवन की स्थायी शुरुआत के लिए स्तनपान, जो कारगर है उसे मजबूत करें रखी गई है। और शिवपुरी जिले में आमजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए 7 अगस्त से 8 जनवरी तक मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन

0: आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
2: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल DMK के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
3: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
1: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
4: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
5: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
1: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
7: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम्पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज दलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवा

0: अबोहा पोत पर आज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाघ जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले आप सभी की फरमाइश लिखने वाले हैं सारणी जिला बैतूल से अमित, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवलिका और संदीप पाटिल। बड़वा से प्रवीण, श्रीमाली, मीना, आदित्य, शिवानी और मीनूराज। आप सभी ने सुनना चाहा है कुछ खट्टी कुछ मीठी फिल्म का नगमा कुमार सानू की आवाज़ में, समीर के बोल और तर्ज बनाई अन्नू मलिक ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

आइए अब आपको सुनवाते हैं बैराग फिल्म का नगमा, जिसे सुनना चाहा है रेडियो श्रोता, महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा से राजेश कुमार, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला, गायत्री, खुर्दी रोड मानपुर से विजय, रानी, महिमा, नीतू। और इसी गीत को सुनना चाहा है महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रिंस, एकांश, नागपुर से वैशाली, श्वेता, सुमित, ध्वनि, और बदलापुर मुंबई से सिद्धांत और प्रणीता। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, रोडबिका और ऋषिका, इंदौर से लाल फतेह चिंतानी, लीला फतेह, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, आप सभी ने सुनना चाहा है लाजवंती फिल्म का नगमा आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है, तर्ज बनाई एस जी बर्मन ने।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं बहिया से सुरेश, केशरी, पूनम, प्रतीक, बक्सर से राजेश, पंकज और रोहन, महंसवाड़ी से शत्रुघ्न, वाल्मीकि, नीना, स्वप्निल और अजय। आप सभी ने सुनना चाहा है इश्क विश्क फिल्म का नगमा, आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीत समीर का, संगीत अनु मलिक का।

आदर्श नगर मचोल से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मेंटी, सौरभ और शाइनी शर्मा, आप सभी ने सुनना चाहा है। एक बार फिर फिल्म का नगमा अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र की आवाज़ों में। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये नगमा।

एक बार फिर फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह की। विनोद पांडे ने बोल लिखे थे और रघुनाथ सेठ की तर्ज थी। इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।

संसद के मानसून सत्र के बीच आज एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ज्ञान और निरंतर प्रयास का संदेश देते हुए एक संस्कृत श्लोक साझा किया। उन्होंने लिखा कि लगातार मेहनत और साधना से प्रतिभा निखरती है और आज देश के युवा इन्हीं गुणों के दम पर दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज निवेश मिशन के तहत मुंबई दौरे पर रहेंगे। वे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ

0: दूरसंचार क्षेत्र के निवेशकों के रोड शो और बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान ग्वालियर में प्रस्तावित देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए निवेश आकर्षित करने पर जोर रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं, और प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को आधुनिक और रोजगार से जोड़ने की दिशा में आज भोपाल में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्घाटन राज्यपाल मंगू भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि रहे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव पर सभा समाप्ति से पहले आइए जानते हैं आज की सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। शाम 5:02 पर युवाणी कार्यक्रम सुना जा सकता है। 5:33 पर फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है। 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। चित्रपट संगीत आपको सुनवाएंगे 6:30 पर। 8 बजे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे संसद समीक्षा।

8:15 पर सुर्खियों में आप सुन सकते हैं। 8:30 पर फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है। 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम कहकशां हम आपको सुनवाएंगे। 10:00 फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी सुना जा सकता है। इसमें आज आप सुनेंगे चेताली शेवलिकर का वायलिन वादन, राग होगा यमन। 7:30 पर सुना जा सकता है किसानवाड़ी कार्यक्रम।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलो हर्ट्स पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3:02 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। इस बीच डीटीएच पर प्रसारण जारी रहेगा।

इंदौर केंद्र से। शाम के ठीक 5 बज रहे हैं, आरंभ हो गई है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सांध्यकालीन सभा सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस सभा में हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और श्रोताओं, शाम के 5 बजते ही, जैसा कि आप जानते हैं, आपको हम सुनवाते हैं कार्यक्रम युववाणी। तो आइए सुने कार्यक्रम युववाणी, आपको लिए चलते हैं अपने युवा कंपियर्स के पास और सुनवाते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज है आपके साथ काजल
1: और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राज।
0: और आज हम करेंगे आपसे ढेर सारी बातें, जैसे कि हर बार करते हैं। बताएंगे आपको नए नए किस्से और सुनाएंगे आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर गीत। पर उससे पहले, जैसे कि हर बार हम आपसे दो प्रश्न करते हैं, तो वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं और आप वो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है कि इसरो का मुख्यालय किस शहर में स्थित है।
1: और दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं काजल, क्योंकि आज शुक्रवार तो नहीं है, मंगलवार जरूर है। और मंगलवार को हम हमारे साथियों के लिए लेकर आते हैं हमारा खास सेगमेंट, जिसका नाम है एक ही शहर से, जिसमें हम हमारे शहर के बारे में बात करते हैं, वहाँ के वातावरण, वहाँ का एजुकेशन, वहाँ की खेती गृहस्थी और जितना भी कुछ है वहाँ शहर के बारे में। उसी के साथ साथ आज एक सिनेमा, हिंदी सिनेमा के एक खास दिग्गज कलाकार, निर्माता, निर्देशक और पार्श्व गायक, प्यारे से कलाकार का जन्मदिन है, जो कि हमारे ही निकट मध्य प्रदेश के प्यारे से शहर खंडवा से हैं। तो उनके जिंदगी के बारे में, उनके कई सारे पहलुओं के बारे में और संगीत सिनेमा के जगत के बारे में, उनकी प्यारी प्यारी यादों के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल आप सुनिए प्यारा सा ये गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, आज का दिन भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए बेहद खास है। 4 अगस्त को हम याद कर रहे हैं उस महान कलाकार को जिसकी आवाज़ में शरारत भी थी, गहराई भी है, दर्द भी है और जीवन का उत्साह भी है। जी, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के महान पार्श्व गायक, अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, निर्माता और निर्देशक किशोरदा यानी किशोर कुमार के बारे में।
2: दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवा की धरती पर 4 अगस्त 1929 को जन्मे आभास कुमार गांगुली, जिन्हें दुनिया आज किशोर कुमार के नाम से जानती है, भारतीय संगीत के सबसे लोकप्रिय और बहुमुखी कलाकारों में गिने जाते हैं।
1: दोस्तों, किशोरदा की सबसे बड़ी खासियत ये भी थी कि उन्होंने कभी औपचारिक रूप से संगीत की शिक्षा नहीं ली, लेकिन उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था जिसने करोड़ों दिलों को अपना दीवाना सा बना दिया। वे सिर्फ गायक नहीं थे बल्कि एक ऐसे कलाकार थे जो हर गीत में जान डाल देते थे।
2: जी हाँ, और अगर आप ध्यान दें तो किशोर कुमार ने हर भाव के गीत गाए हैं। अब वो चाहे रोमांस हो, जिसमें आपने वो गाना सुना होगा रूप तेरा मस्ताना, अब या फिर वो दोस्ती हो, जैसे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और उनकी आवाज का वो जो जादू है, जीवन को प्रेरित करने वाला गाना जिंदगी एक सफर है सुहाना।
1: काजल, ये तो मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा गाना है।
2: बिल्कुल, हम सबका पसंदीदा गाना है ये। और दिल को छू लेने वाला वो चिंगारी कोई भड़के, वैसे इसे मुझे गाना नहीं आता है, तुम्हें आता है राज?
1: मैं कुछ थोड़ा बहुत गुनगुनाता
2: हूं। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाओ।
1: चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुला, मतलब मुझे अच्छे से लिरिक्स याद नहीं है, बाकी आप जब भी सुनिएगा बहुत प्यारा सा गाना है और भाव करने वाला गाना है, फील करने
2: और
1: वाला।
2: इसी के साथ साथ एक जो हम सबके दिल के बहुत ज्यादा करीब है और वो है

0: और बेफिक्र अंदाज जो था उनका वो दर्शकों को खूब पसंद आता था।
1: हालांकि पर्दे के पीछे वे अलग स्वभाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन वे सादगी पसंद व्यक्ति थे, प्रकृति से प्रेम करते थे और अपने मन की बात बेझिझक कहने के लिए मशहूर थे।
0: अपने करियर की बात करें, यानी उनके करियर की बात करें, तो उन्होंने हजारों गीतों में अपनी आवाज़ दी। हिंदी के अलावा भी अलग अलग भाषाएं जैसे कि बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और अन्य भारतीय भाषाओं में उन्होंने गीत गाए।
1: तो दोस्तों, यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता पूरे देश में फैली हुई है। किशोर कुमार को उनके शानदार गायन के लिए 8 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है साथियों। और आज भी उनके गीत नई पीढ़ी उतने ही उत्साह से सुनती है जितना पुराने दौर के श्रोता सुनते थे।
0: दोस्तों, समय बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन कुछ आवाज़ें कभी पुरानी नहीं होती। किशोर कुमार की आवाज़ भी उन्हीं अमर आवाज़ों में से एक है।
1: आज सोशल मीडिया, म्यूजिक ऐप्स और रेडियो पर उनके गीत लगातार सुने जाते हैं। उनकी गायकी हमें सिखाती है कि सच्ची कला समय की सीमाओं से परे होती है। साथियों,
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राज तुमने। और उसी के साथ युवाओं के लिए किशोर कुमार का जीवन जो है वो एक प्रेरणा की तरह देखा जा सकता है। उन्होंने अपनी मौलिक शैली बनाई, किसी की नकल नहीं की और अपनी प्रतिभा के दम पर इतिहास रच दिया।
1: मुझे उनके वो वाला सबसे अच्छा पार्ट लगता है गानों में, जो वो यूडलिंग लेते हैं ना, उड़ले। तुमने सुना है ऐसे गाने?
0: बिल्कुल सुने हैं और आज वो सुनने को नहीं मिलता।
1: हाँ, क्योंकि एक वर्सटाइल जो होता है सिंगिंग के, एक खास शैली की, जैसे तुमने बात की कि एक मौखिकता होनी चाहिए। आजकल के जो नए सिंगर है वो किसी को आइडल बना लेते हैं, पर उसको कॉपी भी करते हैं, पर एक अपनी जो खूबी होती है वो ही एक सिंगर की जान होती है। तुम्हें क्या लगता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। अपनी स्टाइल, किसी भी कलाकार की अपनी स्टाइल जो होती है, अपनी शैली जो होती है, उसी के लिए कलाकार जाना जाता है और इसीलिए उसे पसंद भी किया जाता है, क्योंकि वो बाकियों से अलग है। और किशोर कुमार की यॉडलिंग उनमें से एक है और वो आज तक किसी नए कलाकार में तो देख नहीं पाए हैं। अब क्या पता, देखते हैं आगे देख पाएंगे भी या नहीं।
1: बिल्कुल, तो उनका जीवन हमें संदेश देता है साथियों कि यदि अपने हुनर पर विश्वास हो तो काम के प्रति समर्पण भी हो तो सफलता निश्चित है।
0: बिल्कुल है, और कुछ आवाजें कभी बूढ़ी या पुरानी नहीं होती, वो समय के साथ और भी अमर हो जाती है। किशोर कुमार की आवाज ऐसी ही एक अमर धरोहर है।

0: हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में जब भी सबसे अनोखी, सबसे चुलबुली और सबसे जादुई आवाज़ का जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम आता है किशोर कुमार का। वे सिर्फ एक गायक नहीं थे बल्कि अभिनेता, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक और सबसे बढ़कर एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी सहजता और मौलिकता से हर दिल में जगह बनाई।
1: हम बात कर रहे हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प किस्सों की जिन्हें जानकर आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे।
0: दोस्तों, हम सभी ने फिल्म चलती का नाम गाड़ी का मशहूर गीत 5 रुपया 12 आना जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने के पीछे एक सच्ची कहानी छुपी हुई है?
1: अच्छा, पर किशोर दा ने अपनी पढ़ाई इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से की थी और आज भी वहाँ का कमरा नंबर 4 कॉलेज परिसर का इमली का पेड़, हॉस्टल की गैलरी और प्रसिद्ध काका भी कैंटीन उनकी यादों को संजोए हुए हैं।
0: बिल्कुल ठीक, कॉलेज के दिनों में किशोरदा को काका की कैंटीन का पोहा, जलेबी और जो कि इंदौर का सबसे प्रसिद्ध एक व्यंजन है, जलेबी और चाय बहुत ज्यादा पसंद थी। लेकिन छात्र जीवन में जब अक्सर खाली जेब रहती है तो ऐसे में उधार का नाश्ता कर लिया करते थे वे भी।
1: धीरे धीरे कैंटीन के काका के यहाँ उनका 5 रुपए 12 आने का उधार हो गया था।
0: और दोस्तों, जब भी काका अपने पैसे मांगते तो किशोरदा बड़े ही मजेदार अंदाज में गुनगुनाते, 5 रुपया 12 आना मारेगा काका ना ना ना ना।
1: यही मजाकिया अंदाज आके चलकर फिल्म चलती का नाम गाड़ी के सुपरहिट गीत की प्रेरणा बना। फिल्म के शब्द थोड़े बदले लेकिन उस कॉलेज की याद हमेशा के लिए अमर हो गई।
0: दोस्तों, दिलचस्प बात यह भी कही जाती है कि फिल्म इंडस्ट्री में नाम और दौलत कमाने के बाद उसके बाद भी किशोरदा काका की वो उधारी लौटा नहीं पाए, शायद इसलिए कि वो उधार नहीं बल्कि उनकी सुनहरी यादों का एक सुनहरा प्रेम भरा हिस्सा था।
1: दोस्तों, अब बात करते हैं एक और अमर गीत की जो कि था, मेरे सामने वाली खिड़की में एक जान कटकड़ा रहता है। कहा जाता है कि कॉलेज के हॉस्टल में रहते हुए किशोर कुमार अक्सर अपनी खिड़की पर बैठ जाते थे और सामने बने गर्ल्स हॉस्टल की ओर देखते हुए इस तरह की धुन गुनगुनाया करते थे।
0: उनकी शरारती कल्पना और चुलबुला स्वभाव बाद में फिल्म पड़ोसन के इस यादगार गीत में दिखाई दिया। आज भी ये गीत सुनते ही चेहरे पर मुस्कान सी आ जाती है साथियों। और इतना ही नहीं, कॉलेज के लोगों का मानना था कि किशोर कुमार के कई गीतों की शुरुआत कल्पना और धुने उसी क्रिश्चियन कॉलेज के वातावरण में जन्मी हैं।
1: वे अक्सर कॉलेज परिसर में लगे इमली के पेड़ के नीचे बैठकर रियाज करते थे। शायद उस पेड़ की छाव, दोस्तों की मस्ती और छात्र जीवन की बेफिक्री ने उनके संगीत को एक अलग रंग दिया था।
0: साथियों, किशोरदा की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को भी

0: कला में बदल देते थे। एक उधार की कहानी हो या फिर हॉस्टल की खिड़की से दिखता कोई नज़ारा, उन्होंने हर अनुभव को गीतों में ढाल दिया। और यही कारण है साथियों कि उनके गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस भी किए जाते हैं।
1: आज वर्षों बाद भी जब उनके गाने बजते हैं तो हर उम्र का श्रोता उन्हें उसी उत्साह और अपनापन के साथ सुनता है। उनकी आवाज़ समय की सीमाओं के परे है और आने वाली पीढ़ियां भी इनसे प्रेरित होने वाली हैं और हो भी रही हैं।
0: बिल्कुल साथियों, आज उनकी जन्म जयंती है, हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके अमर गीतों को याद करते हुए यही कहेंगे कि वे अपनी आवाज़ के माध्यम से हमेशा हम सभी के दिल और दिमाग में जीवित हैं।

0: दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसे प्यारे शहर की ओर जो अपनी ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य और कृषि समृद्धि के लिए पूरे प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। जी हाँ, आज का विषय है हमारे शहर सीहोर।
1: तो दोस्तों, सीहोर जिला भोपाल संभाग का एक महत्वपूर्ण जिला है। राजधानी भोपाल से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये शहर सड़क और रेल दोनों मार्गों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। भोपाल और इंदौर के बीच होने के कारण इसका व्यापारिक महत्व भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
0: सीहोर का इतिहास कई सदियों पुराना माना जाता है। साथियों, प्राचीन समय में ये मालवा और भोपाल क्षेत्र की सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।
1: और इसी के साथ नवाबी शासन के दौरान भी सीहोर का विशेष महत्व था। अंग्रेजों ने भी यहाँ प्रशासनिक गतिविधियों के लिए इसे महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था। यही कारण है कि शहर में आज भी कई पुराने भवन और ऐतिहासिक धरोहरें देखने को मिलती हैं।
0: सीहोर को संत और आध्यात्मिक परंपरा की भूमि कहा जाता है। साथियों, यहाँ स्थित चिंतामन गणेश मंदिर पूरे प्रदेश भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा जिले में विभिन्न हिस्सों में अनेक प्राचीन शिव मंदिर हैं, देवी मंदिर और आश्रम हैं, जहाँ पूरे वर्ष भर श्रद्धालु का आना जाना लगा सा रहता है।
1: यदि पर्यटन और टूर

0: टूरिज्म की बात करें तो सीहोर जिले के निकट स्थित सलकनपुर का विजयासन देवी मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशाल मेला लगता है और दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं।
1: इसके अलावा साथियों, नर्मदापुरम मार्ग की प्राकृतिक सुंदरता और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र भी प्राकृतिक प्रेमियों को आकर्षित तो करते ही करते हैं। इसके अलावा सीहोर कृषि प्रधान जिला भी है साथियों। यहाँ की उपजाऊ काली मिट्टी गेहूँ, सोयाबीन, चना, मक्का और सरसों जैसी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है।
0: आधुनिक खेती, सिंचाई पर्याजनों और कृषि अनुसंधानों के कारण यहाँ के किसान कई तकनीकों को तेज़ी से अपना रहे हैं। कई किसान जैविक खेती की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं।
1: साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में भी सीहोर निरंतर प्रगति दिन प्रतिदिन कर ही रहा है। इसके साथ ही जिले में अनेक सरकारी और निजी विद्यालय, महाविद्यालय, आईटीआई तथा व्यावसायिक संस्थान युवाओं को बेहतर शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करा भी रहे हैं।
0: यही कारण है कि यहाँ के युवा प्रशासनिक सेवाओं, सेना, खेल, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और निजी क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं।
1: सीहोर की सांस्कृतिक विरासत इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ की मालवी और बुंदेली संस्कृति का सुंदर मेल हम सभी को देखने को मिलता है। लोकगीत, लोक नृत्य, भजन, मेले और पारंपरिक उत्सव आज भी लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथियों, त्योहार के समय पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी और उत्साह से भर उठता है।
0: यदि उद्योगों की बात करें तो सीहोर जिले में कृषि आधारित उद्योगों के साथ साथ छोटे और मध्यम उद्योगों का भी विस्तार हो रहा है। भोपाल के निकट होने का लाभ यहाँ के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए नए अवसरों के रूप में मिल रहा है।
1: पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी सीहोर लगातार प्रयास कर रहा है। वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण, स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में प्रशासन और नागरिक मिलकर कार्य कर रहे हैं। युवाओं की भागीदारी इन अभियानों में अधिक प्रभावशाली देखने को मिलती है।
0: आज का सीहोर परंपरा और आधुनिकता के बीच में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। ये शहर हमें सिखाता है कि अपनी संस्कृति और विरासत को संजोते हुए भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है।
1: बिल्कुल साथियों, जब मालवा की बात हो और बुंदेलखंड की बात हो तो हम दाल बाटी व्यंजन को कैसे भूल सकते हैं काजल?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जो कि बुंदेलखंड में भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। जैसे वहाँ का छाछ को मिलाकर कुछ जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं, छाछ और मठरी, इनको एक बहुत प्यारी व्यंजन होते हैं। उसी के साथ साथ दाल बाटी होती है, चूरमा होता है, जो कि मालवा की जान है। तो साथियों, मध्य प्रदेश का सीहोर जिला भी ऐसे प्यारा सा शहर है। तो आइए हम सभी अपने शहर के इस समृद्ध विरासत पर गर्व करें और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर हमारे शहर को स्वच्छ, हरित, शिक्षित और विकसित बनाने में अपना योगदान दें।

0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत और बहुत ही मीनिंगफुल गीत था, क्यों राज?
1: बिल्कुल ठीक।
0: और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं, जो इतना सुंदर सा मौसम हो रखा है और जो हम सबका पसंदीदा मौसम है, जिसका नाम है सावन। तो सावन का नाम सुनते ही या फिर बारिश का नाम सुनते ही मिट्टी की जो सौंधी खुशबू है वो याद आने लगती है, हरी भरी वादियाँ और रिमझिम बारिश आंखों के सामने उतर आती है, क्यों राज?
1: बिल्कुल ठीक। दोस्तों, सावन सिर्फ एक महीना नहीं है बल्कि प्रकृति का सबसे खूबसूरत उत्सव है और हमारे लिए प्यारा सा उपहार है। जब धरती हरी चुनरी ओढ़ लेती है, पेड़ों की डालियों पर झूले ऐसे पड़ जाते हैं और बारिश की हर बूंद जैसे कोई नई कहानी सुनाती है, तो समझो बस सावन आ गया है।
0: इस मौसम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि सिर्फ धरती को नहीं मन को भी हरियाली से भर देता है। कहीं मेहंदी की महक आ रही होती है, कहीं लोकगीतों की मिठास, तो कहीं मंदिरों में गूंजता हुआ हर हर महादेव। सावन हमें प्रकृति, संस्कृति और आस्था तीनों से जोड़ता है।
1: और शायद यही वजह है कि काजल, जब कवियों, गीतकारों और कलाकारों ने सदियों से सावन को अपनी रचनाओं और सबसे प्रिय मौसम माना है, क्योंकि जब बादल बरसते हैं तो सिर्फ आसमान ही नहीं, भावनाएं भी बरसती हैं।
0: तो इस सावन आप जो है बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, बिल्कुल घर के अंदर मत बैठिए, बल्कि घर से बाहर निकलिए, बारिश की बूंदों को महसूस कीजिए, हरियाली को जी भर के निहारिए और अपने व्यस्त जीवन से कुछ पल चुराकर प्रकृति के इस अनमोल उपहार का आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल। और वृक्ष जरूर लगाइए, क्योंकि इस मौसम में जब बरसात होती है तो वृक्षारोपण करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यही प्रकृति जो हमको फल फूल, प्यारी सी सौंधी सौंधी मिट्टी और खुशनुमा माहौल प्रदान करती है। तो हमारा भी दायित्व बनता है एज ए नागरिक कि हम भी कुछ वृक्ष लगाएं, वृक्षारोपण करें, सारे कुछ को ना कुछ छोटे छोटे काम अवश्य करें।
0: तो तुम्हें ये पता है राज की

0: इस जो ये जो महीना है सावन का महीना, इसमें हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ियाँ और सारा कुछ हरा क्यों इस्तेमाल किया जाता है?
1: मुझे लगता है लड़कियां सबसे ज्यादा इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगी, फिर भी मैं हमारे मुझे जितना ज्ञान है मैं उतना हमारे श्रोताओं को बताता हूँ। क्योंकि जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे नई पत्तियां नई टहनियां और नए नए फल वृक्ष पर लग जाते हैं, तो सब जगह बिल्कुल खुशनुमा माहौल सा हो जाता है। तो जैसे हरियाली तीज भी आती है जो अभी एक त्यौहार आने वाला है, तो लड़कियाँ हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, हरी कपड़े पहनते हो, तो मुझे इतना ही पता है, तुम्हें क्या पता है?
0: दरअसल बात यह है कि हरा रंग जो है वो बहुत ही खास होता है अपने आप में, क्योंकि ये प्रकृति का रंग होता है, ये फर्टिलिटी का रंग होता है और ग्रोथ का भी रंग होता है। देखा जाए जैसे अगर हमारी पृथ्वी हरी भरी है तो ये पृथ्वी का भी रंग माना जा सकता है इसे, क्योंकि जहाँ भी हरियाली होती है, जहाँ पर भी हरे रंग की बात होती है, यानी कि वो चीज़ और फलती फूलती है और बढ़ती है। तो इसी बात का संदेश देते हुए जो पार्टनर्स हैं वो अपनी पार्टनर को, जो पति हैं अपनी पत्नियों को हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की साड़ियाँ, हरे रंग का श्रृंगार जो है वो देते हैं, ताकि उनकी जो पत्नियाँ हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, वो हमेशा ग्रो करती रहे, हमेशा फलती फूलती रहे।
1: तुम्हारी इस बात से मुझे एक बात याद आ रही है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें जिसने भी जैसे अषाढ़ हुआ, सावन हुआ, भादो हुआ, तो महीनों में भी कितने सारे मतलब रिचुअल्स है ना, जो कि हम सभी को एक दूसरे से प्रेम करना सिखाते हैं, जोड़ना सिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा देश जो है सारी संस्कृतियों को मिलाकर कितना समृद्ध देश है
0: और कितना सुंदर भी है। और अब जब सुंदरता की बात हो ही गई है श्रोताओं, तो आप ये सुंदर सा गीत भी सुन लीजिए।

0: साथियों, ये था आज का हमारा प्यारा सा प्रेम भरा प्रोग्राम। आशा है आपको पसंद आया होगा। अब समय है आज के सवालों के जवाब देने का, तो काजल शुरू हो जाओ।
1: बिल्कुल। तो हमारा पहला सवाल था कि इसरो का मुख्यालय किस शहर में है, तो उसका उत्तर है बेंगलुरु।
0: साथियों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न था कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो उसका सही उत्तर है नाइट्रोजन गैस।
1: जी हाँ श्रोताओं, तो हम आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में आपको खूब मज़ा आया होगा। और क्योंकि हमने सावन की बात की और हमने आपसे ये भी कहा कि आप सावन के महीने में घर के अंदर ना बैठे रहें बल्कि बाहर निकलें और इस प्रकृति की इस खूबसूरती को जो है वो महसूस करें और उसे जितना हो सके एंजॉय करें,
0: क्योंकि बारिश का सीजन भी है। तो अपनों का और अपना ख्याल खूब रखें, क्योंकि बारिश आते ही कभी कभी हम सभी के लिए थोड़ी सी जी का जंजाल भी बन जाती है बारिश। तो हम बारिश में एंजॉय तो करें ही करें, बाकी अपने घर का, अपनों का और अपनों का खूब ख्याल रखें और स्वस्थ पानी पिएं और वृक्षारोपण जरूर करें।
1: जी हाँ श्रोताओं, तो इसी के साथ मैं काजल
0: और मैं आपका होस्ट दोस्त राज
1: आपसे विदा लेते हैं।
0: नमस्कार।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपका पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी। 5:45 हुए हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं नमक हलाल फिल्म से गीत, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं। इस गीत को अपनी कलम से लिखा है प्रकाश मेहरा ने और संगीत है बप्पी लहरी का। लीजिए सुनिए।

अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल। दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया

और श्रोताओं, ये है कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश। फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता, आवाज किशोर कुमार और साथियों की है। गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है और संगीत है आर डी बर्मन का।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
2: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
3: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी, जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्लेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
3: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
2: जी
3: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
2: अजी जी आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
3: जी
2: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
3: जी तो विमलेश जी आपने कहा मैं संकेत देती हूँ तो संकेत दीजिए।
2: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओं क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
3: या फिर श्रोताओं क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
2: अजीत जी यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है तो वो एकदम सही है। जी हाँ हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी एक ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
3: विमलेश जी यदि सरल शब्दों में कहें तो एआई या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
2: जी
3: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
2: जी अजीत जी आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
3: और तो और विमलेश जी इतना ही नहीं ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
2: शिक्षा के क्षेत्र में एआई विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री

0: उपलब्ध करा सकता है।
1: और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है
0: जी,
1: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है
0: जी।
1: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
0: ये सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन श्रोताओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं
1: जी।
0: हर नई तकनीक की तरह AI के साथ भी कुछ चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी
1: जी।
0: AI कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही न हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए
1: जी। बिल्कुल सही श्रोताओ, दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती
0: जी,
1: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति
0: जी।
1: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह AI से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है
0: जी,
1: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
0: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि AI सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं
1: जी।
0: तो अब बात करते हैं कि AI का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात, AI का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप AI से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें
1: जी, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि AI से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें
0: जी।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात, AI पर आश्रित ना हो जाएं।
0: बिल्कुल,
1: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं।
0: जी हाँ श्रोता मित्रों, AI का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं, लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है
1: जी।
0: AI हमारी सहायता कर सकता है लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी
1: जी। हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है
0: बिल्कुल,
1: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है
0: जी,
1: इसी प्रकार AI भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है। लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओ, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
1: पेड़ की बात।
2: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगो

0: चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
1: चलो सर
2: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार सर।
3: नमस्कार, और इतने सारे बच्चे। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
4: सर मैं इशिता।
5: मैं हूँ चेताली।
6: मैं शुभेंदु।
7: और मेरा नाम है इंदु।
8: और मैं सोमेश।
3: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
4: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
3: देखो, पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
6: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
8: सर फिर क्या होता है?
3: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
8: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
3: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो। जैसे
9: उठो, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है, बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
4: वाह, कितनी सुंदर बात है।
3: अच्छा एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
10: पौधा।
3: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
10: उल्टा?
3: हाँ उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
8: फिर क्या हुआ?
3: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियाँ और डालियाँ टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
8: ये तो बड़ी रोचक बात है सर। सर एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
4: जी सर।
3: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
4: रसपान कैसे करते?
3: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
4: जी सर।
3: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
4: अच्छा अब समझ आया।
3: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
10: जी सर।
5: यहाँ तो कितने सारे पत्ते बीज पौधे के तने रखे हुए हैं।
4: अरे कितनी बड़ी प्रयोगशाला है, यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
8: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
7: देखो इतना बड़ा पेड़।
8: अरे उधर देखो सूखे पत्ते भी हैं।
5: अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और ये मशीन क्या है? चलो सर से पूछते हैं।
3: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप।
8: माइक्रोस्कोप?
3: हाँ अब इसका कमाल देखो। इशिता तुम इधर आओ बेटा। हाँ देखो।
4: जी सर।
3: हाँ देखो अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ आओ देखो। देखो बेटा देखो इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है।
8: अरे वाह मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ रही है।
3: शाबाश।
8: हाँ नलियां तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
4: मुझे भी देखना है
5: सर। मैं भी देखूं?
3: हाँ आओ आओ
8: मुझे भी देखना है।
3: देखो

0: क्या दिखाई दिया?
1: इसमें तो बहुत सारी नलियां हैं।
2: शाबाश, बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
3: पाइप?
2: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
4: अच्छा, तो ये बात है।
2: अब देखो, जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
1: सर, पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
2: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
3: नहीं सर।
2: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता लें? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ, अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्र, तुम देखो, क्या दिखाई दिया?
1: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों, अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
3: जी सर।
2: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ, शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा? इशिता तुम बताओ।
4: सर, टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
2: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ, हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
1: सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
2: हाँ।
1: लेकिन सर, ये तो जहरीली होती है।
2: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
4: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
2: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा, जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है।
1: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
3: हम भी नहीं होते।
2: शाबाश। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आज की बातचीत?
3: बहुत बढ़िया।
2: अब से एक काम जरूर करना।
3: क्या सर?
2: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना, तो उसे बोलना थैंक यू प्लांट,
3: थैंक यू ट्री।
2: शाबाश।
5: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें, बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
6: पेड़ की बात। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए?
3: तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए।

0: बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा, कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता।
1: CIET NCERT presents English rhymes and songs.
2: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: श्रोताओं शाम के 6:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं अंकित पारुलकर और इनके साथी।

श्रोताओं, सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। आज के हमारे कलाकार हैं अंकित पारुलकर और इनके साथी। अभी आप सुन रहे थे इब्राहिम अश्क का कलाम। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम की अगली गज़ल। मौसिकार हैं जानिसार अख्तर। लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुगम संगीत आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। आज के कलाकार थे अंकित पारुलकर। इसी के साथ सुगम संगीत अब समाप्त होता है। शाम के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। कलाकार हैं संजय महाजन और इनके साथी।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज के हमारे कलाकार थे संजय महाजन और इनके साथी। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। शाम के 7 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छुपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जनप्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जनप्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग भी मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: बांग्लादेश की पूर्व

0: प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि ये संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है और न ही वो मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन करती है। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से अधिक परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का लाभ मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में भी गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार बनाए रखा। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों और बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक लुढ़ककर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रूपये के पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री मांडविया ने कहा कि 36,000 करोड़ रूपये की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापोल थोंगसांगना और चालो एम्पोन चारोइन केतामोर्न को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। शाम के 7:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम और इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे कल के कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद शाम 7:30 पर आप सुन सकते हैं किसान वाणी। ये प्रायोजित कार्यक्रम हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा दिल्ली केंद्र से प्रसारित की जाएगी और 8:15 पर सुर्खियों में भोपाल केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि 8:30 पर आप सुनेंगे हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार के जन्मदिवस पर विशेष कार्यक्रम, तो सुनना ना भूलें ये विशेष कार्यक्रम। समय आपको फिर से बता देते हैं, इस विशेष कार्यक्रम का समय है रात्रि 8:30 से, क्योंकि आज किशोर कुमार का जन्मदिन है तो इसी अवसर पर ये विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। हरफन मौला कलाकार के

किशोर कुमार के जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम। 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रगीत। 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम कहकशा भोपाल केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10:00 मन भावन पत्रों पर आधारित कार्यक्रम होगा और 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत में जरीन दारूवाला का सरोद पर बजाया राग मालकोंस। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल के कार्यक्रमों की। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे चिंतन। 6:35 पर आप सुनेंगे खेती की बातें। इस कार्यक्रम में विषय होगा पंचगव्य। इस विषय पर जानकारी देंगी तुलसा दरगैया। 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान का कल का संगीतमय पाठ। कल के दिन आप सुनते हैं 7:20 पर आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम होता है आपका पत्र, जिसमें हम SMS और WhatsApp के जरिए भी आपसे सीधा जुड़ते हैं। तो जरूर सुनिएगा ये प्रोग्राम 7:20 पर। कार्यक्रम का नाम है आपका पत्र। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सुबह 9:00 और शाम 6:45 पर लोक संगीत की कलाकार होंगी शारदा पगारे और इनके साथी। सुबह 9:15 पर और शाम 6:30 पर आप लुत्फ उठा सकते हैं सुगम संगीत की कलाकार होंगी राधा कुलकर्णी। 9:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत में पंडित सुरेश शंकर अवस्थी का गाया राग बिलास खानी तोड़ी। सुबह 10:00 सुनिएगा जिले की चिट्ठी भोपाल केंद्र से। 10:05 पर आप सीधे फोन लाइन से हमसे जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम होगा MH हॉटलाइन। फोन इन कार्यक्रम सुनना ना भूलें और फोन करना भी ना भूलें। दिन में 11:00 से हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले किए जाते हैं, जिनमें आप सबसे पहले सुनेंगे फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने। 12:00 फिल्म संगीत प्रसारित होगा। 12:30 पर सुनिएगा संग्रहालय से। दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत प्रसारित किया जाएगा। 1:45 पर सुगम संगीत। दिन में 2:00 फिल्म संगीत और 2:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। तो ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। श्रोताओं, शाम 5:00 हमारी शाम की सभा आरंभ होती है, जिसमें सबसे पहले युवा साथी सुनते हैं युववाणी कार्यक्रम। कल सुनिएगा एक ही फिल्म से, ये कल का क्रम होगा। 5:45 पर फिल्म संगीत। शाम 6:00 NCERT प्रायोजित कार्यक्रम होगा। और आपको बता दें रात्रि 9:15 पर आप सुन सकते हैं चित्रगीत। 9:30 पर सुनेगा चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:00 सुनिएगा नाटक तबादला। 10:30 पर आप सुन सकते हैं पंडित रसिक लाल अंधारिया का गाया राग दरबारी कानड़ा। तो ये थे कल के कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: शाम के 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र में फिर हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, स्वास्थ्य, खेल और डिजिटल सेवाओं से जुड़े

0: राजनाथ सिंह समेत गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय मंत्रियों ने सांसदों को सरकार की प्रमुख योजनाओं और हालिया मुक्त व्यापार समझौतों की जानकारी भी दी। गृह मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया है, जिनमें आतंकवाद, गैंगस्टर, आर्थिक अपराध, मादक पदार्थ तस्करी, हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो मामलों के आरोपी शामिल हैं। सरकार ने बताया कि 2019 से 2026 के बीच भगोड़ों की 17,874 रुपए की संपत्ति जब्त की गई और 18,762 करोड़ रुपए की राशि वापस हासिल की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में किसानों, स्वास्थ्य, खेल और डिजिटल सेवाओं से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सहकारिता विभाग की कवच योजना को मंजूरी मिली, जिससे करीब 5,000 किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 2026 से 2031 तक 12,517 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में खेल सुविधाओं के विकास के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई। स्टेट डाटा सेंटर के उन्नयन के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपए और मलेरिया नियंत्रण के लिए करीब 1,700 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया,
1: जनजाति कार्य विभाग में शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना भी प्रारंभ हो रही है। जो सहायक शिक्षक है, प्राथमिक शिक्षक है और उच्च श्रेणी के या फिर माध्यमिक शिक्षक, इनको 30 वर्ष की सेवा के बाद तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलने जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में पहले से ही चौथा समयमान वेतनमान प्राप्त उनको हो रहा है, इसलिए जनजाति कार्य विभाग में भी 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 साल की सेवा पूर्ण करने पर चौथे क्रमोन्नत वेतनमान देने का प्रस्ताव रखा गया है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज निवेश मिशन के तहत मुंबई पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के निवेशकों की पहली रोड शो और निवेशक बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में ग्वालियर में प्रस्तावित देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से सीधे संवाद कर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों और निवेश अनुकूल माहौल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस दौरान देश की कई प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
3: बदलते दौर में राज्यों के बीच भी सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए मध्यप्रदेश ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। मध्यप्रदेश सरकार कोशिश कर रही कि सभी प्रकार के अनुकूलता के अवसरों को यथार्थपरक योजनाओं के बलबूते पर उनको भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए राज्य को नंबर वन के राज्य में ले जाए। तो आइए हम सब मिलकर के आज के अवसर का लाभ लें।
0: स्वर सम्राट किशोर कुमार की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे दिन समाधि परिसर में उनके सदाबहार गीत गूंजते रहे और संगीत प्रेमियों ने उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। समाधि स्थल पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों ने किशोर कुमार के लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने केक काटकर जन्मोत्सव मनाया। अब से कुछ देर बाद किशोर नाइट का आयोजन होगा, जिसमें गायक पी गणेश और प्रीति जोशी प्रस्तुति देंगे। दतिया उपचुनाव में हार के बाद भाजपा में मंथन तेज हो गया है। आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निवास पर हुई बैठक में हार के कारणों और भीतरघात की शिकायतों पर चर्चा हुई। भाजपा ने हार की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति बनाई है, जो जमीनी रिपोर्ट तैयार करेगी। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि अनुशासन तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को अगस्त और सितंबर की राशन सामग्री 31 अगस्त तक हितग्राहियों को देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक राशन का 100% उठाव कर उचित मूल्य दुकानों पर भंडारण पूरा किया जाए। अंत्योदय योजना के परिवारों को 35 किलो और प्राथमिकता के परिवारों को 5 किलो प्रति सदस्य राशन दिया जाएगा। दोनों श्रेणी के हितग्राहियों को 1 किलो नमक भी मिलेगा। राशन वितरण के समय POS मशीन में 2 बार बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। राशन परिवहन की GPS से निगरानी होगी और गड़बड़ी मिलने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रीवा एयरपोर्ट पर 9 अगस्त से नई विमान सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। अब रीवा से कोलकाता और भोपाल के लिए 72 सीटर विमान उड़ान भरेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात कर शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नई उड़ान सेवाओं से

गोविंद क्षेत्र में व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का राजा स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं रिमझिम बारिश के बीच समर्पण कांवड़ यात्रा निकली, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। त्रिवेणी घाट से शुरू हुई यात्रा में भक्त मां शिप्रा का जल लेकर महाकाल मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक किया। भस्म आरती में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पिछले चार दिनों से प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश नहीं हुई है और ज्यादातर इलाकों में सिर्फ बादल छाए रहने या हल्की बूंदाबांदी का दौर चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हालांकि 6 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में फिर से तेज बारिश शुरू हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले के विभिन्न विकास खंडों में 10 से 14 अगस्त तक रोजगार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ के जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी गई है। अशोकनगर जिले की आदिवासी बस्ती बमनावर के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज बाल चौपाल का आयोजन किया गया। राजगढ़ में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन 9 अगस्त को किया जाएगा। मंडला में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत आगरमालवा जिले में 7 अगस्त से विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण में नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी साथियों को कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी को हमारी राम राम। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की, जो देश के किसानों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी योजना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में किसानों को समय पर और आसान कृषि ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बीज,

खाद, कीटनाशक, सिंचाई, कृषि उपकरण तथा खेती से जुड़े अन्य खर्चों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। समय के साथ इस योजना का दायरा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन तक भी बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ कौन कौन ले सकता है। इस योजना का लाभ व्यक्तिगत किसान, संयुक्त रूप से खेती करने वाले किसान, बटाईदार, पट्टेदार किसान, स्वयं सहायता समूह और संयुक्त दायित्व समूह भी उठा सकते हैं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं और अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इससे आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। इससे किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध होता है, ब्याज दर अपेक्षाकृत कम होता है और समय पर भुगतान करने पर ब्याज में रियायत का लाभ भी मिल सकता है। फसल की बुआई से लेकर कटाई और इसकी खरीद बेच तक की आवश्यकताओं के लिए राशि का उपयोग किया जा सकता है। आपको बता दें कि बार बार नया ऋण लेने की प्रक्रिया से इससे राहत मिलती है और जो हमारे किसान भाई हैं वो साहूकारों से महंगे ब्याज पर ऋण लेने से बच जाते हैं। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या कागजात की ज़रूरत होती होगी, किन कागज़ों के आधार पर आप ये किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो ज़्यादा दस्तावेजों की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण, भूमि से संबंधित दस्तावेज, पात्रता का प्रमाण, पासपोर्ट आकार का फोटो और बैंक द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं, जो कि ये सभी जो कागज़ हैं वो सभी किसान भाइयों के साथ में वो अपने पास में ज़रूर रखते हैं। आप इस जो ये क्रेडिट कार्ड है इसको प्राप्त करने के लिए आप कहाँ जा सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अगर आप अपने सरकारी बैंक के पास जाएंगे, आजकल हर गांव में और हर क्षेत्र में सरकारी बैंक खोले गए हैं, तो आपके आसपास जो भी बैंक हो वहां आप जा सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जा सकते हैं, सहकारी बैंक और अन्य पात्र बैंक शाखा में जाकर ये किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और आपको ये बताना चाहते हैं कि ये एक ऋण की सुविधा नहीं है बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक प्रभावशाली माध्यम है। यदि आप पात्र हैं और अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है तो हम किसान भाइयों से कहेंगे कि आप इस योजना का लाभ अवश्य उठाइए और किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने से आपको जो भी लाभ मिलेंगे उससे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे, यही हम आशा करते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं मान सिंह भोंडिया और साथियों की आवाज़ में सावन के महीने पर आधारित ये लोकगीत। आइए सुनते हैं।

तो ये बहुत ही प्यारा सा लोकगीत आपने सुना जो मानसिंह भोंडिया और साथियों की आवाज़ों में था। और आइए अब आपको लिए चलते हैं भोपाल केंद्र और सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसानवाणी।
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
0: किसानवाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। हमारे सभी श्रोता और कृषक भैया बहनन को दो ही हाथ जोड़ के राम राम। हम हैं अमृता जैन, आज की ई किसान वाणी कार्यक्रम में आपकी अपनी साथी। भैया बहनों, किसान वाणी कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आकाशवाणी भोपाल केंद्र से संजा के 7:30 से 8 बजे तक प्रस्तुत करो जय है, जी में हम बातें करेंगे खेती किसानी की तथा मौसम की, और ऐसी बातें जो हमारे कृषक भैया बहनन के लाने लाभकारी हो। कार्यक्रम में बातें हुई है जो आपके लाने अत्यंत महत्वपूर्ण हो तथा संगे संगे जो सरकारी योजनाएं हैं और अन्य खेत खलिहान से जुड़ी सभी चर्चाएं हम अपने कार्यक्रम किसान वाणी में करेंगे। तो भैया बहनों, जब आज के ये अंक में आप सबसे जुड़ गए हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कृषि में सेंसर तकनीक पे। आज हम सब देख रहे हैं कि खेती करवे के लाने हमें केवल मेहनत नहीं करने हैं बल्कि सही तकनीकों को अपना के आधुनिक व सटीक खेती करने हैं जिसे हमारी कृषि उन्नत बने, और ऐसी ही तकनीक है कृषि में सेंसर तकनीक। अब बात करें कि जब तकनीक के द्वारा हम कैसे लाभ ले सकते हैं और का का फायदे हैं, तो हम आप लोगों को बता दें ई तकनीक के द्वारा हम मृदा में नमी और तापमान कैसो है ई की जानकारी ले सकते हैं। हमारी मृदा में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है और कौन से पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है ई की जानकारी हमें मिलत है, जिसे हम इन जानकारी के माध्यम से आवे वाई जो हमारी फसल है वह हमें कौन सी लगाने हैं और इन पोषक तत्वों के आधार पे कौन सी फसल है जो हमें उन्नत और अच्छी आय देगी जहाँ हम जान सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब फसल अच्छी हुई है, लागत कम हुई है, खेत लहलहाएंगे तो हमारे कृषक भैया बहन तरक्की करेंगे, उन्नत बनेंगे। अब भैया बहनों बात करें जा तकनीक काम कैसे करते हैं, तो भैया बहनों कृषि सेंसर तकनीक के कछु प्रकार हैं, जैसे कि मृदा सेंसर, मौसम सेंसर और फसल सेंसर। ये तकनीकें कृषकों को कब पानी और खाद देने हैं जो बताते हैं। हम यदि इन अलग अलग सेंसरों के बारे में बात करें तो भैया बहनों मृदा सेंसर से हम मृदा की नमी और आर्द्रता नाप सकते हैं, जिसे हमें कब सिंचाई करने हैं ई की हम सही योजना बना सकते हैं। ई के अलावा मौसम सेंसर से हम हवा की नमी, तापमान और वर्षा व मौसम के बदलाव की जानकारी ले सकते हैं। और यदि बात करें हम फसल सेंसर की, तो इसे पौधों की बीमारी और वृद्धि पे नजर रखी जा सकते है। मतलब कि जो कहें कि ई तकनीक से पानी को सही उपयोग होते है, पोषक तत्वों व खाद की कितेक मात्रा हमें खेतों में डालने हैं जो हमें पतो लगते हैं, और फसलों की अच्छे से देखभाल भी होते हैं। तो ये तकनीक के बारे में यदि आपको और जानकारी लेने हैं तो आप नजदीकी कृषि केंद्रों पे जाके जानकारी ले सकते हैं। अब भैया बहनों अपन बात जब हम तकनीकों की कर रहे हैं तो हमें जो भी देख रहे हैं कि हमारे कई कृषक भैया बहनों ने सोयाबीन फसलों की बुवाई करी है, और अबे जो सावन को मौसम जो वर्षा ऋतु चल रही है इसको देखत भए हमारी फसलों पे कई कीट व अन्य समस्याएं आ सकत हैं। तो चलो आज जानते हैं कि कैसे सोयाबीन फसल में समन्वित कीट व व्याधि प्रबंधन करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं, और ई के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र पाटिल, और उनसे भेंट कर रही हैं हमारी बहन पूनम सरावगी। तो सुनत है जा भेंट वार्ता।
4: हमारे किसान भाई बहनों ने अपने खेत में सोयाबीन की बुआई कर दी है, पौधे इस समय फूल आने की अवस्था में है, ऐसे में सोयाबीन में समेकित कीट प्रबंधन किया जाना बहुत ही जरूरी है। इसके लक्षण पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना कीटों की संख्या को आर्थिक रूप से क्षति स्तर के नीचे रखना आवश्यक है। इसके लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं, कौन सी हम विधियां अपना सकते हैं, इसी विषय पर हमने और जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर देवेंद्र पाटिल को। आप कृषि विभाग भोपाल में स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
5: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
4: सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सोयाबीन में समेकित कीट प्रबंधन एवं व्याधि प्रबंधन क्या है और इसका क्या महत्व है।
5: सोयाबीन फसल में अगर हम समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन की बात करें तो आम तौर पर किसान साथी केमिकल या पेस्टिसाइड दवाइयों का उपयोग करते हैं।

0: पर जब हम कीट एवं रोग प्रबंधन की बात करते हैं तो उसकी तीन या चार प्रकार की जो विधियां होती है उनको अगर हम एक साथ प्रयोग करके कीट या बीमारी नियंत्रण के लिए करते हैं तो हम उसी को समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन करते हैं, जिसमें भौतिक क्रियाएं होती है, मैकेनिकल कंट्रोल होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, और अंत में जो साइन पर जाने की बात आती है। तो इसी विषय में आज हम किसान साथियों से बात करेंगे कि हम सर्वप्रथम हमारी जो जैविक विधियां होती है कीट नियंत्रण की या बीमारी नियंत्रण की, उनका पहले हम उपयोग करें, और परिस्थिति अगर ऐसी हो कि अगर हमारी जैविक विधियों से या कल्चरल जो हमारी विधियां हैं उनसे अगर कीट नियंत्रित नहीं हो रहे हैं तो अंत में जो अनुशंसित की गई कीटनाशी है हम उनका उपयोग करें। तो इसी को हम समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन करते हैं, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हम आज सिर्फ रासायनिक दवाइयों से अगर कीटों को नियंत्रित करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को भी नुकसान हो रहा है, हमारे पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। तो इसका उद्देश्य यह है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के हिसाब से भी हम समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन की बात करते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सोयाबीन की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट कौन कौन से हैं और उनकी पहचान हम कैसे करें?
0: देखिए, सोयाबीन की फसल कीट एवं रोगों के प्रति बहुत ही सेंसिटिव फसल होती है, और जब फसल अंकुरित होता है तब से ही इसमें कीट एवं रोगों का प्रकोप चालू हो जाता है। खास तौर पर जब ये सोयाबीन 15 से 20 दिन या 25 दिन की अवस्था पर पहुँचता है
1: जी,
0: तो उस समय इसमें तना मक्खी, सफेद मक्खी कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। इसके बाद जैसे ही हमारी सोयाबीन की फसल जैसे बढ़ती है, उसके बाद सेमिल ऊपर एक इल्ली होती है, इल्ली का प्रकोप होता है। उसके बाद अलसी की इल्ली होती है, तो अलसी की इल्ली भी सोयाबीन में देखने को मिल रही है। इसके अलावा तम्बाकू की इल्ली, तो ये तमाम प्रकार के जो कीट हैं ये हमें सोयाबीन की फसल में देखने को मिलते हैं।
1: जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तना मक्खी और चक्रभ्रंग सोयाबीन को किस तरह से नुकसान पहुँचाते हैं और इनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
0: जैसे आपने बताया, तना मक्खी एवं गर्डल बीटल को ही हम चक्रभ्रंग कहते हैं
1: जी।
0: तो ये दो बहुत ही मुख्य कीट है सोयाबीन की फसल में, और ये दोनों कीट फसल की शुरुआती अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले तना मक्खी की बात करता हूँ। तना मक्खी का जो कीट होता है, तो इसकी खी ना होके इसकी सबसे पहले एक छोटी सी इल्ली होती है, बहुत बारीक महीन होती है, पीले कलर की होती है। यह तने के अंदर सुरंग बनाकर तने के अंदर रहती है और वहीं पर अपना जीवन चक्र पूरा करती है, अंदर ही अंदर अंडे देके अंडे से इल्ली बनती है, और वहीं पूरे तने को खोखलाकर पूरे पौधे को सुखा देती है, जिससे कि हमारा जो है पौधा नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम गर्डल बीटल की बात करें तो गर्डल बीटल चक्रभ्रंग पौधे के अंदर दो प्रकार की एक कट बनाता है, रिंग बनाता है ऊपरी सिरे पर, और ऊपरी सिरे से रिंग बनाकर पौधा वहां से मुरझा जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा पौधा धीरे धीरे जो है कि इसमें गडल बीटल में भी सूख जाता है। तो अब इसको हम इस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं कि सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जो हमारी सस्य क्रियाएं होती है या हमारी बायोलॉजिकल विधियां होती है, इनका हमें सबसे पहले इनके प्रबंधन की बात करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम जब बीज बोने की बात करते हैं तो बीज हमारा जो है कि स्वस्थ बीज होना चाहिए, कीट एवं रोग से मुक्त होना चाहिए, ऐसे बीज का चयन करें। इसके साथ ही साथ बीज उपचार सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर शुरुआती अवस्था में अगर हम बीज को उपचारित कर देते हैं तो बाद में कीट एवं रोगों से हम हमारी फसल को मुक्त कर सकते हैं। स्टिकी ट्रेप अगर हम 1 एकड़ में 6 से 8 स्ट्रिप्स लगा दें तो उसपे क्या होता है कि पीले कलर की स्ट्रिप्स जो होती है तना मक्खी और सफेद मक्खी के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, और उस पीले कलर पर अट्रैक्ट होकर उस ट्रेप पर जाके बैठ जाती है। तो अगर हम ऐसे 1 एकड़ खेत में अगर 6 से 8 स्ट्रिप्स लगाते हैं तो हमारे सोयाबीन की फसल में जितने भी सफेद मक्खी है या तना मक्खी है तो उस पर आकर बैठेंगे। तो इस प्रकार से हम इनको नियंत्रित कर सकते हैं। अंत में अगर इनसे भी अगर हमारा अतरण नहीं हो रहा है तो जो अनुशंसित की गई दवाइयां हैं, जिसमें थायमेटोक्सम प्लस लेम्बड़ा साइलोथ्रिन की 50 ml मात्रा प्रति एकड़ उपयोग करें, या फिर बीटा साइप्लोथ्रिन प्लस इमिडा क्लोप्रेट की 140 ml मात्रा प्रति एकड़ उपयोग करें, या फिर आइसोसाइफ्लोसोरम की 200 ml मात्रा प्रति एकड़ करें, इनमें से किसी एक दवाई का उपयोग करके तना मक्खी एवं गर्डल बीटल चक्रभ्रंग को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।
1: सर, ये बताइए तंबाकू की इली और सेमी लूपर से सोयाबीन को क्या नुकसान होता है और इनका प्रबंधन कैसे किया जाता है?
0: जब हमारी फसल फूल के बाद वाली अवस्था में जैसे ही पहुंचती है तब सेमी लूपर और तंबाकू की इली का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। तो यह हमारी सोयाबीन की जो फसल में जो पत्तियां होती है, पत्तियों को खाती है, और उसके बाद जब फली में दाना बैठने लगता है, दाना आने लगता है, तो उस समय दाने को भी खाती है। तो इस प्रकार हमारी सोयाबीन की फसल को ये बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। और इनके नियंत्रण के लिए हम अगर बात करें कल्चरल विधियों में, तो किसान साथियों को इसके लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई अपने खेतों में कराना बहुत आवश्यक होता है।

0: इसके अलावा फेरोमेन ट्रैप आता है जो कि जैविक विधियों के अंतर्गत हम उसका उपयोग करते हैं। फेरोमेन ट्रैप में अलग अलग जब हमारी इल्लियां होती है उसका अलग अलग लेयर मिलता है, तो ऐसे ही अगर एक एकड़ में हम 4 से 6 फेरोमेन ट्रैप अगर हम लगा देते हैं तो इल्ली बनने के पहले की जो उनकी अवस्था होती है फ्लाई रहती है, तो मक्खी उस फेरोमेन ट्रैप में अट्रैक्ट होकर एक जगह उसे इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसे पूरे खेत में अगर हम लगाते हैं तो इस प्रकार से भी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें अगर इससे भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तब हम अनुशंसित जो कीटनाशी उन पर जाएं। इसके साथ ही साथ हम अपने खेत में किसान साथी इसमें टीब आकार की जो खुटियां होती है उनको भी अगर हम खेत में 8 से 10 खुटियां प्रति एकड़ अगर लगा देते हैं तो जो पक्षी होते हैं पक्षी उस टी आकार की जो खुटियां होती है उस पर आकर बैठेंगे और उनको जो इल्ली दिखती है तो इल्ली को खाते हैं। तो इस प्रकार से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी सर, ये बताइए सोयाबीन में सफेद मक्खी से हमें क्या नुकसान हो और इसका पीला मोजेक रोग से क्या संबंध है?
0: सफेद मक्खी शुरुआती अवस्था से ही सोयाबीन या अन्य फसल जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसमें पत्तियों से रस चूसती है और रस चूसने के उपरांत जो उसका क्लोरोफिल होता है पौधे के पत्तियों में खत्म हो जाता है और पौधा पीलेपन की ओर चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पौधे को पूरा पीला कर देती है रस चूसकर सफेद मक्खी। और जब हम इसकी संबंध की बात करें मोजेक रोग से, तो मोजेक फैलाने का काम भी क्या करती है? सफेद मक्खी करती है, क्योंकि मोजेक जो बीमारी है यह वायरस से होती है और वायरस फैलाने का जो काम करता है वो सफेद मक्खी करती है। क्योंकि एक पौधे से अगर उसने रस चूसा और वहां पर उस वायरस मोजेक अगर बीमारी से ग्रसित है पौधा, तो वहां से वो दूसरे पौधे पर जब जाएगी तो वहां का जो मोजेक वायरस है वो दूसरे पौधे पर ले जाके छोड़ेगी। इस प्रकार ये मोजेक रोग से इसका सीधा सीधा संबंध है।
1: जी सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पीला मोजेक का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
0: पीला मोजेक बीमारी का जो प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम इसमें हम हमारा जो बीज का चयन करते हैं वो स्वस्थ बीज होना चाहिए, बीज रोग रहित होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब हम बुआई करते हैं तो बुआई जब करते हैं तो कई किसान साथी आवश्यकता से अधिक बीज दर का उपयोग करते हैं या बुआई की दूरी है वो बहुत पास कर देते हैं, तो जो खेत के अंदर पौध संख्या होती है वो आवश्यकता से अधिक होती है, तो हम जो अनुशंसित की गई बीज दर है उस बीज दर के अनुसार बुआई करें, जो अनुशंसित की गई बुआई दूरी है हम उसी बुआई दूरी के अनुसार बुआई करें। इसके अलावा जो जैसे मैंने बताया था कि हम फेरोमेन इसका एलो स्टिकी ट्रैप का उपयोग करें और इसके साथ ही साथ जो अनुशंसित की गई जो दवाइयां हैं जैसे मैंने पूर्व में बताई थी कि थायमेटोक्सम प्लस लेमड़ा साइलोथ्रिन या बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडा क्लोप्रिट, इन दवाइयों का अगर हम इसमें स्प्रे करते हैं तो इसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।
1: जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कॉलर रोग का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
0: कॉलर राइट बीमारी जब बुआई होती है उसके करीब 8 से 10 दिन के उपरांत ही हमें खेत में देखने को मिल जाती है। पौधा जर्मिनेट होकर जैसे बाहर निकलता है तो जिस लाइन में हमने सोयाबीन का बीज बोया था उसी लाइन में क्रमशः हमें पौधे सूख के गिरते हुए देखने को मिलते हैं। ये इसका प्रमुख लक्षण है कॉलर राइट का और ये मुख्यतः शुरुआती अवस्था में देखने को मिलता है। तो इसका सबसे सटीक जो उपचार है या सटीक अगर प्रबंधन है तो वो है बीज उपचार, क्योंकि अगर किसान साथी इसका बीज उपचार सही ढंग से या सही तरीके से करते हैं तो यह जो कॉलर राइट बीमारी देखने को नहीं मिलती है। अगर उसके बाद भी अगर हमें देखने को मिलता है इस बीमारी के लक्षण तो एक फफूंदनाशी जो होता है कार्बेंडाजिम, तो इसके 200 ग्राम मात्र प्रति एकड़ के दर से अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो कॉलर राइट को नियंत्रित किया जा सकता है।
1: जी सर, चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सोयाबीन में कीटनाशक और फफूंदनाशक का प्रयोग करते समय हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि किसान साथियों को जानना बहुत आवश्यक है कि हम जो भी कीटनाशी या फफूंदनाशी या अन्य दवाएं चाहे खरपतवार नाशी हो जब भी हम इनका उपयोग करते हैं तो इसके साथ जो पानी की मात्रा है उसकी भी अनुशंसा की जाती है। क्योंकि कई बार हमें ये देखने को आता है कि कई किसान साथी अनुशंसा से कम पानी की मात्रा का उपयोग करते हैं तो उस स्थिति में हमारी फसलों पर उस दवाई का विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। तो हमारी फसल जो किसान साथियों की जो फसल होती है उस पर उसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे फसल जलने लगती है या सूखने लगती है। तो ये सब चीजें ना हो उसके लिए किसान साथियों को मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो अनुशंसित की गई पानी की मात्रा है 100 से 150 लीटर प्रति एकड़ मात्रा पानी की उपयोग होना चाहिए, और जो दवाइयां हैं कीटनाशी है या फफूंदनाशी उनकी दक्षता या उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए जो अनुशंसित किया गया नोजल है होलोकोन नोजल का उपयोग करें। होलोकोन नोजल मतलब बहुत बारीक फुहार वाला नोजल होता है, अगर उसका उपयोग करते हैं तो हमें इन दवाइयों का जो हम उपयोग करना चाह रहे हैं तो उसके हमें बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और उसकी जो दवाइयों की उपयोग क्षमता

0: स्वच्छता है वो भी हमें अधिक देखने को मिलेगी।
1: तो सर, बड़ी ही अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान श्रोता अपने सोयाबीन की फसल को बेहतर बनाने में इस जानकारी का अवश्य इस्तेमाल करेंगे। आप हमें जानकारी दे रहे थे सोयाबीन की फसल में समन्वित कीट प्रबंधन, इस विषय पर। डॉक्टर पाटिल, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे किसान भैया बहनों को इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो भैया बहनों, देखो, अब अपन ने जानी सोयाबीन फसल में समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन की जानकारी डॉक्टर देवेंद्र पाटिल से, जिनने बहुत अच्छे से हमें सभी बातें बताई हैं। और उनसे भेंट कर रही हती हमारी बहन पूनम सरावगी। उम्मीद है डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई जब महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लाने लाभकारी रहे है। और आप सभी इन बातों को ध्यान रख के अपनी खेती में जो कीट व रोगों के जो भी प्रकोप हो रहे हैं उनसे बचाव हेतु सही उपाय करेंगे। अब भैया बहनों देखो, अपनी चर्चाएं हो रही हैं, भेंट वार्ता सुन रही, और आप सोच रहे हुई हो कि अमृता बहन जानकारी तो बड़ी नौनी दे रही हैं, मनो कछु मनोरंजन हो जाए तो आनंद ही अलग हुई है। सो भैया बहनों, हम भी जय बात सोच रहे हैं, चलो तो सुनत है एक सावन गीत। जी एक गाँव है दया भार्गव और उनकी साथियन ने।

0: चर्चा करवो और चाह रहे हैं, और जो विषय है स्वच्छ पेयजल। अब देखो भैया बहनों, जब बात ही हमने पेयजल की करी, मतलब के पीवे के पानी की, और जो आप और हम सबको जानवो बहुत आवश्यक है, स्वच्छ व साफ पानी पे सबई को अधिकार है। हम जो भी जानते हैं कि दूषित पानी पीवे से अनेक बीमारियां होते हैं, और जो हमें आगे चल के हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं दे सकत है। इसे हमें दूषित जल से बचाव करने चाहिए और स्वच्छ जल को उपयोग करने चाहिए। और अभी देखो वर्षा ऋतु चल रही है, तो ऐसे में हम जानते हैं कि संक्रमण वाली बीमारियां बहुत जल्दी होते हैं, संक्रमण जल्दी होते हैं। तो खास तौर पे इस मौसम में डायरिया, टाइफाइड, दस्त, उल्टी और पेट से जुड़ी अनेक समस्याएं बहुत जल्दी से हो जाते हैं, और यदि हम साफ जल को उपयोग करेंगे तो हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो हम तो जो ही कहेंगे कि पानी को उबाल लें और अच्छे से ठंडो करें, फिर यदि हम इको उपयोग करते हैं तो जल हमारे लाने अत्यंत लाभकारी हुई है। अच्छा भैया बहनों, बात हमने अपनी करी कि हमें स्वच्छ जल पीने हैं। मानो हमारे पशु हैं जो हमारे बाड़े में बने हैं, जो हमारी गौशालाओं में हैं, उनके लाने भी हमें स्वच्छ जल की व्यवस्था करने हैं, जिसे कि बेबी स्वस्थ रहें। और भैया बहनों कथ है ना, पहलो सुख निरोगी काया, तो स्वच्छता से जुड़े और स्वच्छ जल ही पिए। अबे हम जो चर्चाओं के माध्यम से जो फसलों की बातें कर रहे हैं, तो हमारे कई कृषक भैया बहन ऐसे भी हैं जो बागबानी फसलें लगावे की सोच रहे हैं, या लगावे को उन्हें प्रबंधन भी कर लो हुई है। तो आज हम डॉक्टर कुंवर जी सिंह से जानेंगे कि बागबानी फसलों में सामायिक कार्य कैसे करने हैं, कौन कौन से करने हैं, इस विषय पे भी आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सुनत है उनकी जानकारी।
1: किसान भाइयों, आज बात करेंगे बागवानी ध्यान की फसलों के लिए सामयिक सलाह। देखिए किसान भाई, आप भी जानते हैं कि रोपाई द्वारा लगाई जाने वाली जो भी बागवानी फसलें हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी के लिए नर्सरी की तैयारी महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए हमें 3-3.5 मीटर लंबा और करीबन 1.5 मीटर चौड़ा और जमीन से कम 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनी रहनी चाहिए। और खास तौर से इन सब्जियों के, जो टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी की हम बात किए हैं, इनके संकर किस्मों की जो मात्रा आती है 10 ग्राम प्रति क्यारी के दर से हम बीज लगाते हैं। और 1 हेक्टेयर के लिए इस तरह से अगर टमाटर की नर्सरी तैयार करना है तो 15 क्यारी लगेंगी टमाटर के लिए, बैंगन के लिए करीबन 20 क्यारियां लेने की जरूरत पड़ेगी, और गोभी के लिए करीबन 30 क्यारियों की आवश्यकता होगी। इस समय नींबू फसलों में फल जो बढ़ रहे हैं, जो है काम के टिकोड़े के बराबर, या कहना चाहिए कि बड़े बड़े नींबू के फल लगे हुए हैं, वो उस समय गिरते हैं। तो इनको गिरने से बचाने के लिए हमें तो 1.5 ग्राम 2,4-D या इसी के बराबर जिब्रेलिक अम्ल आता है, यानी दोनों में से कोई भी एक 2,4-D या जिब्रेलिक अम्ल जो है 1.5 ग्राम लगेगा, और 100 ग्राम कार्बेंडाजिम, ये फफूदनाशक है, ये 100 ग्राम, और 1 किलो यूरिया को 100 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो नींबू के जो फल गिरने की जो शिकायत है ये कम हो जाएगी, और हर तरह से उसमें बीमारी और कीड़ों का प्रकोप भी कम रहेगा। इस समय हम देख रहे हैं कि आम के पेड़ों पर बगीचे लगाए हैं उसमें एक बंधा रोग है, जिसको हम अंग्रेजी में माल फॉर्मेशन कहते हैं। ये आप लोग भी पहचानते हैं, जहाँ उसका जो गुच्छा बनता है, जहाँ आम के जो, तो वो गुच्छे में ही वो एक माइट होता है, कीड़े के बराबर है। हालांकि हम लोग कीड़े के ही नाम से जानते हैं, लेकिन वो हमारी भाषा में उसको हम माइट बोलते हैं, जिसको मकड़ी के कटे ग्रुप में आता है। इसके जो ग्रसित हो जाती है तो पौधे दूसरे टहनियों में भी फैलाता है उस कीड़ के द्वारा, जिसको कि हम माइट बोलते हैं। या तो ऐसे जो ग्रसित पौधे हैं इस समय, उसको जरूर आप रोग ग्रसित जो शाखाएं हैं या फूलों को है जो काट करके उसको अलग कर दे। नींबू वर्गी में आप लोग भी जानते हैं, इस समय नींबू की तितली, खूब रंग बिरंग की तितली उड़ती है, वो अंडे रखती है, और अंडे से ही एक इली निकलती है जो पत्ती को खा जाती है। शुरू में तो ऐसा लगता है कि चिड़िया ने बीट कर दिया, बीटा, लेकिन वो इली है, और वो इली मुलायम पत्तियों को खा करके बहुत नुकसान करती है। क्लोरोपाइरीफास भी जानते हैं, 25 cc का, ये 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़क देंगे तो इसका नियंत्रण होगा। किसान भाई, आप भी बहुत कुछ समझदार हैं और जानकारी रखते हैं, अनुभव है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बड़ी समस्या से आप राहत पा सकते हैं।
0: बागवानी फसलों में सामायिक कार्य विषय की जानकारी के बाद हमारे जो

0: कई भैया बहन हैं, उन्हें महत्वपूर्ण कृषि सलाह दी जा रही है। आपने यदि अपने खेतों में सोयाबीन, धान व अन्य खरीफ फसलें लगाई हैं, तो अपनी फसलों की निगरानी करें व ध्यान रखें कि उन पे कोई भी तरह के कीट व रोगों को प्रकोप न हो पाए। और यदि ऐसे कछु प्रकोप देखवे मिलत है तो मौसम साफ हो तो ऐसे में जैविक उर्वरक और कीटनाशकों को उपयोग करें। अपने भैया बहनों को हम और बता दें कि यदि आप अपनी फसलों को अधिक पैदावार देके बढ़ावो चाहते हैं तो आप फसल चक्र अवश्य अपनाएं। तो जाहती खेती किसानी से जुड़ी आज की सलाह। और भैया बहनों, अब किसान वाणी कार्यक्रम में आज ते कई आपको आज को कार्यक्रम कैसो लगो और हमें का कछु नव अपने कार्यक्रम में करने चाहिए, आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारो पतो लिख लें, किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। भैया बहनों, अब ले रहे हैं आप लोगों से विदा। आप सबको ये चलती विरिया अमृता बहन की राम राम।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। यह आकाशवाणी मध्यप्रदेश जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु

के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है, ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था, जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था, जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो, ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है, ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है।

उच्च सदन में ये विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से यह अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किरायेदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेनदेन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है।

0: आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध FDI वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमरीकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध FDI प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि SEZ की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में
0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए MSME विकास संशोधन विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधानों और उनके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य 20 वर्ष पुराने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान प्रणाली में विलंब दूर करना और विवाद समाधान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस विधेयक के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
4: धन्यवाद।
3: दिलीप जी, ये जो बिल आया है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026, इसके महत्व को आप कैसे आंकते हैं पूरे MSME सेक्टर में मजबूती बढ़ाने के लिए? और इसी संदर्भ में अगर आप हमें ये भी बता सकें कि जो MSME सेक्टर है उसका हमारे अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्व है?
4: धन्यवाद। अगर आप देखें तो पहले वो करीब 31% जो है देश के GDP को कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा अगर आप देखें तो 48.5% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अगर आप देखें खास तौर में तो 35.4% जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो भी MSME सेक्टर के द्वारा एक शेयर है। और सबसे ज्यादा एक लगभग 40 करोड़ व्यक्ति MSME में एम्प्लॉयड है और ये एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा श्रेय है। ये एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन इकोनॉमी में। तो अगर संक्षेप में बताऊं कि इकोनॉमी में क्या है, ये चार आंकड़े हैं, GDP का 31%, मैन्युफैक्चरिंग में जो है और 39.6% क्रोड एम्प्लॉयमेंट, ये अगर आप देखें, और 48.5% एक्सपोर्ट्स, तो ये आंकड़े हैं।
3: तो इसलिए इसको रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है हमारी।
4: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडियन इकोनॉमी में और आपने इसी जुड़ा

0: सवाल था कि ये जो बिल लाया गया है और जो राज्यसभा ने इसको पास किया है, इसकी क्या महत्वपूर्ण है इस पूरे होल सेक्टर में। तो जो एमएसएमई सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत है, जो हर एमएसएमई एंटरप्रेन्योर बेशक गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स में करें या कुछ भी करें, वो है डिलेड पेमेंट। तो ये डिलेड पेमेंट के लिए कई साल पहले उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम किया था, ट्रेड रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, उसको हम ट्रेड्स प्लेटफॉर्म करते हैं। उस प्लेटफॉर्म में उन्होंने पहले तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। अभी उन्होंने जो भी कंपनी 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर में है वो वहां पे रजिस्टर करना जरूरी है। और जितने भी एमएसएमईज के जो बिल्स हैं, जो उनके सप्लाईज हैं, वो बिल्स जो एमएसएमईज उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे डिस्काउंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक लार्ज कंपनी है और मैंने आपको 1000 रूपये का सामान दिया है, तो मैं 1000 रूपये का बिल अपलोड करूंगा और उसके बदले थोड़ा से पैसे वो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म रखेगा, बाकी मुझे कर देगा, तो मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का। और इसके अंतर्गत जो ये जो बिल में जो संशोधन लाए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: तो जैसे आपने कहा कि कोई भी एमएसएमई होता है उनके लिए जो पेमेंट समय पर मिलना बहुत जरूरी होता है, लिक्विडिटी उनकी जो फ्लो बना रहे वो बहुत जरूरी होता है। सो आपको लगता है कि जो ये नया अमेंडमेंट बिल आया है, ये पुराने जो एक्ट था 2006 का, 20 वर्ष पुराना, उसमें जो बदलता परिवेश है उसके मुताबिक संशोधन करके लिक्विडिटी फ्लो को ज्यादा स्मूथ करेगा?
0: बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। देखिए, एक तो पहला जो है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, इस बिल का जो सारा जो फोकस है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे है और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडर पब्लिक एंटरप्राइजेस पे है। ट्रेड्स अभी प्लेटफॉर्म ही एक नया ही प्लेटफॉर्म है, उसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ का एनुअल टर्नओवर होता है। उसमें जो है वो एमएसएमई का ट्रांजैक्शन का छोटा सा हिस्सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आप देखें तो ये डिलेड पेमेंट्स जो एमएसएमई को कैपिटल ब्लॉक करता था उसको एड्रेस करता है, क्योंकि उनको बस पैसे नहीं होते थे, वो मार्केट से पैसा लेते थे हाई इंटरेस्ट रेट पे। और सबसे बड़ा जो संशोधन आया है इस बिल में, वो जो अगर डिस्प्यूट हो जाता था तो वो नॉर्मल कोर्ट के प्रोसेस में सालों लगते थे एक लीगल प्रोटेक्शन के लिए, तो 4 जो है और कैश फ्लो का जो पूरा परिस्थिति पैदा हो जाती थी क्योंकि पेमेंट्स ब्लॉक हो जाते थे। तो इन 4 चीजों को सॉल्व करने में एक ये बहुत बड़ा कदम है।
1: तो जैसा आपने कहा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि कोई भी विवाद है उसका समाधान, उसमें बहुत समय लगता था, तो अब जो टाइम बाउंड उन्होंने बताया है, साइकिल बताई है कि पहले मध्यस्थता होगी, मीडिएशन होगी जो 90 दिन के अंदर खत्म होनी है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती तो 30 दिन में अपील मैक्सिमम और फिर 90 दिन में आर्बिट्रेशन। तो ये थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो 3 स्टेजेस हैं ये किस तरह से एक जो कॉमन एमएसएमई ओनर है, एक मान लीजिए एक माइक्रो एंटरप्राइज का ओनर है, वो कैसे इन स्टेजेस को समझे?
0: तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और अगर आप देखें तो कोई लीगल डिस्प्यूट होता है तो सबसे कम जो खर्चा होता है और सबसे कम टाइम में जो रेजोल्यूशन हो सकता है वो मीडिएशन द्वारा, और वो एक उसमें लॉयर्स की जरूरत नहीं है, आप आपस में बैठ करके एक मीडिएटर के द्वारा बैठ करके आप अग्री कर सकते हैं। और अगर आप दोनों ने मीडिएशन अग्रीमेंट को अग्री कर
1: दिया, कोर्ट से बाहर
0: मीडिएशन सेंटर्स कोर्ट्स के साथ भी लगे हुए हैं, जैसे अगर दिल्ली में तो हर कोर्ट के साथ लगा हुआ है, तो वो मीडिएशन अग्रीमेंट अगर साइन करते हैं तो वो एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है। आगे जो लार्ज और कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, कई लोग सोचते हैं कि मीडिएशन में नहीं होगा, तो जो आर्बिट्रेशन है, और उन्होंने नया आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट लेके आए थे, उसको मीडिएशन एक्ट के अंदर ही एक आर्बिट्रेशन एक्ट है और एक मीडिएशन एक्ट है। तो आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि अगर आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो आप ज्वाइंटली एक आर्बिट्रेटर या 3 आर्बिट्रेटर डिपेंड करता है उसको अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन जो है एक कोर्ट के द्वारा फंक्शन करता है लेकिन एविडेंस रूल और सिविल प्रोसीजर कोड वगैरह अप्लाई नहीं करते हैं, तो सिंप्लीफाइड सिस्टम है, लेकिन वो एक जजमेंट है और वो जजमेंट बाइंडिंग है, उसको अपील करना मुश्किल अगर कोई प्रोसीजरल गैप है या नॉर्मली कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इसके जो 3 जो आंकड़े बोले थे, पहले तो मीडिएशन, अगर मीडिएशन ना हो तो फिर आप आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो आर्बिट्रेशन जो है ये बिल कहता है कि 30 दिन के अंतर्गत ही आर्बिट्रेशन शुरू हो जाना चाहिए, और अगर आर्बिट्रेशन शुरू हो गया, जब आर्बिट्रेशन शुरू हो गया 90 डे में उसका अवार्ड आना चाहिए, तो यानी कि 120 या 6 महीने में और मीडिएशन के 2 महीने लगा लो तो 8 महीने में कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन मिल जाएगा अगर आप नॉर्मल कमर्शियल कोर्ट में भी जाएं तो 8 महीने में या 6 महीने में आपके 2 तारीख मिलेंगे और कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो ये सालों चलते थे अर्ली

0: पर तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है और टाइम की बचत है, सबसे ज्यादा बचत टाइम है। और नॉर्मल केसेस में तो अजर्नमेंट्स होते हैं, कुछ होता है, नॉर्मली मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में अजर्नमेंट्स नहीं होते।
1: सो इस तरह से जो आप कह रहे हैं कि एकदम टाइम बाउंड कर दिया है कि इतने समय में समाप्त होना है विवाद और उसका कुछ निर्णय निकलना है, तो ये बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है। बिकॉज नॉर्मली जैसा आप कह रहे हैं कि कई बार बहुत लंबे चलते हैं केसेस, आगे बढ़ते जाते हैं। सो इसको आप इस अमेंडमेंट बिल का एक बहुत बड़ा एक पहलू कहेंगे?
0: हाँ, वो तो एक बड़ा पहलू है, लेकिन इसके बाद एक बहुत ही और छुपा हुआ एक पहलू है। ये उन्हें बिल ने ये कहा है कि आप इसको ऑनलाइन मीडिएशन या ऑनलाइन आर्बिट्रेशन और डिजिटल प्रोसेसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर 2 घंटे लगाते थे आर्बिट्रेशन सेंटर पहुंचने में या कुछ, वो आपका टाइम बच जाता है। और इससे अच्छा है कि अगर 6 महीने से ज्यादा आपका केस पेंडिंग है तो 50% अवार्ड अमाउंट जो है वो एमएसएमई को मिलना चाहिए। तो ये पूरा एक सिंप्लीफाई कर दिया है और एक प्रोसेस बना दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक ये बहुत ही बड़ा पहलू है।
1: सो ऐसा लगता है जैसे कि अभी तक जो आपने पहलू डिस्कस किए हैं कि ये एमएसएमई फ्रेंडली अमेंडमेंट बिल है, ताकि एक कोलैबोरेटिव आपको लगता है अप्रोच लिया है सरकार ने?
0: बिल्कुल कोलैबोरेटिव अप्रोच लिया है, एमएसएमई फ्रेंडली अप्रोच है। लेकिन आप एमएसएमई की भूमिका जो देश की इकोनॉमी में है इतनी बड़ी है कि इकोनॉमी फ्रेंडली एक बिल है। और इसमें उन्होंने एक अच्छी चीज भी की है जो खासतौर लोग ध्यान नहीं देते। पहले अगर आपको एमएसएमई की डेफिनेशन अमेंड करनी होती थी ना, तो आपको एक्ट में अमेंड करनी चाहिए। इस बिल में उन्होंने बोला कि एक्ट के बाहर आप उसको अमेंड कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है।
1: सो ये फ्लेक्सिबिलिटी की जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत जरूरी भी है। जैसा हम जानते हैं कि आजकल जो हमारा पूरा वातावरण है, खासकर टेक्नोलॉजी की वजह से, बहुत तेजी से बदल रहा है। सो जरूरत अनुसार जो एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू कहेंगे आप?
0: बिल्कुल सही। तो अगर देखें तो पहला जो है लिक्विडिटी इम्प्रूव होगा, दूसरा जो एमएसएमई के पैसे हैं उनको बहुत जल्दी मिलेंगे, तीसरा अगर उनको पेमेंट मिलेंगे तो बैंक के ऊपर डिपेंडेंस कम होगा, चौथा तो बेटर वर्किंग कैपिटल जो मैंने आपको कहा था। और जो अभी जो है एमएसएमई में लोग काम करने से थोड़े से हिचकिचाते थे, क्योंकि ये डिलेड पेमेंट्स के सैलरी इस टाइम पे नहीं मिलते थे, रॉ मटेरियल्स नहीं मिलते थे, जीएसटी में डिफॉल्ट हो जाता था, और ये पूरा लोअर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। और न्याय का ये एक फास्टर रूट है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस जो अनसर्टेनिटी निकाल देती है, और सप्लायर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस होगा कि लार्जर सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग सप्लाई करे और लार्जर कंपनी सप्लाई करे, तो ये एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था।
1: और एक डिक्रिमिनलाइजेशन के ऊपर भी सरकार ने हमेशा, वर्तमान सरकार ने बल दिया है। सो यहाँ पर जो प्रावधान लाए गए हैं, ग्रेडेड सिस्टम ऑफ वार्निंग्स एंड मॉनिटरी पेनल्टीज, आपको लगता है कि ये भी जो डर का एक, अभी आपने डर शब्द यूज किया, वो कम होता है और ज्यादा एक फ्रेंडली एनवायरमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलता है?
0: डिक्रिमिनलाइजेशन का एक पहलू बहुत आगे पहले से चल रहा था, जनविश्वास 1.0 और जनविश्वास 2.0 हमने उस पर भी चर्चा की थी।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर आप देखें तो इसमें जो है डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ है, बट वो ऐसे इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन टाइम फ्रेम और नॉन पेनल्टीज और वार्निंग्स जो लार्जर कंपनीज के लिए है वो एक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सिग्नल जो क्या है ना, सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना चाहिए। अगर आपने किसी सप्लायर ने माल बेचा है और आप उसको पैसा देना, आप प्लीज उसको पैसा दीजिए, क्योंकि एमएसएमई होगा। दूसरा है कि डिले तो अब अनएक्सेप्टेबल है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस टाइम में, ठीक है, पहले ये नहीं था। और तीसरा है जो एमएसएमई का जो कमर्शियल जस्टिस है, वो एक टाइम बाउंड होना चाहिए, श्योर होना चाहिए, अश्योर्ड होना चाहिए, और मिनिमम इनकन्वीनियंस से डिजिटल मीडिएशन, डिजिटल आर्बिट्रेशन। तो ये अगर आप 3 इम्पोर्टेंट चीजें इस बिल को ले जाएं, और जो एमएसएमई के डेफिनेशन में ही फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है।
1: तो डिजिटलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन जो करनी होती है एमएसएमईज को, उसमें भी वो उनको सहूलियत होगी, अब एक इंसेंटिवाइज होंगे कि और एमएसएमईज भी उभर के आए। एक आपको लगता है कि ग्रोथ ऑफ एमएसएमईज या स्केलिंग अप जो है एमएसएमईज की, उसको भी बढ़ावा मिलेगा?
0: पहले जो है अगर आप देखें तो एमएसएमईज का जो डेफिनेशन बढ़ा गया है, पहले लोग छोटा रहते थे और छोटा से ग्रो करने से हेजिटेट करते थे, क्योंकि कंप्लायंस ज्यादा है। तो वो डेफिनेशन चेंज करने का एक बहुत बड़ा ग्रोथ पैटर्न है। दूसरा जो आपने कहा था कि आप पूरा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एमएसएमईज बिजनेस नहीं कर सकते थे, और एमएसएमई को कहां रजिस्टर करें, तो एक उद्यम पोर्टल रजिस्टर किया था। अभी उसमें 8.9 करोड़ लगभग एमएसएमईज रजिस्टर्ड है। और अभी कंपनीज एक्ट में भी अगर आप देखें, आप लार्ज कंपनी और मैं, आप एमएसएमई आपके साथ रजिस्टर्ड हूं, तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि

0: पास ड्यूज नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरा जो आप देखें तो जिम गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, उसमें एमएसएमईज बिजनेस कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट परचेसेस में। ट्रेड ई फाइनेंसिंग के लिए ट्रेड्स है, तो ये अलग अलग ई प्लेटफॉर्म। अगर वहां देखें तो ई नैम भी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है, ओएनडीसी भी आ रहा है। तो डिजिटल इकोनॉमी और सबसे बड़ा जो फायदा है एमएसएमईज के लिए यूपीआई है और जो हमारा फाइनेंशियल स्टैक है। तो डिजिटली एमएसएमईज को काफी अच्छा होना चाहिए। और अब एआई आ रहा है तो गवर्नमेंट ने एमएसएमईज के लिए एआई के भी काफी एक सुविधा की है, तो वो डिजिटली अवेयर है और डिजिटली उसको यूज कर सके।
1: सो एमएसएमईज जो सेक्टर है उसका बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ है पिछले 12 वर्षों में। आपको लगता है कि ये जो विकसित भारत का हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक, उसमें एमएसएमईज का बहुत बड़ा रोल होने वाला है?
0: देखिए, अगर एमएसएमईज 31% ऑफ द इकोनॉमी है और अगर हमें ग्रो करना है, तो अगर ये 31% ग्रो नहीं करेगा तो विकसित भारत का लक्ष्य बिल्कुल असंभव है। और ये 31% को वो दूसरे परसेंट से ज्यादा ग्रो करने का एक सुविधा दें तो विकसित भारत का लक्ष्य आगे सामने नजर आता है।
1: सो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ये जो संशोधन बिल आया है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026, आपको लगता है कि ये समय की मांग है और बहुत ही उपयुक्त समय पर ये लाया गया है?
0: बिल्कुल उपयुक्त समय पे लाया गया है। और गवर्नमेंट जो है निरंतर एमएसएमई सेक्टर के लिए स्टेप वाइज प्रोग्रेस कर रही है, और ये जो अभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे है, शायद ये आगे जाके स्टेट अंडरटेकिंग्स पे लागू करे और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स पे लागू करे, तो ये स्टेप वाइज एक इंटीग्रेशन और एक डेवलपमेंट है, ये बहुत अच्छा कदम है।
1: दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एमएसएमई इकोसिस्टम के लिए जो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है उसके विभिन्न पहलुओं पर हमसे बात करने के लिए
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधानों और उनके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार के जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम। प्रस्तुत करता है कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक।
5: आज है पार्श्व गायक, संगीतकार, फिल्म निर्देशक हरफन मौला, एक अभिनेता, एक चुलबुले कलाकार की जन्मतिथि। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज खंडवा के सुप्रसिद्ध कलाकार किशोर कुमार की। और इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आइए जानेंगे खंडवा से ही पधारे किशोर कुमार के विशेष समर्थक संजय पंचोलिया, जो बताएंगे हमें किशोर कुमार की वो बातें जो उन्होंने कभी देखी, कभी सुनी, कभी महसूस की और अनुभव की। आइए जानते हैं।

जी हाँ, किशोर दा का आज 97वां जन्मदिवस हम मना रहे हैं। किशोर दा का पुश्तैनी बंगला, उनका पता है गांजा गोदाम के सामने, लाइब्रेरी के पास बिजली का खंभा जिस पर लिखा है डोंगरे का बालामृत। जी हाँ, यही पुश्तैनी बंगला है किशोर दा का, जहाँ माता गौरी देवी और पिता कुंजलाल गांगुली के घर 4 अगस्त 1929 को नन्ना आभास कुमार पैदा हुआ था, यानी किशोर कुमार इस बंगले में खेले पले बड़े। मैं आज इसी बंगले में हूँ, यहाँ पर फुग्गे लगे हुए हैं, मालाएं टंगी हुई है, लाइट म्यूजिक बज रहा है और बाहर से बहुत सारे किशोर दा के चाहने वाले हैं।

संगीत प्रेमी यहाँ उनके घर पर मौजूद हैं, जिला प्रशासन के कुछ लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं जो गुनगुना रहे हैं। यहाँ गीत चल रहा है जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं, खोके रोना नहीं, इसे खोना नहीं।

खंडवा का ही है उनका माता पिता का बंगला, जो किशोर कुमार की किलकारियों से गूंजता रहता था, आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यहीं पर हम खड़े हैं और इस मकान को निहार रहे हैं। यहाँ पर हर बरस संगीत प्रेमियों का, उनके चाहने वालों का मेला लगता है। यहाँ वो आते हैं, शिद्दत से उनके मकान को चूमते हैं, माटी को नमन करते हैं। किशोरदा के आज जन्मदिवस के अवसर पर यूं तो खंडवा शहर में 25 जगह अपने अपने म्यूजिक सिस्टम लगा के लोग गाने गा रहे हैं, अपने स्टाइल में उनको नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। किशोरदा खंडवा की न्यू हाई स्कूल में पढ़े और यहाँ से क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में वो पहुँचे। उनकी गायकी की टेबल की थाप की आवाज़ आज भी जो है इस रंगीन फिजा में घुली हुई है, जो हमको मंद मंद सुनाई देती है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के,

किशोरदा का ये गीत प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने के लिए, कोई मुकाम हासिल करने के लिए हमको रास्ता दिखाता है। जीवन में ठहराव कभी भी अच्छा नहीं होता। किशोरदा अपने गीत के माध्यम से संकेत देते हैं कि कभी नहीं रुकना, आप चलते चलो मंजिल मिलेगी। हम पहुंच चुके हैं यहाँ के वाना नदी तट, जहाँ किशोर कुमार की समाधि और स्मारक है। यहाँ पर समाधि को गुलाब के फूलों से सजाया हुआ है और इस समाधि पर दूध जलेबी का भोग लगाया हुआ है, रंगीन लाइटें जल रही है, इधर लाइट म्यूजिक बज रहा है, देश भर से उनके चाहने वाले आए हुए हैं, गीतों को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब किशोरदा के गीत यूं तो बहुत हैं, लेकिन जो लोग हमेशा गुनगुनाते हैं, हमेशा याद रखते हैं, नई पीढ़ी के लोग हों या पुरानी पीढ़ी के लोग हों, किशोरदा के गीत उनके जहन में रचे बसे हैं। किशोरदा के गीत यहाँ आज चल रहे हैं, उनके गीतों को गाने वालों की लंबी यहाँ पे सूची बनी हुई है और एक स्थाई एक अंतरा गाकर अपने अंदाज में वो श्रद्धांजलि विनयांजलि के रूप में उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं। गीत बज रहा है, जिंदगी की यही रीत है,

चलते रहो, अपने मुकाम पर मंजिल मिलेगी एक दिन। किशोरदा खंडवा में लाइव प्रोग्राम भी दे चुके हैं। 1982 में उन्होंने एक लाइव प्रोग्राम खंडवा में दिया था, तापड़िया जिनिंग में। उसके बाद 1984 में भी उन्होंने एक प्रोग्राम देने के लिए यहाँ स्वीकृति दी थी, लेकिन वो प्रोग्राम हो नहीं सका। 30 सितंबर 1986 को किशोरदा आखिरी बार खंडवा की सड़कों पर घूमे थे, खंडवा आए थे और बिंदास खंडवा की सड़कों पर पैदल घूमे थे अपने दोस्तों के साथ में। बाबू भाई रंगरेज हो, उनके पुराने मित्र केवल राम चौराहे पर उनसे मुलाकात की, और सौभाग्य देखो कि मैं भी जो है उनको केवल राम चौराहे पर ही उस समय मिला था। वो यादें मेरे जहन में बसी हुई है, क्योंकि मैं डबल डंडे की साइकिल से उधर से आ रहा था और किशोरदा को देखा तो उस साइकिल से उतरा और किशोरदा को जाके मिला, प्रणाम किया। किशोरदा इतने महान कलाकार और मैं अदना सा।

लेकिन उन्होंने मेरे नमस्कार का जवाब बहुत ही आत्मीयता से दिया, नमस्कार, जैसे मेरे को पहले से जानते हों, बरसों से जानते हों। ये थी उनकी आत्मीयता और यह था उनका बड़प्पन। इतने बड़े महान कलाकार, लेकिन एक छोटे से व्यक्ति को भी जो है बहुत इज्जत के साथ उन्होंने जो है प्यार के साथ मुझे नमस्कार किया था। ये किशोरदा ही कर सकते हैं, दूसरे की व्यक्ति के मन में ये सोच नहीं आ सकती, क्योंकि निमाड़ का आदमी बम्बई में जाकर भी निमाड़ का मानुष बना रहा, यहाँ की निमाड़ी बोली को उन्होंने गीतों के माध्यम से भी उकेरा। यहाँ की जो है कोरकू बोली है, निमाड़ में प्रचलित है, उस बोली के कुछ गीतों को, कुछ शब्दों को भी गीतों में उन्होंने गाया है। किशोरदास जो है खंडवा में बहुत बार आए और दूध जलेबी भी खाई और उनके पुश्तैनी बंगले में रहे भी। किशोरदा आज यदि होते तो वो 97 बरस के होते और हम उनका जन्मदिन यहाँ उनके बीच में ही मना रहे होते, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि खंडवा में बस जाएंगे, दूध जलेबी खाएंगे। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में लता मंगेशकर जी को कहा भी था कि अब मैं खंडवा जाऊँगा, वहीं रहूँगा, मेरे पुरखों की ज़मीन वहीं है। तो आज किशोरदा का जन्मदिन है और खंडवा में बहुत जगह जो है उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है अपने अपने हिसाब से। किशोरदा के नाम पर गौरव दिवस जो है खंडवा जिले का मनाया जाता है, उसके तहत 3 दिन का 2, 3 और 4 अगस्त तक ये कार्यक्रम हुआ। जिला प्रशासन ने जो है इस कार्यक्रम को किया भी, आज उसका समापन भी है। शाम को मंडी में किशोर नाइट भी रहेगी और अभी जो है लाइव प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा जो है किशोरदा की समाधि पर चालू है। विभिन्न शहरों से, गांव से आए हुए किशोरदा के कलाकार उनके गीतों को प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि महिलाएं भी जो है इस क्रम में आगे आई है, किशोरदा के गीतों को गुनगुनाती है और कई जो है अपने अपने अंदाज में महिलाएं कराओके सिस्टम पर इसको गा रही है। जय किशोरदा, किशोरदा अमर रहे। जब तक उनकी आवाज हम सुनते रहेंगे वो हमारे जहन में बसे रहेंगे। अमर दा किशोरदा। यहाँ घंटाघर चौक पर हमने किशोरदा संगीत साधना केंद्र बना रखा है, एक छोटा सा स्टूडियो है। यहाँ पर हमारे संगीत साथी रोज रात को 9:30 से 11 बजे तक किशोरदा के गीत तो गाते ही हैं, अन्य गायकों को भी हम गुनगुनाते हैं। कराओके टेक सिस्टम लगा हुआ है और उस पर जो है हम किशोर कुमार सहित कई गायकों की प्रस्तुतियां रोज देते हैं, रोज उनको जो है नमन करते हैं। 365 दिनों तक ये सिलसिला हमारा अनवरत जारी रहता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे हरफन मौला कलाकार किशोर कुमार के जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम। प्रस्तुत करता थे कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। लीजिए सुनिए सूचना। श्रोताओं, इस गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2026 को सुबह 10:32 से 11 बजे के बीच प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है स्तनपान भ्रांतियां एवं तथ्य। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर नीरजा पौराणिक से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR पर भी ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2026 समय सुबह 10:32 से 11 बजे के बीच। फोन नंबर है 2710223 और 2710224। STD कोड है 0731। सूचना समाप्त हुई। 8:45 होने को है। आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के

0: न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
3: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहां पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं ना हमारे

0: कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
1: पंजाब पुलिस ने आईएसआई समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
2: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है। पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रूपये पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
4: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और ये लक्ष्य को

0: अचीव करने के लिए प्रयास करना।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes Registration of Births and Deaths Amendment Bill to make delayed registration more stringent. Supreme Court directs Reserve Bank of India to prepare and circulate a SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. 274 fugitive criminals brought back to India from 36 countries between 2019 and 2026, says Home Ministry. New Delhi terms so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia felicitates Indian medal winners after successful Glasgow Commonwealth Games campaign. And in badminton, Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithivi Krishnamurti Roy advances to the men's doubles second round at Korea Masters Tournament in Assam. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityananda Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. We have more from a correspondent.
3: The objective of this bill is to prevent delays in the registration of births and deaths and to encourage people to register in a timely manner. The bill provides that if a birth or death is reported to the registrar more than 1 year but within 2 years, it may be registered only with the approval of the district magistrate, sub-divisional magistrate or an executive magistrate. The bill further states that if a birth or death is reported to the registrar more than 2 years, it will be registered only on the order of the judicial magistrate of the first class. The bill also mandates that the designated authority must verify the authenticity of the reported birth or death before granting permission for delayed registration. The registration of births and deaths is mandatory and the certificate issued provides legal identity to an individual. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
2: The Lok Sabha has passed the appropriation number 3 bill 2020.

मुनीम जी, ये नाम था उस फिल्म का जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी गीतकार संगीतकार SD बर्मन। और अब आपको जो गीत सुनवाने जा रहे हैं उसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीतकार हैं RD बर्मन, आवाज़ किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है भूत बंगला।

सुन रे ओ लड़के, मैंने जब देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह, फिर दोनों के दिल धक धक धक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह। हम थे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गए।

0: खींचा हा हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा हा हा हा हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी, इस फिल्म से ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, गीतकार मजरू, संगीतकार SD बर्मन। और अब आपको कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं कल्याण जी आनंद जी का संगीत, इंदिवर का गीत है, आवाज़ किशोर कुमार की है, फिल्म का नाम है सफ़र।

0: सफ़र फिल्म के इस गीत के साथ चित्रगीत अब समाप्त होता है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कुछ ही पलों बाद उर्दू कार्यक्रम कहकशा भोपाल केंद्र से रिले होगा।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशा।

हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम कहकशां में रुश्दा अपने तमाम सुनने वालों का खैर मकदम करती है। सामईन, आज का कहकशां प्रोग्राम महफिल समा पर मबनी है और इसका मौजू है अमीर खुसरो की सूफियाना शायरी और इश्क हकीकी। सामईन, अदबी, तहजीबी और रूहानी तारीख में अमीर खुसरो का नाम एक ऐसी दरख्शां शख्सियत के तौर पर लिया जाता है जिसने मोहब्बत, इंसानियत और रूहानियत को अपनी शायरी के जरिए हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। आपको तूतिये हिंद कहा जाता है। आप सिर्फ एक अजीम शायर ही नहीं बल्कि मौसिकार, दानिश्वर और अपने अहद के मुमताज सूफी भी थे। 1253 में पटियाली में पैदा होने वाले अमीर खुसरो ने फारसी और हिंदवी जबानों को अपनी शायरी का वसीला बनाया। उनके कलाम में हिंदुस्तान की तहजीब, मोहब्बत और सूफियाना फिक्र का ऐसा हसीन इम्तिजाज मिलता है जो आज भी दिलों को अपनी तरफ खींच लेता है। अमीर खुसरो की जिंदगी का सबसे रोशन बाब उनके अपने मुर्शद ख्वाजा निजामुद्दीन अवलिया से वाबस्तगी है। मुर्शद की सोहबत ने उनकी शायरी को महज लफ्जों का हुस्न नहीं दिया बल्कि उसे रूहानियत की वो गहराई अता की जिसमें इश्क हकीकी की रोशनी नुमाया नजर आती है। तसव्वुफ में इश्क हकीकी से मुराद अल्लाह ताला से बेलौस मोहब्बत है। ये वो मोहब्बत है जो इंसान को गुरूर, नफरत, खुदगर्जी और दुनिया की बेजा ख्वाहिशात से आजाद कर देती है। सूफिया के नजदीक जब इंसान अपने नफ्स की दीवारें गिरा देता है तो उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर हो जाता है। अमीर खुसरो की शायरी इसी रूहानी सफर की तर्जुमान है। इसी कैफियत को उनकी शोहराए आफाक कव्वाली छाप तिलक सब छीन ली मोसे नैना मिला के में नहायत खूबसूरती से बयान किया गया है। बज़ाहिर ये आशिक की अपने महबूब से मुलाकात की दास्तान मालूम होती है लेकिन सूफियाना मफहूम में यहाँ महबूब से मुराद अल्लाह ताला या मुर्शिद कामिल है। छाप तिलक इंसान की जाहिरी पहचान, उसकी अना और खुदी की अलामत है। शायर कहता है कि महबूब की एक नजर ने उसकी सारी शनाख्त मिटा दी। अब न कोई गुरूर बाकी रहा न कोई दावा, सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत रह गई। तसव्वुफ की जबान में

यही कैफियत फना कहलाती है, यानी अपनी ज़ात को मिटाकर महबूब हकीकी में गुम हो जाना। यही वो मकाम है जहाँ बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब महसूस करता है। तो अब समाअत फरमाइए अमीर खुसरो की लाजवाल सूफियाना कव्वाली, छाप तिलक सब छीन ली रे, आबिदा परवीन की आवाज़ में।

सामीन, आपने अमीर खुसरो की वो लाजवाल तख्लीक समात की जिसमें इश्क हकीकी की लताफत, मुर्शिद से अकीदत और रूहानी सरशारी की कैफियत दिल को छू लेती है। यही अमीर खुसरो की शायरी का इम्तियाज है कि वो जाहिरी अल्फाज के पर्दे में बातिनी हकीकतों को बयान करते हैं। अमीर खुसरो की सूफियाना फिक्र सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत तक महदूद नहीं रहती बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेहाना इश्क और अहले बैत अतहार से अकीदत को भी अपने अंदर समोए हुए है। यही जज्बा हमें एक और मारूफ सूफियाना कलाम मन कुंत मौला में मिलता है। ये कलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तारीखी इरशाद से माखूज है, मन कुंत मौला फआला मौला, यानी जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। सूफिया इकराम ने इस इरशाद को मोहब्बत और रूहानी रहनुमाई की अलामत के तौर पर अपनाया। उनके नज़दीक हज़रत अली मारिफत, शजात और रूहानी कमाल का वो रोशन चराग हैं जिसकी रोशनी इंसान को अल्लाह की मारिफत तक पहुँचने का रास्ता दिखाती है। इसीलिए सूफियाना महफिल में मन कुंत मौला सिर्फ एक कव्वाली नहीं बल्कि अकीदत, मोहब्बत और रूहानी वाबस्तगी का इजहार बन जाती है। ये कलाम हमें याद दिलाता है कि इश्क हकीकी सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि मोहब्बत, वफादारी, अखलाक और इंसानियत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का नाम है। तो आइए सामीन, समाअत फरमाइए अकीदत और रूहानियत से लबरेज ये खूबसूरत कव्वाली आबिदा परवीन की आवाज़ में, मन कुंत मौला।

सामईन इकराम, अमीर खुसरो की शायरी 700 बरस गुजर जाने के बावजूद आज भी उसी तरह ताज़ा महसूस होती है, क्योंकि उसकी बुनियाद मोहब्बत, इखलास, रवादारी और इंसान दोस्ती पर कायम है। उनका पैगाम हमें ये सिखाता है कि अगर दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से रोशन हो जाए तो इंसान के किरदार में आजिज़ी, मोहब्बत और खिदमत खल्क खुद ब खुद पैदा हो जाती है। आज के दौर में जब माशरा नफ़रत, बेचैनी और मादा परस्ती के मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुज़र रहा है, अमीर खुसरो की सूफियाना शायरी हमें मोहब्बत को तकसीम करने, दिलों को जोड़ने और इंसानियत की खिदमत करने का सबक देती है। यही उनके कलाम की असल रूह है और यही इश्क़े हकीकी का हकीकी मफहूम भी। इसी पैगाम के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। अब आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है उर्दू प्रोग्राम कहकशां, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। इसी के साथ रिश्ता को इजाज़त दीजिए। आदाब।

0: ये था उर्दू कार्यक्रम कहकशा आकाशवाणी
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। लीजिए सुनिए सूचना श्रोताओं।

इस गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 के बीच प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है स्तनपान भ्रांतियां एवं तथ्य। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर नीरजा पौराणिक से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें, गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2026, समय सुबह 10:32 से 11:02 के बीच। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर है 2710223 और 2710224। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। 271023 271024 इंदौर का एसटीडी कोड है 0731 0731। फोन करना ना भूलें, गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2026, समय सुबह 10:32 से 11:02 के बीच का रहेगा। इस कार्यक्रम को आप विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को है। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम मन भावन।

मनभावन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कीजिए स्वीकार आपकी रेडियो दोस्त श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम में शुरुआत कर रहे हैं परदेश फिल्म के गीत के साथ। इस गीत को गाया है हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, आदित्य शंकर महादेवन और साथियों ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं नदीम श्रवण। इस गीत के लिए पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। लाबरिया भैरव इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कृणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। ये पत्र आया है घंटाघर चौक खंडवा से। श्रोताओं के नाम है संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचौलिया। कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानो, उबैद, रजिया, अलीना, जुनैद, आयत, मुआज मंसूरी और नसरीन जहां। ये पत्र आया है रणथंबोर शाहजापुर से। श्रोताओं के नाम है मोहम्मद यूनुस मंसूरी, मोहम्मद रियाज, मुकेश नारोलिया, अकबर, हसन भाई, जानकी लाल, गजानंद नगर से दिनेश नागर, रानी माँ, आवेश भाटिया और इनके साथी। तो आइए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं परदेश फिल्म का ये गीत।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र के साथ आप हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। ये वो कार्यक्रम होता है जिसमें आप भेजते हैं अपनी फरमाइशें और हम आपके नाम पढ़ने के साथ साथ आपकी फरमाइशों को पूरा करते हैं। और अब जिस गीत को सुनवाकर हम फरमाइश पूरी कर रहे हैं, वो गीत हमने लिया है कुदरत फिल्म से। इस गीत में आवाज़ है किशोर कुमार की, गीतकार है मजरूह और ये खूबसूरत संगीत है RD बर्मन का। फरमाइश करने वाले श्रोताओं के नाम आपको बताते हैं। इनके नाम हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा, सालिया, शोएब खान, पोता मुस्तफा खान, रऊफ भाई, शहीद भाई। गांधी बाग आकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। छाबड़ा से ये पत्र आया है, श्रोताओं के नाम है नूर बानो, सलमा बानो और बेबी रुखसार। जरूड़ वरूड़ महाराष्ट्र से ये पत्र है, श्रोताओं के नाम है बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी, कार्तिक और युवराज। साथ ही इस पत्र में इन्होंने लिखकर भेजा है थैंक्स, तो हम भी इनसे कहना चाहते हैं कि धन्यवाद, आपने ये पत्र हमें भेजा। राजा

और मालती चौधरी। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबेल पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। चंडीगढ़ से पत्र है, श्रोताओं के नाम है सतीश अनेजा और विमला अनेजा। खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय, विशाल कुमार धनजय, शीला धनजय, गायत्री धनजय। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। और आपकी फरमाइश का गीत अब हम पेश करने जा रहे हैं कुदरत फिल्म से, लीजिए सुनिए।

आनंद फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। मुकेश की आवाज़ है, संगीतकार हैं सलिल चौधरी और गीतकार हैं योगेश। पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। ये पत्र आया है बहरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से। श्रोताओं के नाम है डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, समर राज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा। और ये पत्र है बेरड़ी से। श्रोताओं के नाम है हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची और तनु करमकर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा।

कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। ये पत्र आया है रामगंज खडवा से। श्रोताओं के नाम हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, संजय महोबिया, नंदिनी महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज महोबिया और भैयू दादा। शिवपुरम कॉलोनी खंडवा से वी एस महोबिया और कमला महोबिया। अंबेडकर चौक खुरई से ये पत्र है। श्रोताओं के नाम हैं राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और समस्त परिवार के सदस्य। आइए सुनते हैं आनंद फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन

श्रोताओं, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा हुआ एक गीत। आवाज है किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं चंदन नगर सातारा से सतीश वाघमारे, अतीश वाघमारे, स्वाति वाघमारे, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रीमेड़ वाघमारे। ये पत्र है कोल्हापुर से। श्रोताओं के नाम है विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता चौहान, अनिकेत चौहान और माया चौहान। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार। उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा, दिव्या और कुश मूड़त। ये पत्र आया है पालदा नाका इंदौर से। हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफी मंसूरी। गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से ये पत्र है। श्रोताओं के नाम है अनिल कवचाले, सबीहा, सुषमा, सीमा, स्मिता, पूजा और राखी। ये पत्र आया है सीतामणी से। श्रोताओं के नाम हैं अकरम हुसैन, प्रिंस वसीम अकरम, आरिज वासिम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, बेगम इशरत अकरम, रुबीना, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा और चीना शेख। बिहार से ये पत्र है मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन। ये पत्र है महसौल से। श्रोताओं के नाम हैं हुमैर नाज, सुमैर नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू। नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर। और ये पत्र है यवतमाल से। शाहूनगर यवतमाल से श्रोताओं के नाम है राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी और कोमल यादव। आइए सुने मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं जरीन दारूवाला के का सरोद वादन, राग है मालकोस। लीजिए सुनिए।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे विदुषी जरीन दारूवाला का सरोद पर बजाया राग माल कौस। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर। लीजिए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
2: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
3: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों केंद्र

आवाज में।